是访问预计还将对更广泛的印度欧盟关系产生塑造作用。印度的李广播电台，听众朋友们，我们现在报告了新闻。

印度这里广播电台，听众朋友们，我们现在播送本地旅游民间歌曲。本地旅游是印度中方的语言之一，请收听。

无国之行第二战，印度五月地驻，外汇储备增加62亿美元。印度的广播电台听众朋友们，现在报告新闻完了。

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारत बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था, फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मन चाह वरदान प्राप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपए से घटाकर 16.50 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रूपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट

0: में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वागदेवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, NEET UG की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रूपये महंगे, CNG के दाम 2 रूपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना UAE पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के

के उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से मौहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम जखायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसी कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम जखायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन मुआहदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी महाजाराई के दौरान अबू धाबी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी का अज़्म किया है। वजीर आजम मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल UAE पहुंचे थे। मुआहदों में अहम शराकत दारी का मुआहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तबानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को जखीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस मुआहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम जखायर में UAE की शराकत दारी में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम जखायर कायम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे में नीदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जैतन से दोतरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के नीदरलैंड्स के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: ये दौरा दोतरफा ताल्लुकात से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद है कि हाल ही में किए गए भारत यूरोप आजाद तजारती मुआहदे के बाद भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वसी तर हो जाएंगे। हफ्ते के रोज वजीर आजम मोदी भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और AI के मैदानों में बहुत से अहम मुआहदे किए जाएंगे। तजारत के नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम इकतसादी शराकतदार है। ये भारतीय बरामदात और भारत में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े पैमाने पर शराकतदारी कायम है और ये दोनों ही मुल्क पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, जरी टेक्नोलॉजीज और सेहत के मैदानों में भी एक दूसरे को ताउन देते हैं। नीदरलैंड्स के शहर हेग से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: नीदरलैंड्स के दौरे के बाद वजीर आजम मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में कल स्वीडन के शहर गोटेनबर्ग जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम के लिए कारोबार को मजीद आसान बनाने और जिंदगी को मजीद आसान बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर महसूल टैक्स या सरचार्ज आयद करने की मीडिया की एक खबर को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि बैरून मुल्क सफर पर इस तरह की पाबंदी लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। बाद में खबरों की इन तंजीमों ने

इस रिपोर्ट को वापस ले लिया है और सोशल मीडिया हैंडल से इससे मुतालिक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खबरों की इन सरगर्दा तंजीमों ने इतराफ किया है कि यह रिपोर्ट गलत थी और उन्होंने इस गलती पर माजरत का इजहार भी किया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम की बरामद पर 3 रुपए फी लीटर की खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी आयद की है। वजारत खारजा की तरफ से कल सरकारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। अब यह ड्यूटी 23 रुपए के बजाय 16.50 रुपए फी लीटर होगी। हवाई जहाज के ईंधन ATF पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में भी कमी करके इसे 33 रुपए से 16 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। तब्दील की गई ये शरें अगले 15 दिन तक आयद रहेंगी। 15 दिन की यह मुद्दत आज से शुरू हो रही है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोलियम और डीजल पर आयद एक्साइज ड्यूटी की मौजूदा शरों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2047 तक मुनशियात से पाक करने का कौमी मकसद तय किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की हिफाजती एजेंसियों ने मुनशियात के मुनज्जम गिरोहों का खात्मा करने का एक खाका तैयार किया है और वो इस मकसद की जानिब सरगर्मी से काम कर रही है। कल नई दिल्ली में RN Kao यादगारी लेक्चर देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि नशीली अशिया की नाजायज तजारत महज नज्म व जब्त का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जिसके तवील मुद्दती असरात समाज और मुस्तकबिल की नस्लों पर मुरतब होते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए जामे कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने नशीले मादों के तहत हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी का यह कहते हुए एक बार फिर जिक्र किया कि मुल्क इस बात को यकीनी बनाएगा कि महज एक ग्राम नशीला मादा भी इसके इलाके को गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हुए भारत में न तो दाखिल हो और न यहां से जाए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम का दौरा करेंगे। दौरे में नायब सदर जमहूरिया सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में रियासत के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इन तकरीबात में शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग भी शिरकत करेंगे। सिक्किम आज अपना यौम तासीस मना रहा है। 1975 में बादशाहत के खत्म होने के बाद ये भारत की 22वीं रियासत बनी थी। इम्कान है कि नायब सदर जमहूरिया अपने क्याम के दौरान चंद अहम मकामात का भी दौरा करेंगे। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। ये FIR मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की हालिया चुनाव मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज बयान देने के इल्जाम में दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले का इल्जाम है कि उसने बाज बयान जिनमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नाजेबा तबसरे भी शामिल हैं सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर शेयर किए गए, जिनमें रुकन पार्लियामेंट का सरकारी फेसबुक पेज भी शामिल है। इसी दौरान एक और वाकये में मगरबी बंगाल हुकूमत ने 3 सीनियर IPS अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, जिनमें कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर विनीत गोयल भी शामिल हैं। ये कार्रवाई RG Kar मेडिकल कॉलेज इस्मत दरी और कत्ल केस की तहकीकात में मुबैना कोताहियों के सिलसिले में की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने मुनसिफाना और शफाफ जांच के अजम का इरादा करते हुए 12वीं जमात के तलबा के लिए नतीजे के बाद फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक एक नोटिस जारी किया है। नोटिस बोर्ड में कहा गया है कि अपने नतीजे से गैर मुतमईन तलबा 2 मरहलों पर मुश्तमिल नजरसानी के निजाम से फायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा अपनी जांच की गई जवाबी कॉपियों की स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फर्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाब की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। CBSE के मुताबिक स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरखास्तें इस माह की 19 से 22 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं, जिसकी फीस 700 रुपए फी मजमून मुकर्रर की गई है। इसी तरह तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरखास्तें इस माह की 26 से 29 तारीख के दरमियान जमा कराई जा सकेंगी। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनकरीब मुल्क में कोई भी गरीब शख्स नहीं होगा जिसके पास मुस्तकिल घर न हो। उन्होंने कहा कि सभी के लिए पक्के मकानात की फराहमी मरकजी हुकूमत का पुख्ता अज़्म है। जनाब चौहान महाराष्ट्र में सतारा के मकाम पर मुनाकद

0: महा आवास अभियान के तहत तामीर शुदा मकानात के इफ्तिताह के मौके पर इज्तिमा से खिताब कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग एक साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए NEET UG 2026 इम्तिहान दोबारा 21 जून को मुनक़िद होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एजेंसी ने उम्मीदवारों और वालिदैन से कहा है कि वो मुसद्दिका और मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ NTA के सरकारी ज़राए पर ही एतमाद करें। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को मुनक़िदा इम्तिहान पेपर लीक होने के इल्जामात के बाद रद्द कर दिया गया था। इस मामले की तहकीकात इस वक्त मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI कर रही है। इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में होने वाले एक और दौरे के मुजाकरात के बाद अपनी जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तेफाक किया है। अमरीका के महकमे खारजा के तर्जमान टॉमी पिगोट ने कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी को मजीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो। यह फैसला अमेरिका की मेजबानी में अमेरिका और लबनान के दरमियान 2 रोज तक जारी रहने वाली इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज मुजाकरात के इख्तिताम के बाद किया गया जो कल मुकम्मल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पिगट ने कहा कि अमरीकी महकमे खारजा 2 और 3 जून को सियासी मुजाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। इसके अलावा इस महीने की 29 तारीख को पेंटागन में सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत का मरहला भी शुरू किया जाएगा जिसमें दोनों ममालिक के फौजी वफूद शिरकत करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में आज शदीद गर्मी की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कोंकण और गोवा के इलाकों में भी आज गर्म और हफ्स वाले मौसम की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अंडमान व निकोबार जजायर में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स मुकाबले में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो जी फी की जोड़ी से होगा। इस दौरान PV सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की आलमी नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से 21-19, 18-21, 15 से हार गई है, जबकि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत वितित्सर्न से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के निशाने का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर 4 गेंदों में यह मैच जीत लिया। आज शाम ईडन गार्डन में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी शहर से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा अरब इमारात दौरे को शह सुर्खी बनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ हुई 2 तरफा मीटिंग के दौरान कई अहम मुआहदे तय पाए जिनमें LPG की सप्लाई और $15 अरब की सरमायाकारी काबिल जिक्र हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन देने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक ने ग्लोबल साउथ और कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में जारी एक सदारती बयान में ये बात कही गई। इस खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारों ने NEET UG 2026 का इम्तिहान दोबारा 21 जून को कराए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग की पीछे में हुई मीटिंग में चीन ने मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर दिया। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने नुमाया तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम जखायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है।

सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान में जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: अब आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेहत।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि इन दिनों गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में कुछ बीमारियां मेनली बुखार, टाइफॉइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, पीलिया वे डेंगी ज्यादा मात्रा में देखने में आते हैं। हर वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है और इस दिन कोई विशेष संदेश या कोई थीम दिया जाता है और इस वर्ष का थीम या संदेश है फाइट डेंगू सेव लाइव्स, डेंगू से लड़ें और जिंदगी बचाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्टडी के अनुसार 2024 से 26 के बीच में विश्व में 14.6 मिलियन यानी 146 लाख डेंगू के केसेस देखने में आए। आज डेंगू 100 से ज्यादा देशों में देखने में एंडेमिक है। एक परिचर्चा के लिए आज के विशेषज्ञ से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर तनु जैन डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। डॉक्टर तनु जैन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सुजीता कृपलानी अस्पताल में।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तनु जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि हम हर वर्ष ये 16 मई को नेशनल डेंगू दिवस मनाते हैं और एक थीम देते हैं, जैसे इस वर्ष का थीम है फाइट डेंगू सेव लाइव्स, तो इस पर्टिकुलर डे पर एक थीम देने से क्या कुछ पर्पस हल होता है?
4: तो ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा। और आप देखते हैं कि किसी भी मेजर डिजीज को लेके कोई ना कोई विश्व में या देश में एक दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जैसे डेंगू का अगर हम 16 मई का कहें तो इसका एक उद्देश्य ये होता है कि डेंगू का सीजन अधिकतर प्री मानसून से लेके और पोस्ट मानसून तक रहता है, तो इसके बाद केसेस बढ़ने शुरू होते हैं। तो जब हमारे केसेस लगभग जुलाई के बाद से जब बारिश आती है और बारिश का पानी ठहरना शुरू होता है, केसेस में बढ़ोतरी आती है। लेकिन स्टेट्स को या हॉस्पिटल्स को या जनरल पब्लिक को उसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से करनी पड़ती है। तो जो हमारे सेंटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में हम रन करते हैं, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, तो हमारे प्रयास तो पूरा 12 महीने ही चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई लीन पीरियड होता है, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए कि 16 मई एक इम्पॉर्टेंट डे है और यहां से आपकी तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो ये तो शुरुआत है, तो ये तैयारियां यहां से ऑब्जर्व करते हैं और की कंप्लायंस होती है, क्योंकि ये हम सारे जो राज्य हैं हमारे उनके साथ मिलके करते हैं। तो 16 मई को आप देखेंगे तो हर राज्य में अपना एक कार्यक्रम होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, बहुत सारे हमारे संस्थान हैं जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं या बाकी संस्थान हैं, वो भी इस दिन को जरूर ऑब्जर्व करते हैं और एक अपने लिए तय करते हैं नियमानुसार कि हम इस दिन लेके आगे तक कैसे काम करेंगे और कैसे डेंगू की रोकथाम करेंगे।
2: प्रोफेसर घनश्याम, जब हम बात कर रहे हैं डेंगू की, तो सबसे पहले तो यही जान लेना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल डेंगू है क्या, किस किस लोगों को रिस्क ज्यादा है और कितनी समस्या है, कितने विकराल समस्या है।
3: ये एक तरह का वायरस है तो इसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। तो जैसे कई लोग एंटीबायोटिक हमारे यहाँ ले लेते हैं कि बुखार आ गया, तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। एक तरह का ये वायरस है और ये वायरस वैसे चार तरह के होते हैं, डेंगू 1 से, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। हम उतने डीपली नहीं जाते कि डेंगू 1 से हुआ है 4 से हुआ, बट हमें पता होना चाहिए कि चार तरह के वायरस होते हैं। और ये जो वायरस होते हैं ये एक तरह से मच्छर के थ्रू हमें इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो मच्छर होता है एडीज मॉस्किटो कहते हैं, जो कि हम टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का मच्छर होता है जो दिन में ज्यादा काटता है और ये साफ पानी में ज्यादा रहता है, जैसे गमले वमले इस तरह के पानी में, और इसके पैरों

0: सिम्टम्स होते हैं, एक तरह का लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर में बहुत कॉमन होता है, बहुत सिवियर कभी आंखों के पीछे दर्द होता है, और इसमें बहुत मलेज और बहुत थकान और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं डेंगू के। और लाल रैश होना और कहीं से ब्लीडिंग हो जाना, जो कि सिवियर डेंगू के एक सिम्टम्स है।
1: जी
0: तो जब भी मानसून में हमें, जहां पर मॉस्किटो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी जगह है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए, अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, उसको स्किन में रैश या चकत्ते पड़ रहे हैं, वो खाने पीने नहीं खा पा रहा है बिकॉज ऑफ फीवर या वॉमिटिंग या बहुत उल्टी जैसा मन कर रहा है, और बॉडी में पेन और हेडेक है,
1: जी
0: तो वो डेंगू के सिम्टम्स हैं। और आपने बताया कि एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और मच्छर के काटने से होता है,
1: जी
0: तो हमें मच्छर से बचाव करना है। बुखार में हमें, जब भी बुखार हो और इस तरह के वार्निंग सिम्टम आए, कि ब्लीडिंग आए, बेहोशी आए, उसमें हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है, और बिना सलाह के ना तो एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है,
1: जी
0: अगर बुखार भी आए तो पैरासिटामोल को छोड़ के कोई भी पेन किलर नहीं लेना है, बिकॉज उन लोगों को ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, कई बार किडनी खराब हो जाती
1: जी
0: है।
1: तो ये जो डेंगू है इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कोई पता लगा एडेस इजिप्टी है या एडेस एल्बोट, वो भी आ रहा है, तो क्या आप हमें कुछ डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है कि नहीं? और दूसरा ये कि फीवर तो मलेरिया में भी ठंड लग के होता है, डेंगू वाला भी कहता है जी मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो क्या ये मलेरिया या चिकनगुनिया बुखार करीब करीब सिमिलर सी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, तो इन तीनों में बेसिकली मोटे तौर पर क्या डिफरेंस होता
2: जी
1: है?
2: तो एक्चुअली जैसा कि डॉक्टर घनश्याम ने अभी बताया हमें कि जो मॉनसून का सीजन आता है उसमें हर तरह की बीमारियां चल रही होती
1: जी
2: हैं, खांसी जुकाम से लेके जो भी एक वायरल डिजीज है,
1: जी जी
2: डेंगी है, चिकनगुनिया है और मलेरिया है, ठीक है,
1: जी
2: इसके साथ साथ बहुत सी और भी बीमारियां हैं जो बुखार से शुरू होती हैं।
1: जी
2: तो हम लोग जो हैं वो फीवर को एक सिंड्रोम मानते हैं, मतलब एक फीवर आपको ये बता रहा है कि इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमारे सेंटर पे जो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टरबॉर्न डिजीजेस कंट्रोल है, तो हम 6 डिजीजेस देखते हैं जिनका सबका इनिशियल जो प्रेजेंटेशन है वो बुखारी होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। तो जैसे इसमें जैपनीज इनकेफ्लाइटिस भी ऐड हो जाएगी, लेकिन इसमें बुखार में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और वैक्टर में भी डिफ्रेंशिएशन है। जैसे मलेरिया के लिए एनोफिलीज वैक्टर है, और डेंगी के लिए और चिकनगुनिया के लिए एडीज वैक्टर है, जेई के लिए क्यूलेक्स वैक्टर है। तो वेक्टर डिफरेंट है, उन मच्छरों की ब्रीडिंग हैबिट्स भी डिफरेंट है कि वो कहाँ ब्रीड करते हैं। जैसे मलेरिया का मच्छर गंदे रुके हुए पानी में ब्रीड करता है, तो उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक इशू है। जबकि डेंगी का जो वेक्टर है, जो एडीज इजिप्टाई एडीज एल्बोपिक्टस है, वो पेरिडोमेस्टिक ब्रीडिंग होती है, तो वो एक छोटा सा 10 ml 15 ml पानी भी कहीं इकट्ठा हो जाएगा और एक हफ्ते तक इकट्ठा रहेगा तो उसके अंदर ब्रीडिंग हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही एफिशिएंट वेक्टर है ये। तो डेंगी का वेक्टर जो है इस तरह ब्रीड करता है, और क्यूलेक्स का वेक्टर यूजुअली बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में जैसे पैडी फील्ड्स वगैरह हैं वो उन जगहों पर ब्रीड करता है। तो एक तो इनकी वेक्टर की ब्रीडिंग डिफरेंट होती है, फिर इनके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप मलेरिया का लें तो मलेरिया का क्लासिक सिम्टम तो फीवर विद चिल्स कहा जाता था, फीवर विद चिल्स एंड राइगर, हालांकि वो क्लासिक सिम्टम अब बहुत जरूरी नहीं है कि हर बार देखने को मिले। और मलेरिया में भी दो तरीके का मलेरिया होता है, वाइवैक्स भी होता है और फैल्सिपेरम भी होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स तो हैं जो डॉक्टर अपने हिसाब से सोच के लिखता है, लेकिन इस सीजन में अधिकतर हम टेस्ट लिख देते हैं। तो एक माइक्रोस्कोपी होती है और एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट एक तरह से होता है, तो उससे पता आसान से लग जाता है कि ये मलेरिया है या ये नहीं है। कई बार हमने देखा है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियां तीनों भी एक साथ हो सकती हैं, और कभी कभी दो बीमारी भी एक साथ हो सकती हैं, क्योंकि वेक्टर तो है और ह्यूमन बींग है। डेंगू में यूजुअली बुखार सिर दर्द के साथ आता है, स्पेशली जो आपके रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, आईज के पीछे जो पेन होता है, हेड एक, बॉडी एक, उसके साथ यूजुअली फीवर आता है, और ये फीवर के साथ कभी कभी हमें रैशेज भी देखने को मिलते हैं। डेंगू के लिए भी सरकार ने लगभग 870 सेंटिनल सर्वेलेंस हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री बनाए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक है और कई डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा भी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और एम्स लाइक इंस्टीट्यूट जो हैं उनके पास टेस्ट है। तो ये NS1 टेस्ट है एलाइजा और IgM एलाइजा टेस्ट है, इससे डेंगू पता लग जाता है। तो पहले 5 दिन में और 5 दिन के बाद ये टेस्ट आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा रिसेंट इन्फेक्शन है या थोड़ा पुराना इन्फेक्शन है। तो डायग्नोसिस के लिए बहुत जल्दी और इजी डायग्नोस्टिक्स हमारे पास हैं जो हमको इमीडिएटली बता सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। जी
1: प्रोफेसर घनश्याम, जैसा डॉक्टर तनु जी कह रही हैं डायग्नोसिस जरूरी है, निश्चित रूप से मलेरिया के लिए आप पेरिफेरल स्मीयर कर लेते हैं, टाइफाइड हो तो टाइफाइड डॉट कर लिया, या तो, लेकिन क्या है कि डेंगू के लिए चाहिए, क्या हमें पहले बेसिक टेस्ट नहीं करने चाहिए, हमें हम NS1 पे जाएं, CBC ASR वगैरह करें, क्या उससे कोई पिक्चर में प्रेजेंट होगी कि शायद प्लेटलेट गिर रहे हों, और अगर नॉर्मल प्लेटलेट क्या वैल्यू रहती है, कितना इसमें कितना गिर जाए, किसे हम माने कि भैया हाँ ये डेंगू हो सकता है।
0: जी हाँ जवाहर जी, जैसे

0: ये आपने बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पैनिक हो जाता है, डेंगू जब आता है पूरे शहर में पूरे देश में एक तरह का परेशान हो जाते हैं लोग कि अरे डेंगू आ गया, और प्लेटलेट के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट अगर डेंगू में है तो प्लेटलेट नहीं है, हिमेटोक्रिट है, या PCV या पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि आपने बोला हमें CBC कराना चाहिए या कोई और, बिल्कुल हमें CBC कराना चाहिए। उसमें हमें देखना चाहिए हिमेटोक्रिट कितना है या पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं PCV। ये एक तरह का बताता है कि जैसे हीमोग्लोबिन अगर 15 है तो पैक सेल इसका 3 गुना होता है, 45 के अराउंड नॉर्मल होता है, 40 से 45। तो इस बीमारी में क्या होता है कि कैपिलरी लीक होती है, तो जब कैपिलरी लीक होती है तो आपका जो RBC पार्ट है या जो थोड़ा सा जो हार्ट पार्ट है ब्लड में वो वहीं रहता है, और कैपिलरी लीक से वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है खून। तो आपका हिमेटोक्रिट 40 से 50 या 60 हो सकता है, इसका मतलब आपके कैपिलरी से ब्लड लीक हो रहा है, जिसकी वजह से आपको शॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो प्लेटलेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जबकि प्लेटलेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हिमेटोक्रिट है। नॉर्मल प्लेटलेट हमारे यूजली 1.5 लाख से ज्यादा होता है, तो नॉर्मल अराउंड 1.5 टू 3 लाख तक हम नॉर्मल कहते हैं, और अगर 1.5 लाख से कम है पर ml प्लेटलेट तो हम वो कहते हैं प्लेटलेट कम है। बट अगर ये प्लेटलेट बहुत कम हो जाए, जैसे कि हम कहेंगे 10,000 से कम हो जाए, तो हमें चिंता का विषय बनता है डॉक्टर्स के लिए। अदरवाइज 40-50 प्लेटलेट में ऐसा नहीं कि उनको ब्लीडिंग हो जाएगी, मॉनिटर करने की जरूरत है, बट उसमें प्लेटलेट देने की कोई जरूरत नहीं है अनलेस अंडर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग हो रही है। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि डेंगू के यूजली जो फीवर आ रहा है, मैडम डॉक्टर तनु ने बताया अभी कि डेंगू जब आता है तो बहुत सारे AFI एक्यूट फीबल इलनेस के एक एपिसोड में आप मलेरिया डेंगू के अलावा चिकनगुनिया हो सकता है, स्क्रब टाइफस टाइफाइड हो सकता है। तो हम सिम्टम्स तो देखते हैं कि बॉडी एक है, उनको रैश हो रहा है, इरिटेबल पेन हो रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसके अलावा डेंगू का एक क्लासिकल सिम्टम्स है कि 3 से 5 दिन तक ही फीवर रहता है शुरू में, ये सारे सिम्टम्स आएंगे, 3 से 5 दिन बुखार आता है, उसके बाद 6ठे 7वें दिन बुखार उतर जाता है, और वो ही क्रिटिकल पीरियड होता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। उसमें कैपिलरी लीक जो हम कह रहे हैं, हिमेटोक्रिट बढ़ने लग जाता है, प्लेटलेट नीचे गिरने लग जाता है, और उसके साथ पेशेंट को थोड़ा सा बेटर फील होता है, और वहीं चूक हो जाती है कि पेशेंट पानी अगर ठीक से ना ले, हाइड्रेशन ठीक से ना रहे, तो उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर और शॉक हो सकता है। और 2 दिन के बाद अगर वो हाइड्रेशन ठीक रहता है तो पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है विदाउट एनी एंटीबायोटिक। मैं ये स्ट्रेस देना चाहूंगा कि एंटीबायोटिक नहीं देना है, तो विदाउट एन एंटीबायोटिक। तो हम अगर किसी को 5 दिन से ज्यादा फीवर हो रहा है तब हम सोचते हैं इसको शायद डेंगू नहीं, क्या पता इसको मलेरिया है, क्या पता टाइफॉइड है, स्क्रब टाइफस है, तो उसको भी इवेल्युएट करना चाहिए, और उन्हीं पेशेंट को हमें इमरजेंसी या अस्पताल में भेजना चाहिए जब उनका फीवर बहुत ज्यादा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फीवर डेंगू में कई बार ब्रेन में जैसे आपको एनकेफलोपैथी हो सकती है, उन लोगों को आना चाहिए, अल्टर्ड सेंसोरियम कहते हैं, पहचान नहीं रहा है पेशेंट, या उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसको लैटिंग में या फिर यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब कहीं एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर वो ठीक से नहीं खा पा रहा है, अगर उसको बहुत ज्यादा उल्टी होगी तो कुछ भी खाएगा हाइड्रेशन नहीं रख पाएगा। तो हम लोग कुछ वार्निंग साइंस देखेंगे, अगर किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, फ्लूइड नहीं ले पा रहा है, उसको अस्पताल आना चाहिए इमीडिएटली। अगर किसी को बहुत तेज बुखार है, इतना बुखार है कि वो परेशान है, वो ठीक से अपनी दिनचर्या या एक्टिविटी और डेली लिविंग नहीं कर पा रहा, उसको आना चाहिए। किसी को एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है उसको अस्पताल आना चाहिए और टेस्ट कराने चाहिए। और चौथा, अगर वो अल्टर्ड सेंसोरियम है, लोगों को पहचान नहीं रहा है, इसका मतलब उसके कुछ ऑर्गन्स ठीक नहीं चल रहे, तो इनको अस्पताल आना।
1: प्रोफेसर घनश्याम, क्या ये जो परसिस्टेंट वोमिटिंग है ये, क्योंकि इसमें और रैश, क्या ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर हैं डेंगू के डायग्नोस उसमें कि भाई हाँ इनको ये हो सकता है? और NSAIDs का क्या रोल है? लेकिन लोग जो है नॉर्मली एस्पिरिन और ये जो IBUPROFEN इस तरह की दवाइयां अपने आप ही खा लेते हैं वो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और परसिस्टेंट वोमिटिंग और रैश अगर है तो रैश कैसा होता है, कहाँ दिखेगा रैश, कितना रैश होगा?
0: बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि रैश से आप पता कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है
1: जी,
0: मीजल्स होता है, मम्स होता है, इन सब में भी रैश होता है, बट रैश से आप पता कर सकते हैं किसी तरह का एक वायरल इन्फेक्शन है। ऑल्दो ड्रग रैश भी एक रीजन है, बट ड्रग रैश होगा आपने दवाई खाने के बाद हुआ है, तो हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। बट रैश ऐसा होता है कि इसमें यूजली कैपिलरी लीक हो रही है, तो कई बार छोटे छोटे पेटिकिए कहते हैं हम, दाने दाने से बन जाते हैं, जो इसमें कि ब्लड कैपिलरी से थोड़ा सा ब्लड लीक हुआ है इस तरह का महसूस होता है, जो कि महसूस टच करने में महसूस नहीं होता है, या पूरे स्किन में ब्लीडिंग जैसा भी महसूस हो सकता है। दूसरा एक एरिथमेटस रैश कहते हैं, आप अगर हाथ पे आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे 3 उंगली से, आप 4 आर्म में या कहीं पर, तो आपको देखेंगे 3 उंगलियों के निशान छप जाते हैं। तो इस तरह का भी रैश देखा जाता है एक्यूट वायरल इन्फेक्शन में, स्पेशली डेंगू में। तो ये सारे डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कंफर्म परफॉर्म नहीं कर सकते।

0: से. लेकिन जैसा कि आपने बताया, वॉमिटिंग, परसिस्टेंट वॉमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्योंकि हम कह रहे हैं डेंगू का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है और कोई और पेन किलर भी नहीं है, पैरास्टामोल बुखार के लिए लेना है. सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन, ठीक से आपको फ्लूड लेना है, पानी लेना है, ओआरएस का पानी ले सकते हो. अगर आप ओआरएस या कोई पानी नहीं ले पा रहे हैं तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है, आपके डेंगू सीवियर डेंगू में बदल जाएगा. तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, पानी नहीं पी पा रहा है और बुखार आ रहा है, इट इज अ इंडिकेशन कि आपको इमरजेंसी जाना चाहिए अस्पताल में. टेस्ट डेंगू के, जैसे कि डॉक्टर तनु ने बताया कि NS1 एंटीजन बहुत अच्छा टेस्ट इजीली अवेलेबल है, आप उससे टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं. और क्योंकि वो उल्टी कर रहा है और उल्टी जैसा है तो उसको आईवी फ्लूड लेना पड़ेगा, तो उसको एडमिट करके एक इंट्राकैथ लगाते हैं हम लोग, उससे आईवी फ्लूड देंगे, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा. सिर्फ पानी देने से, आइदर मुंह से या आईवी फ्लूड इंजेक्शन से अगर फ्लूड दे तो डेंगू ठीक हो जाता है. 2 दिन क्रिटिकल पीरियड रहते हैं. और लास्टली, जैसे कि आपने बताया कि और कोई पेन किलर नहीं लेना चाहिए, पैरासिटामोल की ही गोली लेनी है
1: और
0: 500 mg की गोली एडल्ट डोजेज होती है, बच्चों की 25 mg/kg के अकॉर्डिंग डोजिंग इस तरह से रहती है. तो पैरास्टामोल के अलावा कोई गोली नहीं लेनी है. आप हर 6 घंटे में पैरास्टामोल की गोली रिपीट कर सकते हैं एडल्ट में, तो एक दिन में 4 गोली तक आराम से आप ले सकते हैं बुखार जब तेज हो उसमें. बट जैसे कि आपने बोला, एस्पिरिन अवॉइड करनी है आपको, कोई डाइक्लोफिनेक जो कि बहुत कॉमनली यूज होती है, वो सब अवॉइड करनी है क्योंकि इससे ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट डिस्फंक्शन हो जाता है और किडनी डैमेज भी हो सकते.
1: जी डॉक्टर तनु जी, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डायग्नोसिस में NS1 एंटीजन कर लेते हैं, प्लेटलेट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन क्या कोई नई टेक्निक्स आ गई जैसे हम डिटेक्ट कर सके, कोई जीनोम सीक्वेंसिंग का कोई रोल है या कोई हम वायरल आइसोलेशन का कैरेक्टराइजेशन का कोई रोल है, कोई रोल है उनका या नहीं है, या हम बहुत एडवांस में बात कर रहे हैं?
2: नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं और क्लिनिकल स्किल्स भी हैं, और जैसा डॉक्टर घनश्याम ने बहुत ही क्लियरली बताया कि 5 डेज के बाद तो वो आपको कुछ भी टेस्ट करेंगे आपको डेंगू का वायरस मिलेगा भी नहीं, मैक्सिमम 5 to 7 डेज तक आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर रिसर्च सेक, फॉर यू नो इन केसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस या कहीं पे कोई नीड है उसमें तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट इट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड. एंड डेंजर साइंस बहुत अच्छे से बताएं, तो जैसे हम भी प्रोग्राम के अंडर में यही डेंजर साइंस बताते हैं. और आपने एक चीज देखी होगी, देयर हैज बीन अ शिफ्ट, अभी प्लेटलेट्स के पीछे इतना पैनिक नहीं है जो एक टाइम पे शायद 8 से 10 साल पहले होता था. और उसकी वजह यह भी है कि प्रोग्राम में एक क्लिनिकल मैनेजमेंट की गाइडलाइंस बनी है और उन गाइडलाइंस को लेके बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चल रही है. तो जो डॉक्टर घनश्याम भी बोले, फ्लूइड मैनेजमेंट, दैट इज वेरी क्रिटिकल. इवन इन सीरियस केसेस द फ्लूइड मैनेजमेंट रिमेन्स अ की. तो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स छूट जाता है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, उसको मैनेज करना मेजर की होता है, और प्लेटलेट का इतना बड़ा इशू आजकल नहीं आता है. डेंजर साइंस में वॉमिटिंग, स्टमक, हम तो इवन पेट में दर्द अगर किसी को हो रहा है, बुखार हो गया, बुखार ठीक हो गया, उसके बाद भी इंसान ठीक नहीं फील कर रहा है, उसको पेट में दर्द है, अनईजी फील कर रहा है, दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर हमारी आईसी भी बनी हुई है, जैसे पोस्टर्स, चार्ट्स, वीडियोस, ऑडियोस, जो हम जब ये डेंगू का सीजन आता है तो लगातार प्ले करते हैं. तो हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि डेंगू हो, माइल्ड डेंगू हो वो ठीक है, लेकिन डेथ नहीं होनी चाहिए किसी की, और कोई सीरियस केस नहीं होना चाहिए. तो हमारा बहुत बड़ा फोकस है और उसकी वजह से प्रोग्राम के अंडर में बहुत चेंज आया है. हमारा केस फेटैलिटी रेट 0.01 से नीचे चले गया है, सो विच इज अ बिग अचीवमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कि इतना हाई केस फेटैलिटी रेट होता था, बहुत डेथ्स होती थी, बट अभी हमारा केस फेटैलिटी रेट बहुत लो हो गया है और बहुत कम हमारी डेथ्स जो है रिपोर्ट होती हैं. तो ये सारे एफर्ट्स ही हैं जो कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डॉक्टर घनश्याम तो हमारे एक्सपर्ट हैं उसमें, जिसमें इन्होंने गाइडलाइंस में
1: ये बताया. क्या नारियल पानी का कोई रोल है और क्या सरकार क्या कर रही है? सरकार की तरफ से, आप नेशनल जो सेंटर है वेक्टर डिजीज कंट्रोल का, आप उसके डायरेक्टर है, तो क्या सरकार की तरफ से क्या प्रयास है और नया क्या हो रहा है?
2: तो नारियल पानी तो सरकार नहीं ऐसे रिकमेंड करती है, बट रिकमेंड सरकार कर रही है कि हाइड्रेट करें. तो हाइड्रेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं. नारियल पानी इज ऑल्सो वेरी सेफ ऑप्शन. अगर आप डायबिटिक नहीं है, हैवीली डायबिटिक नहीं है, यू कैन यूज इट, एंड ऐसी कोई बात नहीं है, बट हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम पूरा गवर्नमेंट नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल का रन कर रही है, उसमें प्रिवेंशन से लेके वेक्टर मैनेजमेंट से लेके केस मैनेजमेंट से लेके वो सारी एक्टिविटीज, एक ऑक्टालॉग करके स्ट्रैटेजी है हमारी, जिसमें 8 strategies आती हैं, उसके थ्रू सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है.
1: तो वेक्टर डिजीज कंट्रोल के लिए क्या क्या और नए नए मेथड्स क्या ले रहे हैं सरकार, क्या क्या देखा है? क्या कोई वैक्सीन नई डेवलप हो रही है? ऐसा सुना जा रहा है कि वैक्सीन नई डेवलप हो रही है.
2: मुझे पता था ये सवाल जरूर आता है,
1: क्योंकि आदमी कहता है कि साहब मुझे टीका लगा दो, मुझे कुछ नहीं करना, फ्लू अब मौसम आ रहा है तो एक फ्लू की वैक्सीन लगा लो, एडल्ट्स वाले है ना, जैसे MMR लगा देते हैं, ऐसे वैक्सीन लगाए तो कहता मुझे पीछा छूट जाएगा, तो क्या वैक्सीन इज द आंसर?
2: कुछ वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अवेलेबल हैं.

0: कंट्री में, लेकिन देश में भी और अपनी कंट्री में भी, लेकिन वो अभी हमारी कंट्री के लिए अप्रूव नहीं है. तो जैसे कि डेनवैक्सिया है जो सबसे पहले लाइसेंस्ड हुआ था 2015 में, बट उसको यूज इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आपने वैक्सीन नॉर्मल इंसान को दिया तो जब उसको सेकंड किसी और, जब उसको डेंगू होगा, नेचुरल डेंगू होगा, तो वो ज्यादा सीरियस होगा. तो इसलिए वो वाली वैक्सीन भी हमारे यहाँ रिकमेंडेड नहीं है. बट अभी ICMR एक वैक्सीन लेके आ रहा है, तो विद इन अ ईयर और टू वो वैक्सीन आएगी, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं. तो वी आर वेटिंग कि वो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होती है. तो जो अभी करंटली अवेलेबल वैक्सीन है, टकेडा की वैक्सीन भी है, क्यू डेंगा भी है, तो ये वैक्सीन अभी हमारी कंट्री में अप्रूव नहीं है फॉर वेरियस.
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो क्या ये डेंगी ऑल है जैसे, ये भी जो वैक्सीन है, तो ये सिंगल डोज वैक्सीन है, टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, या ये मल्टीपल डोज लगाने पड़ेंगे?
0: डेंगी ऑल जो है ये टेट्रावेलेंट वैक्सीन ही है. और अभी आई थिंक इसकी
2: क्यू डेंगा
0: आई है, दैट इज मोर दिस थिंग.
1: तो इसको कितनी बार लगानी पड़ेगी वैक्सीन को, कितनी बार लगानी पड़ेगी डॉक्टर?
2: जी हाँ डॉक्टर जवाहर जी, ऐसे आपने पूछा कि जब वैक्सीन आते हैं तो सबको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, आपने बताया कि शायद हम डेंगू से पीछा छोड़ जाएंगे. 100+ कंट्रीज में हो चुकी है, 5-10 करोड़ लोगों को एवरी ईयर हो रही है. तो जो क्यू डेंगा वैक्सीन आई है, आई थिंक रिसेंटली DGCI ने इसको अप्रूव कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने भी, बट इसे अभी फ्रीली अवेलेबल नहीं है. इसमें देखा गया कि डेंगू सीवियर डेंगू से बचाता है, ये तो सीवियर डेंगू से बचाता है. और चारों जो हमने बताया थे, चार तरह के वायरस होते हैं डेंगू के, Dengue 1, 2, 3, 4. तो Dengue 2 कहते हैं सबसे ज्यादा फेटल होता है, या सबसे ज्यादा खतरनाक होता है. तो इसमें Dengue 2 को लिया गया है, बाकी 3, 4 और 1 को भी कुछ पार्ट है, बट मेन Dengue 2 बैकबोन में है. दो बार लगानी है इस वैक्सीन को, एक 0 और 1 3rd month में लगानी है, दो बार. और काफी सालों तक प्रोटेक्शन कहते हैं कि जहां पर भी ट्रायल हुए, इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रायल नहीं हुए बट इट्स अप्रूव्ड, तो काफी सालों तक सीवियर डेंगू से बचाता है. इसको देखा गया, जो स्टडीज की थी वो तो वैसे 4 साल से ऊपर 60 साल तक सब में की गई है, बट मैं बताना चाहूंगा डेंगू सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में,
1: बच्चों में.
2: हमारे एडल्ट में आते हैं तो वो हम उन्हें समझा सकते हैं कि आपको ज्यादा पानी लेना है, वो सिम्टम्स भी बता देते हैं तो हम उनको हाइड्रेट कर देते हैं, उन्होंने सिम्टम. बच्चा जब बीमार होता है वो बताता नहीं है
1: जी,
2: छोटा बच्चा, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आपको देख के बताना है कि वो बीमार है, वो डिहाइड्रेटेड है, आप उसको फ्लूड देना है, उसको एडमिट करना है. उन लोगों में ये डेंगू वैक्सीन में भी इफेक्टिव अच्छी रहेगी. तो कुछ कंट्रीज में जहां बहुत एंडेमिक है, दे आर सेइंग कि 6 से 16 साल वालों को लगाएंगे ये वैक्सीन, और मे बी नेशनल प्रोग्राम में भी डालें इंडिया में या कहीं पर भी. तो उससे ये रहेगा कि जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जहां मोर्टेलिटी ज्यादा है उसको हम सेव कर पाएंगे. और अभी तक की सेफ्टी डाटा ठीक है, पिछले जो वैक्सीन थे जो मैडम ने बताया उनसे ये थोड़ा बेटर है, Dengue ऑल जो था उससे बेटर है. और क्योंकि अब अप्रूवल हो चुका है, हमारे साइंटिस्ट ने देख लिया है कि इट कैन बी यूज, और अच्छी बात यह है कि ये जिन लोगों को पहले डेंगू हुआ है उसमें ज्यादा इफेक्टिव है. पहले प्रॉब्लम हो रही थी हमें कि इसको डेंगू हुआ दोबारा होगा तो सुपर डेंगू ना हो जाए या साइटोकाइन स्टॉर्म ना हो जाए, तो इसमें डाटा थोड़ा डिफरेंट है. और हमारे कंट्रीज में मुझे लगता है जैसे दिल्ली में इतना एंडेमिक है, हम सबको डेंगू, मुझे भी डेंगू हुआ था एक बार सीवियर डेंगू.
0: और तो जो हमारे केसेस जो है सब क्लिनिकल बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो केसेस हो रहे हैं वही डेंगू है, बहुत सारा डेंगू अदरवाइज भी है.
1: डॉक्टर दानु ये बताइए कि क्या एक बार जिसको डेंगू हो गया तो पेशेंट ने कहता है भाई डॉक्टर साहब एक बार तो हो गया अब दोबारा तो नहीं होगा, क्या इसकी गारंटी दे सकते?
0: ऐसी कोई गारंटी नहीं है. दूसरे स्ट्रेन से हो सकता है और वो ज्यादा सीवियर होता है. अगर
1: दूसरी चीज ये कि डाइट, क्योंकि सबसे पहले डाइट के अगर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि साहब मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना,
2: बहुत इम्पोर्टेंट
0: क्वेश्चन है. मैं डॉक्टर घनश्याम से कहूंगी, डेफिनेटली अपनी क्लिनिकल स्किल से बताएंगे, बट मुझे लगता है कि वाई डेंगू इन एनी इलनेस फूड शुड बी वेरी सिंपल, इजी टू डाइजेस्ट एंड न्यूट्रिशियस. तो ये बेसिक अगर हम 3 चीजें याद रखेंगे तो हमारे फूड का अनहाइड्रेटेड रहना चाहिए, तो जो भी आपकी पसंद हो बट सिंपल टू डाइजेस्ट होना चाहिए, इजी फूड होना चाहिए, और मतलब न्यूट्रिएंट रिच फूड होना चाहिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर घनश्याम विल टेल अस.
2: जी हां, मैं क्योंकि हम लोग डेंगू काफी देखते हैं, खासकर अब आने वाला है मॉनसून सेशन, तो कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा. तो उसमें यह है कि हमने बोला हाइड्रेशन इज अ ट्रीटमेंट, तो जितना फ्लूड वाली चीजें लेंगे वो बेटर रहेगा. दूसरा रहता है डेंगू एक तरह का वायरस इन्फेक्शन है, इसमें बहुत सीवियर गैस्ट्राइटिस हो जाता है, उसमें आपकी एपेटाइट चली जाती है, तो कई लोग खाना कम कर देते हैं. तो हम कहते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है आप खा सकते हो, बट हाइड्रेशन रखो, 2-2.5 लीटर पानी लेना है, पानी लो, ORS लो या नारियल पानी भी लो, नारियल पानी महंगा है नॉर्मल पानी से, अगर ले सके तो अच्छी बात है, उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है एंड टेस्टी भी होता है. पर देखा गया खाने के उसमें कि हमने लोग पपीते के पत्ते खाने लग जाते हैं,
1: पपीते के पानी का जूस, नीम और लेमन ग्रास।
2: हाँ, तो पपीते का अगर आप देखो तो पका हुआ पपीता भी या थोड़ा कच्चा पपीता बहुत कड़वा होता है।

0: उसका पत्ता तो बहुत ही कड़वा होता है। अगर आप कड़वी चीज खाएंगे तो आपको और उल्टियां होगी, आपको और नौजिया होगा, तो आपका जो हाइड्रेशन रखना है वो और बुरा हो जाएगा। और कहते हैं उससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं।
1: एलोवेरा भी लोग,
0: हाँ एलोवेरा ये सब चीजें, और एक
1: बीट ग्रास होता है, एलोवेरा और
2: लेमन ग्रास,
0: तो ये सारी चीजें जो होती है इससे अगर आपको उल्टियां आ रही है तो आपको हार्म ज्यादा करेगा, आपको डिहाइड्रेशन करेगा, आपका नॉर्मल खाना भी बंद करेगा। तो हमने स्टडीज भी देखी है, प्लेटलेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी कड़वी चीज ना खाएं, नहीं तो लोग ऐसे आते हैं कि हम, हमें बोला गया कि बकरी का दूध पीना है कच्चा, उससे ठीक हो जाता है प्लेटलेट, और क्या क्या चीजें खा रहे हैं, बट कुछ नहीं, आपको सिर्फ नॉर्मल पानी पीना है, साफ पानी पीना है, अगर हो सके तो बॉयल करके पानी को ठंडा करके पिए, और हो सके तो थोड़ा एक चुटकी भर नमक और एक मुट्ठी भर चीनी डाल के ORS बना ले घर में, दैट इज द बेस्ट थिंग, और जो एपेटाइट है आप खाएं।
2: डॉक्टर साहब, जो डेंगू का जो वायरस है ये मेनली कौन से ऑर्गन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है?
0: सबसे इंपॉर्टेंट तो कार्डियोवेस्कुलर कहेंगे, तो कार्डियोवेस्कुलर में वेस्कुलर ब्लड वेसल में इफेक्ट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके जो वायरस आता है अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है और वो बॉडी रिएक्ट करके आपकी कैपिलरी जो ब्लड वेसल धमनियां हैं उसमें लीकेज
2: शुरू हो जाती है।
0: तो लीकेज करेगा तो आपके एक तरह से ब्लड वेसल, ब्लड प्रेशर ना उस ब्लड वेसल के टोन से या उसके प्रेशर से बनता है। जब कैपिलरी लीक होता है आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर एक बार कम हो गया, नॉर्मल जैसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं 120 से हम लोग 90 से ऊपर लेते हैं, 120 तक कहते हैं, अगर 90 से कम सिस्टोलिक बीपी, ऊपर वाला बीपी कम होता है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है आपको सारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे। आपका लीवर में LFT डेरेंज हो जाएगा, KFT डेरेंज हो जाएगा, तो सारे फंक्शन डेरेंज। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्लड वेसल में एक्ट करता है, बट देखा गया कि कुछ में सिवियर डेंगू में आपके लीवर में डायरेक्ट एक्शन कर देता है, तो आपका लीवर डैमेज होकर आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा उल्टियां या बेहोशी हो सकती है, और दूसरा ब्रेन में भी एनकेफलोपैथी भी कर सकता है, या कई बार डेंगू एनकेफलाइटिस हो सकता है। तो वो रेयर टू रेयर इंस्टेंसेस है, कॉमन नहीं है, और उसको प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल है ब्रेन का टेस्ट करके, इमेजिंग करके या CSF टेस्ट करके। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिलरी लीक हो रहा है, आपकी धमनियां लीक कर रही है, तो आपको लीक में जितना फ्लूड जा रहा है आपके लीकेज में, आपको IV फ्लूड से उसको चढ़ाना है या मुंह से लेना है।
2: डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी बीमारी के, किसी भी रोग के, कि इसका रोकथाम क्या है, प्रिवेंशन क्या है, प्रोटेक्शन क्या है?
1: भारत सरकार की पूरी यही कोशिश रहती है कि डेंगू को प्रिवेंट किया जाए, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी को लेकर चलते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि आपको मच्छर के काटने से बचना है। तो कैसे बचना है कि पहले तो अपने घर के आसपास और घर के अंदर किसी भी कंटेनर में, चाहे छोटा सा भी कंटेनर हो, स्पेशली फ्लावर पॉट्स, उसके नीचे रखी हुई ट्रे, उनके ऊपर पानी कहीं जमा नहीं होने देना है। ये डेंगू का मच्छर इवन एक साल बाद सर्वाइव कर जाता है, जो आपने पानी जैसे कूलर खाली किया, उसको ड्राई कर दिया, बट एक साल तक अगर आपने उसको स्क्रब नहीं किया, एक साल बाद आप दोबारा फिल करेंगे तो उसका एग फिर से लाइव हो जाता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहीं पर भी पानी जो है वो रुका हुआ, ठहरा हुआ 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम एक डे मनाते हैं, ड्राई डे जिसे कहते हैं, कि हफ्ते में एक दिन एक ड्राई डे मनाएं, जिसमें कि एक तो पानी खाली कर दें, दूसरा बहुत समझने की जरूरत है कि डेंगू का मच्छर बहुत एफिशिएंट है, एक सिंगल बाइट से भी वो ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज को। तो यानी कि आप पूरे वहां के और नीचे, क्योंकि वो प्रेफर करता है लेग्स पे, फेस पे, आर्म्स पे, यहां पे उसको बाइटिंग प्रेफरेंसेस हैं, तो इन पार्ट्स को अपना कवर रखें। और स्पेशली हॉस्पिटल्स के लिए हम जैसे रिकमेंड करते हैं कि अगर वेक्टरबॉर्न का सीजन है, तो अगर कोई भी डेंगू मलेरिया का पेशेंट या चिकनगुनिया का भर्ती होता है, तो उन हॉस्पिटल्स में बेडनेट्स हमेशा रहने चाहिए, ताकि विद इन हॉस्पिटल भी ट्रांसमिशन ना हो, ये भी देखने में आया है। घर में आप जो है दिन के टाइम भी सो रहे हैं तो मच्छरदानी में सो सकते हैं, रात को तो, क्योंकि ये डे बाइटिंग मस्किटो है, तो सबसे ज्यादा इसमें ना जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो बहुत इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो उनकी यूनिफॉर्म इस तरह की रहती है कि उनके पैर में दिन भर वो बैठे हुए हैं क्लास में, और क्योंकि वो मच्छर की हाइडिंग प्लेसेस ही वो हैं कि वो थोड़े से डार्क एरिया में छुप जाता है, तो टेबल के नीचे और इधर उधर छुप गया तो वो बाइट कर सकता है।
2: बस छोटा सा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि फॉगिंग का कोई रोल है?
1: फॉगिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है, और फॉगिंग बड़े मैसिव अगर कहीं पे आउटब्रेक्स हो जाए या आपको बहुत हैवी वेक्टर की ब्रीडिंग मिले, क्योंकि फॉगिंग आउटडोर होती है, आउटडोर में ये मच्छर इतना पनपता ही नहीं है, ये मोस्टली अंदर घर के पनपता है। और कई बार लोगों को देखा गया है कि जब फॉगिंग हो रही होती है तो खिड़कियां बंद कर देते हैं, तो घर के अंदर तो आपका केमिकल गया नहीं है, तो घर के बाहर है, तो जब आप खिड़कियां खोलोगे तो मच्छर बाहर से और अंदर आ जाते हैं। तो फॉगिंग का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन हमको पर्सनल प्रोटेक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और यही गवर्नमेंट के प्रयास है।
2: डॉक्टर तनु जैन डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है दिल्ली के लेडी

0: हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सुचिता कृपलानी अस्पताल में।
1: डॉक्टर तनु जैन और प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम, आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
5: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती आकाश।
6: नमस्कार, धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
7: सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, विज्ञान और साहित्य का बहुत गहरा संबंध है। जीवन दर्शन और जीवन शैली के समूचे कर्मकांड और उसके परिणाम मनुष्य के साहित्य में परिलक्षित होती हैं। इसीलिए साहित्य को जीवन दर्पण भी कह सकते हैं। इसमें विज्ञान भी शामिल है। वैज्ञानिक समाज के विकास में विज्ञान, साहित्य और पुस्तकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्ञान के प्रसार की सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक युग में तकनीक के साथ साथ गलत सूचनाओं को रोकने और समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने में ये पुस्तकें, जो कि विज्ञान की पुस्तकें होती हैं, विज्ञान साहित्य की जो पुस्तकें होती हैं, वो मुख्य भूमिका निभाती हैं। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे, पुस्तकों पर चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक समाज के विकास में इनके महत्व क्या है, किस प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार से ये लोगों के काम आ सकती हैं। इनके महत्व को बताने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सेवानिवृत्त दानिक्स अधिकारी महेश कुमार गुप्ता जी को। और महेश कुमार गुप्ता जी जो अपनी किताबें लिखते हैं, रचनाएं करते हैं, वो महेश भारती के नाम से रचनाएं करते हैं। महेश कुमार गुप्ता जी, हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
8: नमस्कार, धन्यवाद।
7: महेश जी, हमने कई अधिकारियों के नाम तो सुने हैं, कई पोस्ट सुने हैं, लेकिन ये जो दानिक्स अधिकारी हैं, ये किस प्रकार के अधिकारी होते हैं, यानी कि इनका काम क्या होता है?
8: ये दानिक सेवा जो है ग्रुप बी सर्विसेज है, और इसमें से ज्यादातर संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें से उनका चयन होता है, और कुछ अधिकारी जो है स्थानीय प्रशासन से पदोन्नति पाकर इसमें आते हैं। दानिक्स का मतलब हुआ कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप सिविल सर्विसेज,
7: यानी कि ये इन सभी यूनियन टेरिटरीज हैं लगभग, उनके वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके अधिकारी हैं। आप तो इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी रहे एक प्रकार से, और आपने कई स्थानों का भ्रमण भी किया हुआ है, क्या आपकी विज्ञान में रुचि रही है क्या?
8: हाँ, विज्ञान में मेरी शुरू से ही रुचि रही है, कॉलेज टाइम से रही है। फर्स्ट ईयर में था तो मैंने एक आर्टिकल लिखा मंगल ग्रह पर जीवन, तो वो उस समय हिसार एक शहर है, वहाँ से एक नवनाद पत्रिका निकलती थी, मेरा पहला लेख उसमें छपा था। पहली किताब चांद से मंगल तक तब आई जब मंगल पर एक अमेरिका की एक बग्घी वहाँ गई, और तब वो प्रकरण ताजा था, और फिर उसी के कुछ दिन बाद ही ये पुस्तक आई चांद से मंगल तक। उसका फोकस चांद से ज्यादा मंगल पर था।
7: जी महेश जी, आपने अभी एक शब्द कहा बग्घी, ये बग्घी शब्द साइंस में
8: रोवर का हिंदी अनुवाद है। रोवर जो है, जैसे चंद्रमा पर रोवर जाता है, मंगल ग्रह पर जाता है, वो घूमता रहता है। अच्छा, मुझे इस समय कोई उससे उचित कोई शब्द उसका रूपांतरण लगा नहीं। रोवर को हो सकता कि आप मानक शब्द कुछ और हो, परंतु मेरे दिमाग में बग्घी है। रोवर हिंदी के पाठक के लिए इतना प्रचलित नहीं है। जो अंग्रेजी जानने वाला हिंदी का पाठक है उसके लिए सामान्य हो सकता है, परंतु बहुसंख्या ऐसी भी संख्या के लोग हैं हिंदी के पाठक जो अंग्रेजी इतनी नहीं जानते, तो उनके लिए बग्घी शब्द जो है वो उनके मानस में जल्दी स्ट्राइक करता है। जिन विषयों पर मैं लिख रहा हूँ ये रॉकेट साइंस है, और इसका मतलब ये जटिल विषय है। जटिल विषय को आप जो है कितने सरल तरीके से उसका संप्रेषण आम जन तक कर पाते हैं, परंतु ओवरऑल हमारा प्रयास ही रहता है कि उसमें मेरे अंदर जो कवि और साहित्यकार है वो उसकी भी झलक मिले, और सरल भाषा का प्रयोग किया जाए। तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग ना करके देशज और उर्दू निष्ठ शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाए, ताकि भाषा में फ्लो भी रहे और बोलचाल की भाषा के निकट, जन भाषा के निकट वो आ सके।
7: महेश जी, पिछले दिनों चांद हमारे लिए बहुत महत्व हो गया, पिछले दिनों चंद्रयान भी गया था, चंद्रयान हमने भेजा था, और आपकी जो तीन किताबें प्रकाशित हुई है और और आपके मन में आगे भी लिखने की, आगे भी रचनाएं करने की कुछ आप सोच रहे होंगे, चल भी रहा होगा काम, तो तीनों किताबों में चांद शब्द कॉमन है या फिर मून शब्द कॉमन कहना चाहिए, तो ये चांद के प्रति आपका लगाव?
8: चांद के प्रति मेरा ही लगाव नहीं है, पूरी मानव प्रजाति का है। उसका कारण एक ही है कि एक तो ये सबसे निकट पृथ्वी के खगोलीय पिंड है, हमारी पृथ्वी का उपग्रह, और दूसरे जो है कुछ संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि वहां पर कुछ

0: विशेष प्रकार के खनिज पदार्थों की बहुतायत है और भविष्य में संभावना बनती है कि वहां हम खनिज पदार्थों का दोहन कर पाएंगे। दूसरे क्या है कि आपने देखा होगा कि 6.5 करोड़ साल पहले उल्क शायद यही मानता है कि उल्का गिरने से डायनासोर नष्ट हो गए, और अगर भविष्य में ऐसा उल्कापात हुआ पृथ्वी पर और यहाँ पर जो रहने वाली मानव प्रजाति है वो नष्ट हो गई और अगर हमने उससे पहले वहाँ बस्तियां बसा ली तो हमारा को कुछ पार्ट जो है वो हो सकता है उससे सुरक्षित रह पाए। चांद का नाता हमेशा से रोमांस से रहा है और चांद जो है प्रेमी प्रेमिकाओं और आदि मानव के जीवन में, आज हम इस चीज को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि आज जबकि कृत्रिम रोशनी का युग है आदि मानव के जीवन में चांद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, एक प्राकृतिक रोशनी का काम करता। दिन में तो सूरज की रोशनी रहती है, अब रात को जो है ना जब चंद्रमा की कलाएं ज्यादा होती है तो उसके काफी खतरों से उसको बचाता था
1: जी। जब कभी किसी की तारीफ करनी हो तो चांद की बात होती है,
0: चांद की बात होती है
1: ना, जब किसी को मतलब कुछ कम दिखाना हो तो चांद पे दाग लगा हुआ है, इस प्रकार की बातें होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चांद जो है ना मतलब आदिकाल से लेकर मेरी पुस्तक में मैंने कालिदास जी को भी कोट किया है।
1: अच्छा, कालिदास को भी कोट किया,
0: कालिदास को भी कोट किया।
1: इस प्रकार से रिलेट कर पाते हैं कि साइंस और कहां कालिदास जी और कहां
0: गीता को भी उद्धृत किया गया है, गीता के भी संस्कृत के श्लोक है। पहली मेरी पुस्तक आई थी तो उसका जब समीक्षा की गई तो नवभारत टाइम्स ने लिखा था कि विज्ञान में हिंदी की तरह लिखी गई पहली पुस्तक है। मतलब आमतौर पर क्या होता है कि अनुदित पुस्तकें होती है या नहीं भी होती है तो उस पर अनुवाद की छाया होती है, आपको पढ़ने से लगेगा भाई ये अनुवाद किया गया। अब हिंदी के मुहावरे में अगर लिखा जाए तो फिर आपको अटपटा नहीं लगेगा।
1: चलिए, ये तो किताबों की बातें हुई और आपने इस प्रकार से सबको एक रोचक ढंग से आपने प्रस्तुत किया है, किताबों में लिखने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आपकी जो किताबें हैं पसंद जरूर आएंगी। वैसे देखा जाए तो जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है किताबों में साहित्य को लेकर के और या फिर जो तार्किक होता है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके दृष्टिकोण का इस प्रकार का विकास के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, ऐसा है जहां तक मेरी जानकारी है भारत के संविधान में भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये लिखा गया है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। और भारत की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और दूर दराज इलाकों में रहती है, यहां की आपका रेडियो प्रबल है और उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और रेडियो के साथ साथ फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर उन लोगों में विकसित करना है तो हमें जो है उनकी भाषा में यानी हिंदी भाषा में आम बोलचाल की भाषा में विज्ञान पर लिखना होगा। बहुत लोगों ने लिखा है, भीष्म पितामह जी विज्ञान लेखन के, मुनाकर मोले जी रहे हैं, बहुत लिखा है, आजकल भी लिख रहे हैं लोग, देवेंद्र मेवाड़ी जी लिख रहे हैं, परंतु इतना ज्यादा प्रोत्साहन शायद साहित्य के मुकाबले में विज्ञान को नहीं है अभी।
1: यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो हम बातचीत करते हैं विज्ञान को, अगर हम बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बातचीत करें या लोगों को बताएं तो थोड़ी सी रोचकता कम हो सकती है, लेकिन अगर उसमें कुछ साहित्य की कुछ और विधाओं को यानी कि कुछ हास्य टाइप की, कुछ जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनकी बातों को लेकर के उनको अगर कोट कर दें, उनको अगर रिलेट कर दें तो वो ज्यादा रोचक बन जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप?
0: सही बात है ये, क्योंकि नवीनतम पुस्तक में मैंने हरिवंश राय बच्चन जी को कोट किया है, इस पार प्रिय तुम हो इस पार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय तुम हो मधु है
1: जी,
0: उस पार न जाने क्या होगा
1: जी,
0: और चांद आता है उदास है, ये कविता है
1: जी जी,
0: और द्वितीय पुस्तक में मुक्तिबोध जी की कविता है और उसके बारे में कहते हैं हमारे कंधों पर चंद्रमा मंगल पर जाने वाले ये लोग, तो उन्होंने कटाक्ष किया है
1: जी जी जी।
0: तो मेरे को जहाँ से जो मौका मिलता है मैं ऐसा करता हूँ, हास्य का पुट भी देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, बोझिल विषय को अगर आप रुचिकर बना पाएंगे तो वो आपकी उपलब्धि है, अदरवाइज विज्ञान में शाब्दिक अनुवाद कर देना वो कोई विशेष उपलब्धि नहीं।
1: वैसे देखा जाता है कि विज्ञान के जो जटिल सिद्धांत है उनको अगर सरल भाषा में समझा करके सामान्य जनता तक पहुंचाई जाए तो उसमें और ज्यादा रोचकता बनी रहती है और उसकी जो एक उद्देश्य है उसमें हम सफल होते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: ठीक बात है, इसके लिए जरूरी नहीं कि जो लेखक जो है वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक अगर अपनी बात कहेगा तो वो साइंस टर्मिनोलॉजी में कहेगा और उसका अच्छा संप्रेषणीयता होनी उसके पास जरूरी है, वो संवाद स्थापित कर सके और कम्युनिकेटर अच्छा होना जरूरी है उसके लिए
1: जी। तो जो नई सोच और रचनात्मकता जो होती है इसमें किस प्रकार सामने आती है, जैसे विज्ञान कथा है, विज्ञान की जो कोई कहानी है, साइंस फिक्शन की कहानी है, उनको आप किस प्रकार से इसमें शामिल करने के लिए देखते हैं?
0: विज्ञान कथा जो है ना तो उसका सम्मिश्रण है कल्पना और स्वप्न और फैंटेसी, और मेरी पर्टिकुलरली विशेषता ये जो नवीनतम पुस्तक है ये इस तीनों चीजों को मिलाकर इसको मैजिकल रियलिज्म यानी जादुई यथार्थ की परिधि तक लाकर खड़ी करती है। हमने इसमें बात की 2055 के आसपास चंद्र पर्यटन सामान्य बात हो जाएगी और आम नागरिक भी सामान्य रूप से चंद्रमा का भ्रमण कर पाएंगे और उनमें से कुछ लोग नवविवाहित जोड़े वहाँ हनीमून मनाने की भी सोच पाएंगे।
1: अच्छा, हिंदी साहित्य में जो विज्ञान कथा की जो परंपरा है उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए क्या विज्ञान कथा को साइंस फिक्शन के रूप में भी प्रस्तुत करना ये लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर उपाय मानते हैं?
0: मानता हूं, क्योंकि साइंस फिक्शन हो या विज्ञान कथा हो उसका वो आधार जो है ना विज्ञान ही हो, और विज्ञान को आधार लेकर उसमें कल्पना की जाती है, प्रोजेक्शन किया जाता है।

0: भविष्य का।
1: विज्ञान कथा में जो ना ये हमें छूट रहती है कि हम उसको कल्पना भी उसमें शामिल करें, पर कल्पना ऐसी शामिल करें जिसका तार्किक आधार हो और प्रोजेक्शन जो है वो रियलिस्टिक हो, उसका भविष्य का जो आकलन है वो पाठकों को जचे। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो विज्ञान कथा से हटकर जो बातें हैं उसके अंदर आपको तथ्य ही देने पड़ेंगे। विज्ञान कथा में आप ये छूट ले सकते हैं। आर्थर सी क्लार्क साहब ने बहुत विज्ञान कथाएं लिखी, सबसे प्रसिद्ध वही हुए हैं। विज्ञान कथा तो फिर आपका फिक्शन है, साइंस फिक्शन है,
2: साइंस फिक्शन है,
1: और जो तथ्य जैसा है वह तथ्य आपको वैसा ही देना पड़ेगा।
2: महेश जी, आप कई जगहों पर, कई स्थानों पर भ्रमण कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, वहाँ की परिस्थितियों को देख चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपने अंडमान निकोबार में भी अपनी सेवाएं दी हैं, तो वहाँ की जो जैव विविधता है उसको आप किस प्रकार देखते हैं? वहाँ की जो जैव विविधता कह सकते हैं कि एक बेहतरीन उदाहरण है पूरे देश के लिए।
1: देखिए, ऐसा है कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता उन स्थानों पर ज्यादा पाई जाती है जो अलग थलग हो, जिनके बीच में सीधा संपर्क ना हो, भूमि मार्ग से संपर्क ना हो, और जैसे मेडागास्कर आइलैंड है या और स्थान है, मॉरिशस है। तो अंडमान का जहां तक सवाल है, 39 स्पीसीज ऐसा है बर्ड्स का, प्रजातियां ऐसी है जो एंडेमिक है, यानी केवल अंडमान में पाई जाती, और उसके अलावा फ्लोरा में क्या है कि बहुत से पेड़ों की प्रजाति, पौधों की प्रजाति, वहां पे एक लकड़ी, एक किस्म की लकड़ी का पेड़ होता है पैडोक। पैडोक लकड़ी जो है आपके शीशम और सागवान से मजबूत है और उसका लाइफ जो है ना 100 साल से ऊपर है। तो पैडोक लकड़ी और जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इंडिया का, 21% अंडमान में पाया जाता है, 70% सुंदरबन में है, बाकी 9% और जगह पे।
2: तो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में मैंग्रोव का जिक्र किया था, तो मैंग्रोव के पौधे लगाए जाए, मैंग्रोव के जंगल हो यहाँ पर, तो जिससे कि जैव विविधता बनी रहेगी, जल संरक्षण होगा।
1: इसके अलावा आपदा के समय में वो एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं
2: जी, ये बहुत बड़ा।
1: हाँ जी, हाँ जी जी, जब सुनामी आएगी या तूफान आता है तो उनकी जड़ें बाहर होती है और वो एक तरह के बैरियर का काम करते हैं, हमें बचाते हैं। और कोरल जो है, कोरल रिच है अंडमान, लक्षद्वीप भी कोरल रिच है, परंतु ज्यादा दोहन से, ज्यादा टूरिस्ट आने से तो उसका धीरे धीरे थोड़ा उस पर प्रभाव आता है, परंतु वो नेचुरली ग्रो करते हैं। एक और मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ कि अंडमान में कई जगह ऐसी है जहाँ ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से कछुए आकर अंडे देते हैं।
2: अच्छा।
1: और वो एक विशेष प्रकार की प्रजाति ओलिवर रिडले, तो वो एक सीजन में जनवरी के आसपास आकर वहाँ पे अंडे देते और चले जाते हैं।
2: अच्छा,
1: और
2: अच्छा।
1: वहाँ का वन विभाग उन अंडों को संरक्षित करता है, फिर हैचिंग होता है, उसके बाद जब बच्चे निकलते हैं उनको सुरक्षित जो है ना, वो नेचुरली अपने आप पानी में चले जाते हैं।
2: अच्छा, तो नेचुरली फिर वो फिर वापस चले जाते हैं।
1: वापस चले जाते हैं क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट तो पानी है।
2: जी जी,
1: उनको किसी को बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप चले जाते।
2: तो जैसे कि अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप जो कि टापू है, वहाँ पर लोगों की पहुँच कम है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो संरक्षित है,
1: कह सकते हैं, परंतु संरक्षित होने का यही एक कारण नहीं है कि लोगों की पहुँच कम है। लोगों की पहुँच होने से भी हम ऐसे दिशा निर्धारित कर सकते हैं जिससे उनकी जो नेचुरल स्टेट है उसको खतरा ना हो। जैसे हमारा सीआरजेड रेगुलेशन है, सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसके अंदर यह है कि जो हाई टाइड का पॉइंट है उससे 500 मीटर के अंदर आप कोई पक्का कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो इससे भी बचाव होता है। सवाल कानूनों का नहीं है, उनके लागू करने का, इम्प्लीमेंटेशन का। तो अंडमान में एटलीस्ट इनको सख्ती से लागू किया जाता है।
2: तो वहाँ पर जो ऊंगी और ये जो जरवा जनजाति है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके प्रकृति की ये तो खास बिल्कुल करीब रहते हैं और इनको प्रकृति के बारे में बहुत बखूबी मालूम भी रहता है, तो क्या उन्हें भी हम एक प्रकार से संरक्षित करने या फिर उनके द्वारा जो जैव विविधता है वो संरक्षित होती है कह सकते हैं?
1: बिल्कुल होती है, और उसके लिए अंडमान प्रशासन और वहाँ का जनजाति विभाग जो है पूरे प्रयास करता है। जो आपका जारवा जनजाति है या ओंगी है, उनको मतलब हैंड्स ऑफ, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए परंतु उनको सपोर्ट भी किया जाए। हाल ही में आपने सुना होगा कि एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, तो वहाँ के लोग तो आदिवासी जो है
2: हटबे में चले गए थे, जो
1: नहीं, वो पोर्ट ब्लेयर से 40 किलोमीटर के करीब है।
2: अच्छा।
1: और वहाँ वो किसी को नहीं आने देते, वो कोई आता है तो फिर वो जब तक पानी में रहता है तो कोई बात नहीं, जैसे वो जमीन पे कदम रखेगा तो वो उसको हत्या कर देते हैं, उनको खतरा लगता है। और एक अमेरिकी नागरिक जो था वहाँ पर गए थे बाइबल लेकर, तो बाद में कुछ दिनों बाद उनकी लाश मिली थी।
2: तो अगर वहाँ से प्रेरणा लेकर के अगर हम वहाँ की तरह, तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आजकल पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है शहरों में खासकर, और गांवों में आजकल पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, वहाँ पर भी अब जो मौसम है वो बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन सबके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, प्रकृति ने हमें कई वरदान दिए और मनुष्य प्रजाति अगर उनका सम्यक रूप से प्रयोग करेगी, दोहन करेगी तो ठीक रहेगा। अगर ज्यादा एमिशन रहेगा, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी, तो उसमें अल्टीमेटली पृथ्वी का तापमान जो बढ़ता रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, जिससे अजीब किस्म की मौसमीय परिस्थितियां नजर आती है। आजकल आप देख ही रहे हैं, जो स्थापित जो मौसम होता है उसमें जो प्रकृति की क्रियाएं, उनके बारिश में में बारिश होनी चाहिए। कई बार बारिश के सीजन के अलावा इतने बारिश और तूफान आते हैं, तो वो इसी का परिणाम है। अंडमान इतने लोग

0: नहीं जाते हैं। अंडमान इसलिए नहीं जाते हैं कि वहां का जो वायुयान का किराया है वो बहुत अधिक है, और इससे कम खर्च में तो
1: इंजॉय दहलीज दुरुदो सलाम बार शिरनंदगा ने असीस बरनामा सुबह के मात दार साते नौ वासी दगेगा ये हिन बराबर बा साते अफसोदी दगेगा ये तेहरान इला साते याद हिन बराबर बा साते नौ तेहरान पक्ष में शबद इनक बख्श फारसी बरून मर्दी आकाशवाणी बरनामा सुबह ये खुदरा दर मौजे कूता दर दीफा ये 5180 किलो हर्ट्ज पक्ष में कुदत बरनामे की सुबह इमरूज माह इबारत आज या कहांगे हिंदी अखबार हिंदो जहां तरान फारसी तफसीर रूज गुफ्तार इमरूज बरनामे ये स्पॉटलाइट यक तरान फिल्मी तरान आइए यक फिल्म हिंदी अखबार जहां वो दर आखिर खुलासा ये अखबार इंजॉय दहली नजीर बरनामे सुबह गाहिरा बाया कहांगे हिंदी शुरू में कुनी

وبشر المؤمنين.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16 रूपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव

नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Grounded. हर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला
1: और मैं हूँ प्रतिभा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल यानी मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 KHz पर। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, जहाँ मन भय से

0: मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, यानी एक ऐसी दुनिया जहां आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सकारात्मकता हर दिल में बसती हो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कही। और दोस्तों, यही तो है हमारे इस कार्यक्रम की पहचान, एक ऐसा मंच जहां परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ खास है, जहां हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, पर्यावरण की, सेहत की, जीवन शैली और खुशियों को देंगे एक नया नजरिया। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए घर आंगन, क्योंकि यहाँ हर दिन है प्रेरणादायक और खूबसूरत।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म दो गलियां से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात।

0: प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। जी हाँ, वो आवाज जिसने पिछले 90 वर्षों से भारत की संस्कृति, परंपराओं और भावनाओं को हर घर तक पहुंचाया। 1936 में शुरू हुई आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें नहीं सुनाई बल्कि भारत की आत्मा को आवाज दी। चाहे शास्त्रीय संगीत हो, लोकगीत हो, कवि सम्मेलन हो या नाटक, आकाशवाणी ने हर कला को सम्मान और मंच दिया। भारत के अलग अलग राज्यों की लोक कलाएं,
2: राजस्थान का मांड, पंजाब का भांगड़ा, बंगाल के बाउल गीत, उत्तराखंड की झोड़ा चांचरी, इन सबको देश भर में पहचान दिलाने का काम आकाशवाणी ने किया। और साहित्य, कितने ही कवियों, लेखकों और शायरों की रचनाएं पहली बार लोगों तक आकाशवाणी के जरिए ही पहुंची। हर भाषा, हर बोली को यहाँ अपनापन मिला।
1: बिल्कुल सही। और एक समय ऐसा था जब पूरा परिवार रेडियो के आसपास बैठकर हवा महल, विविध भारती और संगीत कार्यक्रम सुना करता था। आकाशवाणी ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि भारतीय संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। आज डिजिटल दौर में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता और सांस्कृतिक पहचान के साथ लोगों के दिलों में बसी हुई है।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष यानी 90 वर्षों की आवाज, विरासत और भारतीय संस्कृति का गौरवशाली सफर। आइए हम सब मिलकर आकाशवाणी के इस अद्भुत सफर को सलाम करें।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: और दोस्तों, अक्सर जिन चीजों को बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, कभी कभी वही चीज किसी और के सपनों की नींव बन जाती है। आज की कहानी है एक ऐसी महिला की जिन्होंने नारियल के फेंके हुए छिलके, जो शेल होते हैं, कोकोनट शेल, उसमें भी संभावनाओं का भविष्य देखा। ये कहानी है मारिया कोरियाकोस की। केरल में रहने वाली मारिया रोज देखती थी कि हजारों नारियल के छिलके और शेल इस्तेमाल के बाद कूड़े में फेंक दिए जाते हैं, और ये छिलके सड़कों, नालों और लैंडफिल में जमा होकर प्रदूषण को बढ़ाते थे और हानिकारक कचरे का हिस्सा बनते जा रहे थे।
3: बिल्कुल। और देखो, लेकिन जहां लोग समस्या देख रहे थे, वहीं मारिया ने एक अवसर देखा। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन बेकार समझे जाने वाले नारियल के शेल में से कुछ सुंदर और उपयोगी चीजें बनाई जाए। बस यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा सफर। मारिया ने नारियल के शेल से कप, कटोरी, सजावटी सामान और कई पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाने शुरू किए, लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि केवल इको फ्रेंडली होना ही काफी नहीं है।
2: बिल्कुल सही कहा, लोगों को कुछ नया, आकर्षक और अलग चाहिए। तभी मारिया ने अपने सोच में रचनात्मकता जोड़ी। उन्होंने नारियल के उत्पादों को खास टैंड रंग से और आधुनिक डिजाइन देना शुरू किया। साधारण जो शेल होते थे, अब स्टाइलिश और आकर्षक उत्पाद में बदलने लगे। उनकी मेहनत, समझदारी और शानदार जो मार्केटिंग व्यू है, उसने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया।
3: बिल्कुल। और देखो मंजुला, इसके बाद फिर जन्म हुआ थेंगा नाम के उस ब्रांड का, जो आज पर्यावरण संरक्षण और नवाचार का प्रतीक बन चुका है। और देखो, ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि थेंगा का मतलब होता है नारियल।
2: क्या बात है।
3: आज थेंगा के उत्पाद देश विदेश में पसंद किए जा रहे हैं। मारिया ने न सिर्फ अपना एक सफल व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि हजारों नारियल के शेल को लैंडफिल में जाने से भी बचाया।
2: और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर सोच सकारात्मक हो, इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो कचरा भी किसी की कामयाबी की पहचान बन सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई चीज बेकार लगे, तो एक बार ये जरूर सोचिएगा कि शायद उसी में से किसी नए भविष्य की शुरुआत छिपी हो।

0: अपना देश। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: और दोस्तों, आज के दौर में करियर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक तक सीमित नहीं है। अब लोग ऐसे पेशे चुन रहे हैं जहां रचनात्मकता भी हो, आकर्षण भी हो और अच्छी कमाई भी हो। ऐसा ही एक अनोखा करियर है इमेज कंसल्टेंट की और पर्सनल स्टाइलिश। आप सोच रहे होंगे आखिर ये काम होता क्या है, तो चलो प्रतिभा बता दो फटाफट।
0: देखो मंजुला, इमेज कंसल्टेंट किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करता है कि कैसे कपड़े पहने, किस तरह बात करें, हाव भाव आपका कैसा हो, साक्षात्कार या बैठक में खुद को कैसे प्रस्तुत करें यानी कैसे प्रेजेंट करें, इन सब बातों का वही जो इमेज कंसल्टेंट होता है वो हमारा मार्गदर्शन करता है।
1: बहुत सही। और वही पर्सनल स्टाइलिस्ट का काम होता है किसी व्यक्ति के लिए सही पहनावा और रूप रंग चुनना। कौन सा रंग अच्छा लगेगा, किस अवसर पर क्या पहनना चाहिए, कौन सा रूप आपकी पहचान को और निखारेगा, ये वही सब तय करते हैं।
0: आजकल केवल फिल्मी कलाकार ही नहीं, कार्यालयों में काम करने वाले लोग, सामाजिक माध्यमों पर सक्रिय लोग, व्यापार करने वाले और यहाँ तक कि कॉलेज के विद्यार्थी भी इनकी सहायता लेने लगे हैं। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पहनावे की समझ, अच्छी बातचीत की कला और लोगों को समझने की क्षमता बहुत जरूरी होती है। कई फैशन और व्यक्तित्व प्रबंधन संस्थान इसके विशेष पाठ्यक्रम भी कराते हैं।
1: बिल्कुल। तो अगर आपको फैशन पसंद है, लोगों के व्यक्तित्व को निखारना अच्छा लगता है, तो ये करियर आपके लिए शानदार विकल्प बन सकता है। करियर वही चुनिए जिसमें आपका हुनर भी चमके और मन भी खुश रहे।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी स्वीकार किया मैंने।
1: और मंजिला देखो, अब बात करते हैं उस संग्रहालय की जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति से जुड़ा है। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक अनूठा तकनीक आधारित और इंटरेक्टिव संग्रहालय है जो 3 मूर्ति परिसर में स्थित है।
0: और यह संग्रहालय 75 वर्षों के भारत के लोकतांत्रिक

0: फर को 7 घंटे के इमर्सिव कंटेंट में के माध्यम से दिखाता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय की मुख्य विशेषताएं की बात की जाए तो यहाँ होलोग्राफिक डिस्प्ले है, ऑटोमेटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और 360 डिग्री इमर्सिव थिएटर का उपयोग किया गया है।
1: बिल्कुल, और देखो यहाँ एक इंटरैक्टिव जोन भी बनाया गया है, सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर, यानी अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल सेल्फी, और वॉक विद प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ टहलने का वर्चुअल अनुभव भी आप यहाँ ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम से वर्चुअल पत्र, वर्चुअल हेलीकॉप्टर राइड का प्रावधान भी है, जिसके जरिए आप देश के विकास को ऊपर से देखने का अनुभव पा सकते हैं। त्रिमूर्ति भवन में स्थित है।
1: बिल्कुल, और देखो यहाँ एक अनुभव केंद्र भी है जहाँ आप 1971 के युद्ध, हरित क्रांति या पोखरण परमाणु परीक्षणों के इमर्सिव तरीके से को आप फिर से जी सकते हैं, देख सकते और हेड राइटिंग रोबोट के माध्यम से आप प्रेरणादायक उदाहरण घर ले जा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही। और आगंतुक अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करा सकते हैं और 2047 के भारत के लिए अपने संदेश भी छोड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग ना। और यहाँ आगंतुकों के लिए विशेष सुविधाएं हैं, संग्रहालय में गाइड्स, ऑडियो गाइड्स, कैफेटेरिया और एक स्मारिका यानी सुविनियर जो हम लेते हैं जहां भी जाते हैं, उसकी दुकान भी उपलब्ध है।
1: और देखो हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री संग्रहालय सोमवार और राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह के हर दिन खुला रहता है। यहाँ का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, हालांकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होता है।
0: और टिकट ऑफिशियल वेबसाइट या बुक माई शो के माध्यम से ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट्स हैं वो रियायती दरों पर भी उपलब्ध हैं।
1: तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित इस संग्रहालय में लेजर शो का भी आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन शाम 7:30 से 8 बजे तक किया जाता है। और सबसे जरूरी बात ये कि आईडी प्रूफ ले जाना यहाँ पर जरूरी है।
0: तो इस संग्रहालय को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से एक दिन निकालिए और संग्रहालय को दीजिए एक अनूठा अनुभव प्राप्त कीजिए।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म एक राज से।
1: श्रोताओं, हालांकि हर दिन हम मौसम में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, जहां चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं कभी कभी तेज बारिश राहत की मरहम भी लगा रही है।
0: पर ये जो समय है गर्मी का है, मौसम हमारा इम्तिहान ले रहा है। गर्मी और बढ़ेगी, पारा और चढ़ेगा। ऐसे में अपना और अपनों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक, डायरिया, चक्कर आना जैसी समस्याएं होने लगती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा मंजुला, तो क्यों ना आज बात करें इस बढ़ते पारे के साथ खुद को स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रखा जाए। शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी की कमी को बिल्कुल ना होने दें, भरपूर पानी पिए। प्यास ना लगने पर भी दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीते रहिए।
0: बिल्कुल, और इलेक्ट्रोलाइट लें, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी या ORS का सेवन करें, जो शरीर में नमक की कमी को पूरा करते हैं। कैफीन और बहुत मीठे पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल, और देखो धूप और गर्मी के से जो बचाव है वो भी बेहद जरूरी है। दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इस समय धूप सबसे तेज होती है। और बाहर निकलते समय हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, सिर ढके। धूप से बचाव के लिए टोपी, छाता या स्कार्फ का इस्तेमाल जरूर करें।
0: आंखों की सुरक्षा के लिए सनग्लासेस लगाएं और खान पान में बदलाव भी लाएं। भोजन करें तले भुने, मसालेदार और भारी भोजन से बचें।
1: और पानी से भरपूर फलों का सेवन करें, वो ज्यादा फायदेमंद है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा, अंगूर जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। और जैसे तुमने अभी बताया कि ताजा पका हुआ खाना ही खाना है।
0: बहुत सही। और अगर बहुत तेज प्यास लगे, चक्कर आए, सर दर्द, उल्टी महसूस हो या पसीना आना बंद हो जाए, तो ये लू के लक्षण हो सकते हैं। प्राथमिक उपचार के तौर पर तुरंत किसी ठंडी या छायादार जगह पर जाएं, शरीर को गीले कपड़े से पोंछे, ठंडे पानी से नहाएं और पंखे के नीचे बैठें।
1: लक्षण गंभीर होने पर डॉक्टर से संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें, और छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बस छोटी छोटी सावधानियां हमें इस गर्मी के मौसम में बीमार होने से बचा सकती हैं और स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं।

0: गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाज में अभी है आपने ये गीत सुना फिल्म यहूदी से। और मंजुला देखो बात करते हैं एक ऐसे दर्शन की जो अपूर्णता अनित्यता और सादगी में सुंदरता खोजता है। ये जीवन की खामियों को स्वीकार करने, पुरानी वस्तुओं के प्रति सम्मान और प्राकृतिक चीजों की सादगी में शांति पाने का एक बेहतरीन तरीका है।
1: बिल्कुल मैं समझ गई। जापान में विकसित इस पारंपरिक कला किन्सुगी में टूटे हुए बर्तनों को फेंका नहीं जाता है, बल्कि उन्हें सावधानी से जोड़ा जाता है और जो दरार होते हैं उसको सोने चांदी या कभी कभी प्लेटिनम से भर दिया जाता है।
0: और देखो खास बात यह है कि यहाँ टूट फूट को छिपाने की कोशिश नहीं की जाती बल्कि उसे उभारा जाता है। किन्सुगी का शाब्दिक अर्थ है गोल्डन ज्वाइनरी, यानी सोने से जोड़ना, लेकिन इसका असली अर्थ ये बताता है कि टूटना किसी चीज का अंत नहीं है बल्कि एक नए रूप की शुरुआत है।
1: बहुत अच्छी बात कही। और इस कला में जीवन का वास्तविक दर्शन है जो अपूर्णता, अस्थाई और सादगी में सुंदरता खोजता है। यह कला उसी सोच को वास्तविक रूप देती है। जब कोई बर्तन टूट के फिर से जुड़ता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता बल्कि वह पहले से भी खास, सुंदर और अर्थपूर्ण बन जाता है।
0: और देखो ये विचार जो है ना वो जीवन पर भी लागू होता है। हम सभी अपने जीवन में अनुभवों से कहीं ना कहीं टूटते हैं, जैसे कि असफलता, दर्द, रिश्तों का टूटना या बदलाव। लेकिन किन्सुगी हमें ये याद दिलाता है कि ये संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाते बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर हम चाहें तो इन्हीं अनुभवों को सोने में बदल सकते हैं, यानी सीख, समझ और मजबूती से।
1: तो किन्सुगी हमें सिखाता है कि परफेक्शन जरूरी नहीं है, असली खूबसूरती उन निशानों में है जो हमें समय और अनुभव देती है। और शायद हम सभी अपने अपने तरीके से एक चलती फिरती किन्सुगी कला है जो हर संघर्ष के बाद और अधिक अर्थपूर्ण और मजबूत बन जाते हैं। तो एक बार मेल आईडी भी बता दो प्रतिभा की, कौन से मेल आईडी से हमें जो सुन रहे हैं श्रोता वो हमें ईमेल भेज सकते हैं।
0: देखो मंजुला हमारा कार्यक्रम जैसा कि सब सभी जानते हैं कि घर आंगन कार्यक्रम है और हमें हमारे श्रोता हर रोज अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो हम आज भी अपने श्रोताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें मेल करना ना भूल गए, और जिसके लिए हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

0: असली नकली, ये था इस फिल्म का नाम जिसका आपने की सुना, आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
1: बिल्कुल, और प्रतिभा अब हम सबको ले चल रहे हैं अपने दोस्तों को एक ऐसी दुनिया में जहां प्रकृति, परंपरा और नारी शक्ति मिलकर रचती है एक अनोखी कहानी। ये कहानी है मणिपुर की, जहां बनते हैं अद्भुत लोटस सिल्क। सोचिए, एक फूल जो कीचड़ में खिलता है, वही कमल अब बन रहा है एक शानदार, दुर्लभ और बेहद खूबसूरत रेशम यानी सिल्क। मणिपुर की झीलों में उगने वाले कमल के तनों से निकाला जाता है ये खास धागा। हर एक तने को हाथों से तोड़ना, उसके भीतर से एक बेहद महीन रेशे को निकालना और फिर उसे धागे में बदलना,
0: ये कोई मशीन नहीं बल्कि महिलाओं के धैर्य और हुनर की कहानी है। स्थानीय भाषा में इस कपड़े को कौनी फेई कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी असली चमक पहनने के बाद निखरती है। जैसे जैसे आप इसे ओढ़ते हैं, इसकी खूबसूरती और भी गहरा जाती है।
1: बिल्कुल, एक एक साड़ी को बनाने में हजारों लाखों कमल के फूलों का योगदान होता है और लगते हैं कई कई घंटे, कभी कभी कई दिनों की मेहनत, तब जाकर तैयार होता है एक मास्टरपीस जिसे सिर्फ पहना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। फॉर द वुमन, बाय द वुमन, लोटस सिल्क की ये पूरी यात्रा महिलाओं के हाथों से ही गुजरती है।
0: और श्रोताओं देखिए, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी आत्मनिर्भरता है और उनके सपनों की बुनाई है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि इस सिल्क को बनाने में ना किसी कीड़े को नुकसान होता है और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल। ये है प्रकृति के साथ संतुलन की सच्ची मिसाल। भारत की धरती पर ऐसे अनगिनत खजाने छुपे हैं जहां हर धागा, हर रंग, हर बुनाई एक कहानी कहते हैं। हमारी इंडियन टेक्सटाइल सिर्फ कपड़े नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान है।
1: क्या बात है, तो क्यों ना हम इन हैंडमेड उत्पादों को अपनाएं, इन्हें गर्व से पहनें और दुनिया को दिखाएं कि असली खूबसूरती मशीनों में नहीं, हाथों की मेहनत और दिल की कला में होती है। तो कमल से शुरू हुई ये कहानी जब किसी की जिंदगी का हिस्सा बनती है तो सिर्फ एक साड़ी नहीं, एक एहसास बन जाती है।

0: हम सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म साजन से।
1: तो दोस्तों वक्त हो चला है इजाजत लेने का। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपके दिल को सुकून और चेहरे पर मुस्कान दे गई होगी। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। दीजिए मंजुला और
0: प्रतिभा को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने यह बात कही।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

0: त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Excitement is building among the Indian diaspora in the Netherlands as Prime Minister Narendra Modi prepares to address the community this afternoon during his official visit. Thousands of Indian community members are expected to attend what organizers are calling a historic address. The event will be a highlight of the Prime Minister's trip to the country. Prime Minister Modi reached the Netherlands late last night to a warm reception. Members of the Indian community, representing different age groups, regions and faiths, gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
2: Modi, Modi, Modi, Modi, Modi, Modi, Modi, Modi, Modi, Modi, Modi.
1: The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora and India's global outreach. Indian Army Chief General Upin Dwivedi today said that Pakistan must stop harboring terrorists and operating against India. Speaking at Sena Samvad in New Delhi, Mr. Dwivedi said that if Pakistan continues these activities against India, then they will have to decide whether Pakistan wants to be a part of geography or history.
3: I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not.
1: In a significant move to strengthen the law and order framework in Tripura, the Ministry of Home Affairs has officially sanctioned the raising of an additional inter-reserve battalion. The centre has sanctioned a one-time financial grant of 50 crore for its establishment and up to 30 crore for infrastructure development. This new unit will primarily focus on counter-insurgency operations and border guarding, with the centre retaining the authority to deploy these personnel anywhere across the country as needed. Sikkim is observing its statehood day today, marking its transition from a monarchy to becoming the 22nd state of India in 1975.

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपके साथ सुनिधि। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बेटा बेटी की। बेटा बेटी उस दौर की फिल्मों में शामिल थी जिनमें परिवार और रिश्तों की अहमियत को बहुत खूबसूरती से देखा जाता था। फिल्म में सुनील दत्त ने एक ऐसे युवा का किरदार निभाया जो अपने परिवार और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करता है। उनका अभिनय हमेशा की तरह बेहद सहज और प्रभावशाली रहा। वहीं जमुना, उन्होंने अपनी मासूम अदाओं और भावुक अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म में जयंत और शुभा खोटे जैसे कलाकारों ने भी अपने शानदार अभिनय से कहानी को और रोचक बना दिया। तो ये फिल्म की हम बात करते रहेंगे, क्यों ना हम सुन लें एक और मधुर गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी की आवाज में आदमी वो है गीत फिल्म बेटा बेटी से, और इस फिल्म का संगीत दिया था बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, पुराने दौर के गीतों में एक अलग ही मिठास होती थी, धीमी धीमी धुनें, आसान शब्द और दिल को छू लेने वाली गायकी। बेटा बेटी का संगीत भी उसी दौर की खूबसूरत पहचान है। उस समय गीत केवल फिल्म का हिस्सा नहीं होते थे बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया भी बनते थे। रेडियो पर जब ये गीत आज भी बजते हैं तो लोग अपने सारे काम छोड़कर इन्हें सुन लिया करते हैं। तो आइए इसी बात पर क्यों ना सुन लिया जाए एक और प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। फिल्म की कहानी एक दुर्भाग्यशाली पिता यानी कि जिनका नाम रघु होता है, इनके इर्द गिर्द घूमती है, जो एक दुर्घटना में अपनी आंखें खो बैठते हैं। गरीबी और लाचारी में वह अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को अनाथालय में छोड़ने का फैसला करते हैं। इसके बाद बच्चे बिछड़ जाते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में बड़े होते हैं, लेकिन सालों बाद उनको नियति फिर से आपस में मिला देती है। तो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो इसके बारे में बात करते रहेंगे, फिल्म बेटा बेटी के बारे में बात हम करते रहेंगे आपसे। आप हमसे जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए इस फिल्म के मधुर संगीतों का।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और हम बात कर रहे हैं आज फिल्म 1964 में रिलीज हुई बेटा बेटी की। तो अगर हम इस फिल्म की सफलता की बात करें तो ये सिल्वर जुबली रही थी फिल्म। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही थी। इसने सिनेमाघरों में 25 हफ्ते पूरे करके सिल्वर जुबली का खिताब पाया ही था और इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि इसे 1970 के दशक में पुणे जैसे शहरों में मैटनी शो के रूप में दोबारा रिलीज किया गया, जहां इसने फिर से शानदार प्रदर्शन किया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म अपने आप में कितनी ज्यादा सफल रही और इसके कलाकारों का इसमें कितना योगदान रहा। तो इसी बात पर हम सुन लेते हैं इस फिल्म से एक और गीत।

ठहर गए, नैन वाले तेरे नैन जादू कर गए।

दोस्तों, इस फिल्म का निर्माण उस दौर में हुआ था जब पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों का स्वर्णिम समय माना जाता था। फिल्म ने संयुक्त परिवार, भाई बहन के रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों को बहुत संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया था। फिल्म के निर्देशक एलवी प्रसाद भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों भाषाओं में यादगार फिल्में बनाई। बेटा बेटी उन्हीं पारिवारिक फिल्मों की शैली का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में महमूद की कॉमेडी की अगर हम बात करें तो दर्शकों को इनकी कॉमेडी इतनी पसंद आई थी कि कई सिनेमा घरों में उनके दृश्यों पर खूब तालियां बजती थीं। उस समय महमूद किसी भी फिल्म की लोकप्रियता का बड़ा कारण माने जाते थे। अगर हम फिल्म की संगीत की बात करें तो शंकर जयकिशन का संगीत फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। फिल्म के गीतों में शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों की झलक भी सुनाई देती है, जिसका आनंद आप अभी इस कार्यक्रम में उठा रहे हैं। राधिके तूने बंसुरी चुराई गीत में कृष्ण राधा की छवि और पारंपरिक भारतीय संगीत का सुंदर मेल देखने को मिलता है, जिसने इसे लंबे समय तक लोकप्रिय बनाए रखा। और ये गीत आज भी कई लोगों की जुबान पर है और अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस गीत को शामिल भी किया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते रहेंगे इस फिल्म की, तब तक सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और गीत जो कि मोहम्मद रफी की ही आवाज में है।

तो श्रोताओं, ये था फिल्म बेटा बेटी के गीतों और यादों से सजा हमारा ये कार्यक्रम। एक ही फिल्म से यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पुराने दौर की संगीतमय यात्रा ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। मैं हूँ आपकी दोस्त सुनिधि, और इसी के साथ हमें अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: खास तवज्जो दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारतीय बिरादरी और नीदरलैंड की सरकर्दा कंपनियों के सीईओ से खिताब करेंगे। सेमी कंडक्टर चिप्स और एआई जैसे शोबों में कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है, जिसमें नीदरलैंड्स को आलमी रहनुमा की हैसियत हासिल है। तिजारती नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम शराकत दार और बरामदाती व सरमायाकारी के बड़े मरकजों में से एक है। दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, जरई टेक्नोलॉजीज और सेहत के शोबों में मजबूत शराकत दारी रही है। सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब अली फाले काजिम अल जैदी को इराक के वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ तवील अरसे से चले आ रहे अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और उसने तमाम शोबों में बाहमी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम और मजबूत करने का तहैया कर रखा है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि वह दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। भारत के इदारों ने पहली बार 182 करोड़ रुपए मालियत की कैप्टागन मनशियात को कब्जे में लिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने यह जानकारी दी और यह भी कहा कि सरकार ने भारत को मनशियात से पाक मुल्क बनाने का तहैया कर रखा है। जनाब अमित शाह ने कहा कि मगरबी एशिया जाने वाली मनशियात को कब्जे में लेने और इस सिलसिले में एक गैर मुल्की शख्स की गिरफ्तारी इस बात की दरख्शां मिसाल है कि हम मुल्क में मनशियात को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुल्क में एक ग्राम भी नशा आवर अशिया ना तो आने देगी और ना अपने इलाके से गुजरने देगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और मुल्क के कई दीगर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों के दौरान तेज बारिश और आंधी में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने मुतासर कुनबों को ताजियत पेश की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत खराब मौसम से मुतासर रियासतों को हर मुमकिन मदद दे रही है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 से जारी किए गए जात पात से मुतालिक तमाम सर्टिफिकेट की फिर से तस्दीक का हुक्म दिया है। हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता 14 बरस के दौरान जारी किए गए इन दस्तावेजात के जवाब और असलियत के बारे में सवालात उठाए जाते रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस अरसे के दौरान दर्ज फहरिस्त जातों, कबीलों और दीगर पसमानदा तबकों को जातों के बारे में लगभग 1,69,00,000 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनमें से बहुत से सर्टिफिकेट द्वारे सरकार कैंप की तवसुत से तकसीम किए गए। सब डिविजनल अफसर और जिला सतह के एहलकार हर सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। अगर ये साबित हुआ कि कोई भी सर्टिफिकेट गलत जानकारी या बेकायदगी से जारी किया गया है तो कानून के मुताबिक उसे मनसूख कर दिया जाएगा। हाल ही में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के दौरान जिन अफराद के नाम हजफ कर दिए गए हैं उन पर भी इस हिदायत का इतलाक होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के तलबा के इम्तहानात के नतज के ऐलान के बाद एक नोटिस जारी किया है, जिसमें इम्तहानात के अमल में मुनसिफाना तौर तरीकों और शफाफियत की तस्दीक होती है। नोटिस में कहा गया है कि जो तलबा अपने नतज से मुतमिन नहीं है वो दो मरहलों वाले नजरसानी निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा ऑनलाइन अपने स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फ़र्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाब की दोबारा जाँच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार लारी मजदूरों के एक ग्रुप में जा घुसी, जिसके सबब 6 खवातीन मजदूरों की मौत हो गई। काकीनाडा रूरल मंडल के कवूरू पुल के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब काम की जगह जाने के लिए मजदूर सड़क पार कर रहे थे। 4 खवातीन के जाए हादसे पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर ने काकीनाडा के अस्पतालों में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों को पनाह देना और भारत के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करनी होंगी। नई दिल्ली में सेना संवाद में खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरह की सरगर्मियां जारी रखता है तो उसे ये फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं।

0: वजारत दाखिला ने त्रिपुरा में नज्म व ज़ब्त के फ्रेमवर्क को मजबूत करने की तरफ से एक अहम कदम उठाते हुए एक इजाफी भारतीय रिजर्व बटालियन को सरकारी तौर पर मंजूरी दी है। मरकज ने इसके कायम के लिए 50 करोड़ और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए तक की माली इमदाद को मंजूरी दी है। भारत की सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल में मलेशिया के गो से फेई और नूरजीन को हराया। भारत की जोड़ी ने 82 मिनट में मलेशिया की जोड़ी को 19-21, 22-20 और 21-16 से हराया। 2019 और 2024 में कामयाबी के बाद भारत की इस जोड़ी का यह इस सीजन का पहला फाइनल और टूर्नामेंट का तीसरा फाइनल है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के अपने हमनसब रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए जात पात के सर्टिफिकेट की फिर से जाँच के अहकाम जारी किए हैं। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की दो सतह पर मुश्तमिल फिर से जांच का ऐलान किया है। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म कर दे। और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with his Dutch counterpart Rob Jetten and call on King William Alexander and Queen Maxima today. Several important agreements expected to be signed, including in the fields of semiconductor chips, AI and bilateral trade. Army Chief General Upendra Dwivedi warns Pakistan against harbouring terrorists and operating against India. West Bengal government orders re-verification of caste certificates issued since 2011. CBSE announces a two-stage re-evaluation process of answer sheets for class 12 students. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj and Chirag Shetty enter finals of Thailand Open after a thrilling victory over Malaysian pair in the semi-finals. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on Their Majesties King William Alexander and Queen Maxima this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Earlier, when the Prime Minister arrived in the Netherlands late last night, he was received by the Dutch Foreign Minister. He was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. Members of the Indian community representing different age groups, regions and faiths gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
2: Modi, Modi, Modi, Modi, Modi. Modi ji.
1: In a social media post, Mr. Modi said the welcome was remarkable as it included a dance performance covering Kathak, Odissi, Bharatanatyam, Kuchipudi and Mohiniyattam and also included a Garba performance. The Prime Minister is addressing the Indian community and will interact with leading business leaders from the Netherlands. The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora and India's global outreach. We now go live to The Hague in the Netherlands, where the Prime Minister is addressing the Indian community.
3: आज का दिन है, कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने

0: हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: If you heard me earlier,
4: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
8: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया।

0: पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। तो नमस्कार दोस्तों, मुस्कुराइए क्योंकि अगले एक घंटे तक आपका साथ देने आ रही हैं वो अदाकारा जिनकी एक मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा हो जाता है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम बात करेंगे आज एक ऐसी अदाकारा की जिनके डांस स्टेप्स आज भी हर शादी, हर स्टेज और हर दिल की धड़कन बने हुए हैं और जिनकी अदाकारी ने रोमांस, इमोशन और खूबसूरती को एक नया नाम दिया। जी हाँ, आज की ये शानदार शाम समर्पित है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के नाम। तो मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सुनिधि और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ का एक कार्यक्रम एक ही कलाकार। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी माधुरी दीक्षित जी के एक सबसे फेमस सॉन्ग के साथ।

तो दोस्तों, जब भी बात आती है हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत मुस्कान और मदहोश कर देने वाले डांस की, तो एक ही नाम दिलो दिमाग पर छा जाता है। जी हाँ, हमारी और आपकी प्यारी धक धक गर्ल का, माधुरी दीक्षित का। आज हम इस शो में उन्हीं की सुनहरी यादों और सदाबहार गानों का सफर तय करेंगे। क्या अदाएं, क्या एक्सप्रेशंस! जब भी माधुरी पर्दे पर आती हैं तो स्क्रीन पर जैसे रोशनी सी बिखर जाती है। तेजाब के उस आइकॉनिक गाने से लेकर हम आपके हैं कौन की नटखट निशा तक, उन्होंने हर किरदार में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। क्या आप जानते हैं कि फिल्म खलनायक का उनका गाना चोली के पीछे अपने समय में इतना लोकप्रिय हुआ था कि उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। तो बात हम करते रहेंगे माधुरी जी की, और साथ साथ सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माए हुए कुछ गाने।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जिसमें हम बात कर रहे हैं आज धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। सन 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित बचपन से ही बेहद प्रभावशाली थी। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ उन्हें नृत्य का भी विशेष शौक था। उन्होंने कम उम्र में ही कथक सीखना शुरू कर दिया था। माधुरी का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले आई। सन 1984 में फिल्म अबोध से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने जब कदम रखा तो ये शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी, लेकिन मेहनत, धैर्य और लगन ने उन्हें धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। फिर आया वो दौर जिसने माधुरी दीक्षित को स्टार से सुपरस्टार बना दिया। फिल्म तेजाब और उसका एक गीत 1 2 3 लोगों की जुबान पर छा गया, और उसके बाद एक के बाद एक सुपरहिट गीत और सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जिसमें हम बात कर रहे हैं आज हमारी प्यारी माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित केवल एक शानदार डांसर ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और प्रभावशाली अभिनेत्री भी हैं। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, रोमांटिक, भावुक, हास्य और गंभीर। फिल्म दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा

तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं हमारी कलाकारा माधुरी दीक्षित के बारे में। दोस्तों, माधुरी दीक्षित को उनके उत्कृष्ट अभिनय और नृत्य के लिए अनेक पुरस्कार मिले। उन्होंने कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार जो उन्हें मिला वो है दर्शकों का प्यार। आज भी जब माधुरी स्क्रीन पर आती हैं तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

माधुरी दीक्षित केवल एक अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक भावना है। उनकी कला, मेहनत और सादगी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। तब तक के लिए दीजिए आपकी दोस्त सुनिधि को इजाजत। नमस्कार।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो हमारे सब प्यारे श्रोता भैया बहनान को और आपको बहुत बहुत मंगल बधाई, झोरी भर भर के शुभकामना, अधिक मास की, लौंद के महीना की और पुरुषोत्तम मास की।
1: जी हाँ चंपा, आपको बहुत बहुत बधाई। ब्रजमादरी कार्यक्रम सुनने बारे सब श्रोतान को बधाई। जा मास को पुरुषोत्तम मास कहो गयो है, बाको आरंभ कल यानी 17 मई ते है जाएगो। और आपको बता दें कि 15 जून तक ये महीना चलेगो। या में पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के जो मनोरथ हैं, आयोजन हैं, उनकी छवि हो आपको देखने को मिलेगी।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, और बहुत बढ़िया बात, ये भी हम अपने श्रोता भैया बहनान को बतावें कि जो ये अधिक मास को पावन शुभारंभ कल ते शुरू हो रहे हो है, तो यह अधिक मास के महीना में पावन पुनीत अवसर पे ब्रज वसुंधरा में देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, जो भक्त गण हैं, वे आएंगे प्यारे भैया बहनाओं। और हम तो आपको भी नेह वरो न्यो तो दे रहे हैं कि आप जरूर आइयो।
1: जी हाँ चंपा, ब्रज की ताई तो यह पुरुषोत्तम मास को सच में बहुत महत्व है। और हमारे श्रोता आएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ परंपरा है। पर आपको एक बात बता मैं चंपा, कि ये पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक अंचल में यह पुरुषोत्तम मास मनाएवे की इतनी मंगलमय अलग अलग परंपरा है
0: हाँ
1: कि हम सब वाकू अपने अपने ढंग से मनामे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ना यही पुरुषोत्तम मास में नरसिंह अवतार धारण करो हो, और पुरुषोत्तम मास के महीना में ही विन ने भक्त प्रहलाद के प्राणन की रक्षा करी हती। तो अपने आप में देखो कितना पुनीत पावन महीना है ये।
1: तनिक देखो तो सही चंपा, क्योंकि प्रहलाद के पिता ने कही कि मैं ना तो 12 महीनान में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। तो कैसी विलक्षण वहां पे एक संरचना भई कि या अधिक मास में नरसिंह अवतार भयो।
0: हाँ, क्योंकि ना तो नर मोई मार सके, ना कोई पशु मोई मार सके, ना कोई जमीन पे ही होए, ना कहीं हवा में ही होए, बहुत सारी तरह तरह की मनोहारी लीला करनी पड़ी और नरसिंह रूप उन्हें धारण करो, और बाकी का जब भी पुरुषोत्तम मास को ही चुनो।
1: और चंपा यही सो कहो जाए है कि यहाँ प्रत्येक अवतार में कोई ना कोई जो वर्णन है वो अन्याय के विरुद्ध खड़े है, वे को संदर्भ है।
0: तो नृत्य गोपाल जी, देखो हम तो अपने प्यारे भैया बहनान ते कह रहे हैं कि प्यारे भैया बहनाओं, पूरे साल भर के जो उत्सव हैं,

0: है, दिवाली है, बसंत है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, रथ यात्रा है ना, शरद की पूनो है, ये जो साल भर के पर्व हैं, ये या पुरुषोत्तम मास में बड़े ही हर्षोल्लास के संग ब्रज के देवालय और मंदिरन में मनाए जाएंगे। तो प्यारे भैया बहनाओं, आप जरूर पधारियों।
1: जी हाँ चंपा, और ब्रज भाषा काव्य में तो या के ताहीं बड़ी सुंदर सुंदर छंद लिखे गए हैं, बड़ी सुंदर रचना करी गई है। नीको लागत पुरुषोत्तम मास, जाकी महिमा जगत बखानत, करत भक्त सब जाकी आस। आप ही सूरज, आप ही चंदा, आप ही को सब होत प्रकाश, आप ही भोग जोग सब अर्पत, आप ही प्रभु मम मन उल्लास। ज्यों ज्यों दान करत प्रभु हित, त्यों त्यों बढ़त प्रेम की आस, सूरदास प्रभु सबके स्वामी, दास को राखो चरण के पास।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो पुरुषोत्तम मास को परम पावन महीना कल ते लग ही रहे हो, तो या वक्त है ना जो ब्रज की लोक विधाएं

0: रास लीला हुई या नौटंकी हुई, भक्त चरित्र हुए, स्वांग हुए, उनके ना जगह जगह मंचन शुरू है जाएंगे। मंगल पुरुषोत्तम मास में इतने आयोजन भव्यता और दिव्यता के साथ होंगे कि लाखों श्रद्धालु और पर्यटकन की भीड़ अब महीना भर के काजे ब्रज में जो रहेगी। इतनी लोक विधा ब्रज की है, चाहे वो रासलीला है, स्वांग है, भगत है, नौटंकी है या रसिया दंगल है, सबके मंचन होंगे।
1: जी हाँ चंपा, अब कल से ही आरंभ है जाएंगे।
0: तो फिर कछु ऐसा ही सुनवावे की और अपने प्यारे भैया बहनान को ले चलें।
1: जी हाँ चंपा, ले चलो ना।
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये नौटंकी श्याम सगाई।

प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये नौटंकी सुन रहे हते श्याम सगाई। तो प्यारे भैया बहनाओं, हमें तो पूरी आशा है कि यह नौटंकी को सुन के आपको मन जरूर ब्रज माऊ आवे कु करेगो, क्योंकि पूरे महीना भर तक आपको ना ब्रज में जो भक्ति भाव ते परिपूर्ण रास लीला है, नौटंकी है, उनको ऐसे ही मंचन होएगो। और कहीं खुले पांडाल में भी आपको बड़ी

0: मिलेंगी, तो हम तो प्यारी भैया बहनाओं आप ते कह रहे हैं कि जैसे भी हो, अब तो आपके पास कोई बहानों भी ना है कि बच्चान की पढ़ाई लिखाई चल रही है कि पेपर परीक्षा चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टी शुरू हो ही गई है, तो आप अपने परिजनन के संग और इष्ट मित्रन के संग ब्रज धरा में या पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पे पधारो, आपको स्नेह भरो न्योतो है और प्रेम भरो आमंत्रण है।
1: जी हाँ श्रोताओ, भक्ति और लोक संस्कृति को अनूठो समागम आप यहाँ ब्रज में देख सके हैं। आप आवें और देखें। और चंपा, अब देखो तो सही, तने घड़ी की ओर हो देख लो कि अब आज के ब्रज माधुरी कार्यक्रम को समय अब यहीं संपन्न है गयो है।
0: हाँ प्यारे भैया बहनाओ, मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा हूँ।
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जाइवे की अनुमति प्रदान करें। नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, अब आइए सुनते हैं नाटक।
1: एक करोड़ की बोतल, आइए सुनते हैं ये नाटक। मूल कहानी कृष्ण चंदर, रेडियो नाट्य रूपांतरकार अक्षय वशिष्ठ, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
2: तो फिर तुम्हारी माँ क्या बोली? इंदु, मैंने पूछा तुम्हारी माँ ने क्या कहा?
3: वो मैं सुन नहीं सकी रंजीत, माँ मुझे देखकर बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी।
2: और ये ड्रेस, तुम तो ये पश्चिमी ड्रेस कभी पहनती नहीं हो।
3: वही लाया था।
2: पर तुमने क्यों पहन ली?
3: माँ ने जबरदस्ती पहनवा दी उसके सामने, वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर जब तक बैठा रहा ललचाई निगाहों से मुझे घूरता रहा।
2: ये बताओ तुम्हें मेरी निगाहें कैसी लगती हैं?
3: क्यों बताऊं?
2: फिर भी अच्छा खैर, इंदु तुम्हें ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। हालांकि बहुत जच रही है, हाँ अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी अगर
3: सच रंजीत, पहले तो मैंने भी सोचा कि इनकार कर दूं, फिर ध्यान आया कि आज शाम को तुम मिलोगे ना यहाँ पर, इसलिए तुम्हारी खातिर पहन ली। उस बुड्ढे ने तो यही सोचा कि मैं उसकी खातिर पहन रही हूँ। पता है वो बुड्ढा कह रहा था कि उसे ये पश्चिमी लिबास बहुत अच्छे लगते हैं। उसने अपने दफ्तर में काम करने वाली सभी लड़कियों को कह रखा है कि सब पश्चिमी ड्रेस पहनकर ही आया करें। फिर मेरी माँ से बोला कि इंदु को भी इसी तरह की ड्रेस पहनाया करो।
2: खूसट बुड्ढा।
3: माँ बोली, सेठ हम तो इतने गरीब हैं, इतनी महंगी ड्रेस रोज रोज कहां से लाएंगे। इस पर जानते हो बुड्ढा क्या बोला? बोला, तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है अगर
2: अगर अगर क्या
3: रंजीत? वो बुड्ढा मेरे लिए 10,000 देने को तैयार है।
2: तुम्हारी माँ को?
3: हाँ, और क्या।
2: तुमसे शादी करेगा?
3: नहीं, बस रखेगा। उसके तो बड़े बड़े बच्चे हैं, उसकी दो लड़कियां तो मुझसे भी बड़ी हैं।
2: मतलब वो बुड्ढा तुम्हें अपनी अपनी रखेल।
3: उसके चाहने से क्या होता है? अच्छा ये बताओ तुम क्या चाहते हो? 2 साल से मैं तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ, कैसे कैसे जतन करके मैंने माँ को रोका है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के लालच में माँ मुझे इस बुड्ढे के हाथ।
2: मैं क्या करूं इंदु, कहने को तो मैं एक गैराज के मालिक का बेटा हूं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए मेरा बाप मुझे भी गैराज के बाकी नौकरों की तरह तनख्वाह देता है, सिर्फ 70 रुपए महीना।
3: तो फिर
2: तू चिंता मत कर। अरे वो मेरा बाप है, मालिक नहीं है। देखना, एक ना एक दिन उसका पत्थर जैसा दिल जरूर पिघलेगा, बस उसी दिन मैं अपनी शादी की बात कर लूंगा।
3: वो तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेगी। वो बुड्ढा सेठ मगन भाई किसी दूसरी लड़की को, अरे एक और लड़की है, बुड्ढा उसमें भी दिलचस्पी।
2: जानता हूँ वो दूसरी लड़की है रानी बाला।
3: हा? तुम्हें कैसे मालूम?
2: तुम्हारी बस्ती में तुम्हारे बाद अगर कोई सुंदर खूबसूरत लड़की है

0: तो वो रानी बाला ही है।
1: अच्छा जी, मगर तुमने मुझे आज तक नहीं बताया।
0: क्या नहीं बताया?
1: यही कि तुम्हारी नजर वहाँ भी है।
0: हिंदू, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: तुम ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है? देखो, हर बार हमारी बात इसी मोड़ पर आकर अटक जाती है। रंजीत, कह देती हूँ, मेरी माँ ज्यादा इंतजार नहीं करेगी।
0: तुम तो करोगी ना मेरा इंतजार।
1: 2 साल से और क्या कर रही हूँ, लेकिन कब तक?
0: तो तुम उस बुड्ढे के पास जाना चाहती हो?
1: मेरी जूती जाना चाहती है।
0: फिर
1: तुम नहीं समझोगे, मर्द हो ना, औरत की कोमल भावनाओं को समझना इतना आसान नहीं है। तुम्हें कैसे समझाऊं रंजीत?

0: सारी खुशियां हैं और दूसरी तरफ सच्चा प्यार है, लेकिन जीवन की डगर उतनी ही कांटों भरी है। एक तरफ मेरी खुशियां हैं और दूसरी तरफ मां किसकी बलि चढ़ाऊं।
1: इंदु, इंदु, क्या सोच रही हो? कहां खो गई? सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाओ।
0: क्यों, सपने देखने का हक भी नहीं है मुझे?
1: झूठे सपने, आधे अधूरे सपने देखने से मन को बहुत तकलीफ होती है।
0: रंजीत, रंजीत, वो देखो, वो क्या है?
1: कहां?
0: अरे वो देखो ना, सामने सामने देखो, सामने। हाँ, सागर की लहरों के बीच एक बोतल लुढ़कती तैरती लपकती धीरे धीरे इधर आ रही है हमारी तरफ, देखो तो।
1: मुमकिन है इस बोतल में तुम्हारे सपनों के राजकुमार का कोई खत हो।
0: छी, मेरे सपनों के राजकुमार तो तुम हो।
1: फिर क्या हो सकता है इसके अंदर?
0: तुम्हारे लिए शादी की खुशखबरी है।
1: किसकी तरफ से?
0: तुम्हारी रानी बारा ने भेजी होगी, मैं क्या जानू।
1: मुझे तो ये पानी की बोतल मालूम होती है।
0: नहीं नहीं नहीं, इसमें मोहरे हैं, पक्का मोहरे हैं, सोने की मोहरे।
1: इंदु, सोने की मोहरे होती तो बोतल अब तक डूब गई होती।
0: अच्छा तो फिर हीरे होंगे।
1: हीरे?
0: हाँ।
1: हीरे, काश सचमुच अगर हीरे मिल जाएं तो पलक झपकते ही सारी कठिनाइयां सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। मगर अपनी ऐसी किस्मत कहाँ।
0: अब क्या सोचने लगे, देखो ना देखो, वो बोतल फिर हमसे दूर जा रही है, जाओ पकड़ो उसे, पकड़ो ना।
1: अच्छा ठीक है बाबा, जाता हूँ।
0: जल्दी। और सुनो, मैं कह देती हूँ, इस बोतल में जो भी होगा वो मेरा होगा।
1: हाँ हाँ, तुम्हारा ही होगा।
0: जल्दी आओ, आओ जल्दी
1: आओ। मिल गई तुम्हारी बोतल।
0: हाँ, हाँ।
1: ये लो।
0: क्या है इसमें?
1: सॉरी हो गई।
0: मतलब?
1: अरे ना मोहरे हैं ना हीरे, एक कागज का टुकड़ा है।
0: होगा किसी पगले का पत्र या किसी आत्महत्या करने वाले की अंतिम इच्छा। फिर भी मैं कहती हूँ खोल कर तो देखिए।
1: हाँ एक मिनट, खोलता हूँ। लीजिए प्रेम पत्र, हाजिर है।
0: पढ़ो ना।
1: ना ना ना ना, ये आपकी अमानत है, आप ही से पढ़े तो अच्छा है।
0: ठीक है, लाओ लाओ, पढ़ती हूँ। जिन साहब को ये दस्तावेज मिले वो इसे लेकर मैसर्स करसठ जी एंड कंपनी सॉलिसिटर्स 137 कैम्बल हाउस कंबाला हिल बॉम्बे से मिलें। इस दस्तावेज को लाने वाले को मेरी 1 करोड़ की जायदाद का मालिक करार दिया जाएगा। सर बोमन जी, बैराम जी।
1: इंदु, इंदु, इंदु,
0: 1 करोड़ रुपया
1: दिखा दो। दस्तावेज को लाने वाले को मेरी 1 करोड़ की जायदाद का मालिक कर। इंदु, इंदु, 1 करोड़ रुपया। चलो इंदु, देखो ये लो, ये रहा तुम्हारे सपनों का महल कैम्बल हाउस।
0: रंजीत चलो लौट चले, इतना बड़ा घर, सच्ची मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना, चलते हैं वापस।
1: हिंदु, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो लौट चलने की क्या तुक है?
0: रंजीत मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं सब मजाक सा लग रहा है।
1: मजाक होगा तो भी मालूम हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ तक आकर लौट जाना नहीं, मुनासिब नहीं होगा। अच्छा रुको, मैं घंटी बजाता हूँ।
0: नहीं नहीं, मैं कहती हूँ वापस चलो, चलो चलो।
1: अरे रुको ना।
2: ए, कौन मांगता है?
1: मिसेस करसठ जी एंड कंपनी।
2: बराबर है, किसको मिलना मांगता है?
1: बड़े सेठ से।
2: बड़े सेठ को मरे हुए तो 9 साल गुजर गया
1: तो छोटे

0: छोटे सेठ से मिल लेंगे।
1: क्या काम है?
0: उनसे बोल दो कि सेठ बोमन जी के उत्तराधिकारी, हाँ उत्तराधिकारी आए हैं।
1: सेठ बोमन के?
0: हाँ और क्या।
1: अच्छा ठीक है, आ जाओ।
0: हाँ चलो चलो चलो इंदु चलो
2: चलो।
1: बैठो बैठो, मैं साहब को बुलाता हूँ।
2: रंजीत सुनो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चलो ना, चलते हैं, चलो।
0: इंदु इंदु इंदु मैं हूं ना, घबराओ मत, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और फिर हमने कोई गलत काम थोड़े ही किया है।
1: हा? ये छोटा सेठ है, तुम इनसे बात कर सकता है।
0: ठीक है
3: जी, बोलिए। मेरा नाम कवरसी करसर जी है, बताइए क्या काम है?
0: अब ये लीजिए।
3: हाँ, ये दस्तावेज आपको कब मिला?
2: कल।
3: आप दोनों में से ये दस्तावेज किसको मिला है, मतलब इसका मालिक कौन है, किसको मिला?
2: इनको?
0: नहीं नहीं, इनको इनको इनको।
2: बोतल तो तुम ही समंदर से निकाल कर लाए थे ना?
0: लेकिन उस पर नजर तो तुम्हारी पहले पड़ी थी ना?
2: लेकिन रंजीत तुम समझ।
3: अच्छा होगा मुझसे बात करने से पहले आप दोनों फैसला कर लें, मैं अभी आता हूँ।
2: रंजीत सुनो ना,
0: तुम चुप रहो चुप रहो, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं, समझे?
2: रंजीत ये आदमी
0: खा नहीं जाएगा तुम्हें, और थोड़ी देर खामोश रहना तुम।
3: हाँ तो क्या फैसला किया तुम दोनों ने?
0: अब श्रीमान, उस बोतल, मेरा मतलब जिस बोतल में दस्तावेज मिला, उसकी मालकिन केवल ये लड़की है।
3: क्या ये ठीक कह रहा है?
2: हाँ।
0: अच्छा क्या ये दस्तावेज ठीक है?
3: ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है?
2: इंदु।
3: पूरा नाम?
2: जी इंदुमती।
3: शादी हो चुकी?
2: नहीं।
3: उम्र?
2: 19 साल।
3: कहाँ रहती हो?
2: वो महालक्ष्मी पुल के पास झोपड़ियों में।
0: साहब साहब, क्या ये स्टैम्प पेपर जो जो जो लिखा है वो ठीक लिखा है?
3: जिसको कागज मिला है उसको सवाल करने दो।
2: अच्छा तो बताइए ना आप, ठीक है क्या ये, बताइए ना।
3: हाँ लिखा तो ठीक है, मगर
0: मगर क्या?
3: मगर ये वसीयत आज से 18 साल पहले लिखी गई थी, जब सर बोमन जी एक भयानक बीमारी का शिकार हो गए थे। तब उनके अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, क्योंकि उन दिनों उनके आगे पीछे कोई भली बारिश नहीं था, इसलिए उन्होंने इस अजीबो गरीब वसीयत को लिखकर एक बोतल में बंद करके समंदर में डलवा दिया था। लेकिन इस वसीयत के लिखने के कुछ महीने बाद ही सेठ अच्छे हो गए और अभी तक जिंदा हैं और अपनी जायदाद के मालिक हैं।
0: तो ये वसीयत गोया
3: चुप। 16 वर्ष तक सर बोमन जी ने अपनी बोतल वाले वारिस का इंतजार किया, जब कोई ना आया तो उदास हो गए और उन्होंने अपनी पुरानी वसीयत कैंसिल करा के नई वसीयत लिख दी, क्योंकि जब तक जायदाद का असली वारिस जिंदा है उसे अपनी वसीयत हर बार बदलने का हक है।
0: तो फिर
3: मैंने अभी सर बोमन जी को फोन किया था, वो बोतल वाली वसीयत मिल जाने से बहुत खुश हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं इंदु।
2: लेकिन जब वसीयत कैंसिल हो चुकी है तो फिर मिलने से क्या फायदा?
3: सर बोमन जी की गिनती बंबई के कुछ गिने चुने लोगों में होती है, वो बहुत कम लोगों को मिलने का समय देते हैं, ये आपका सौभाग्य है।
0: इंदु मुलाकात करने में क्या हर्ज?
2: रंजीत
0: मिल सकते हैं ना?
3: हो सकता है वो तुम्हें कुछ इनाम दे या फिर से अपनी इस पुरानी वसीयत पर अमल करने का फैसला सुनाए। वो बहुत अजीब आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है, सोच लो।
2: रंजीत
0: हिंदू
2: समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
0: चलो चलो ना।
1: तुम्हारा नाम रंजीत है?
0: जी सर।
1: अच्छा लगा मिलकर। ओ तो तुम हो मेरी वारिस।

0: बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा, इंदु। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी?
1: छी? मैं
0: मेरी बेटी बनकर।
1: मेरी माँ है।
0: उसे भी यहां बुला लेंगे। और तुम्हारा बाप?
1: वो मर चुका है।
0: ये तो और अच्छी बात है। अब मेरा मतलब है कि मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारा बाप मर चुका। मैं हूं ना, मैं तुम्हें एक बाप का प्यार दूंगा। अच्छा, तो यही वो लड़का है जिसने बोतल को समंदर में से निकालने में इंदु की मदद की?
2: जी सर।
0: इसे 1,000 रुपए देकर भेज दो। नहीं नहीं, 2,000 दे दो। इसने इंदु की मदद की है, हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। क्या करते हो रंजीत?
3: जी, मेरे बाप का गैराज है, भास्कर गैराज।
0: वेरी गुड वेरी गुड। आओ इंदु, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम्हें भी लगी है ना? अरे पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देखती हो? वो तुम्हारा साथी, उसको इनाम दे दिया है, उसकी चिंता मत करो। चलो चलो चलो चलो।
1: रंजीत।

0: तुम अपने हाथ से खाना खा सकती हो।
1: जी
0: इंदु, तुम कहां तक पढ़ी हो?
1: जी, 7 दर्जे तक।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। शुरू करने के लिए ये काफी है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना, लोगों से बातचीत करना, सब सीख जाओगी। अच्छा, तुम्हारी मां का नाम क्या है?
1: किम्मी बाई।
0: हम उसको भी यहां बुला लेंगे। आज से तुम मेरी 2 करोड़ की जायदाद की वारिस हो।
1: लेकिन वसीयत में सिर्फ 1 करोड़ लिखा है।
0: 18 साल पहले मेरी वसीयत 1 करोड़ की थी, लेकिन अब वो 2 करोड़ की हो गई है। अरे
1: जी,
0: इंदु मेरी 2 करोड़ की जायदाद की वारिस है, समझी?

0: ओहो, कितनी बदबू है इधर। तुम यहाँ रहती हो?
1: जी।
0: अच्छा ठीक है। कावस जी।
2: जी सर।
0: तुम जाओ इंदु के साथ और उसकी माँ को लेकर आओ, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। कैसे रहते हैं लोग यहाँ पर?
3: अरे देखो तो सही, क्या तगड़ा हाथ मारा है।
1: कोई पैसे वाले आसामी का बेटा लगता है।
3: अरे मैं देखकर अभी आई हूँ, वहाँ एक बहुत बड़ी कार भी खड़ी है।
1: अच्छा?
3: हाँ हाँ, उसी से उतरी है ये। बेटी तो माँ से भी दो कदम आगे निकली।
1: चलो अच्छा है, किसी की जिंदगी तो सुधरी।
3: हाँ हाँ, और क्या ये कौन सा सारी जिंदगी अपने पास रखेगा इसे?
1: जब तक जवानी का रस है बस तब तक ही है।
3: चलो हमें क्या।
1: माँ, इंदु, मेरी लाटो, मेरी रानी, कैसी है तू? अरे मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे, मारी जाऊं, बलिहारी जाऊं।
2: वे सब बातें बाद में करना, अभी चलो इधर से।
1: लेकिन कहाँ?
2: वो भी बता दिया जाएगा।
4: अरे मुबारक हो किम्मी बाई, मुबारक हो।
1: अरे क्यों परेशान होती है रानी की माँ, सब्र कर, भगवान एक दिन तेरी भी सुनेगा।
4: मैं क्यों परेशान होने लगी? परेशान हो मेरी जूती।
3: छोड़ ना माँ, क्यों मुंह लग रही है?
4: तेरी वजह से सुनना पड़ता है सब। देख ले, एक वो है इंदु और एक तू है जो ड्राइवरों और मैकेनिकों के चक्कर काटती रहती है।
3: हाँ हाँ, जब वक्त आएगा तो सब ठीक हो जाएगा।
4: अरे अब कहाँ चली तू? अरे सुन तो।
3: आती हूँ अभी। हाय बेचारा, छोड़कर चली गई।
5: क्या है
3: इंदु? चली गई ना। हाय चिड़िया उड़ गई।
5: तुझसे कौन बात करता है?
3: यही तो अफसोस है, दुनिया में और भी लड़कियां हैं।
5: तो मैं क्या करूं, है तो होने दे।
3: रंजीत,
5: मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझी?
3: रंजीत, उसकी आंखों पर

0: दौलत की पट्टी बन गई है। दौलत के सिवा उसको अब कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर उसके दिल में तेरे लिए जरा भी प्यार होता तो क्या वो तुझसे मिले बगैर चली जाती? लेकिन अब उसको लगता है कि उसकी जिंदगी में प्यार नहीं,
1: रानी,
0: पैसा जरूरी है।
1: रानी, भगवान के लिए तू चली जाए यहां से। मैं पहले बहुत परेशान हूं और तू इस तरह की बातें करके मेरी परेशानी और ना बढ़ा।
0: ओहो, मैं तुझे परेशान नहीं कर रही, मैं तो सच्चाई बता रही हूं। रंजीत, शाम का सूरज डूबने का ये मतलब नहीं कि फिर सुबह नहीं होगी। हो सकता है अगली सुबह ज्यादा खूबसूरत हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है।
1: वही तो, मुझे भी उम्मीद है कि प्यार और दौलत की जंग में जीत प्यार की होगी।
2: हेलो
3: हेलो, बोमन विला
2: बराबर है, आप कौन?
1: जी मैं रंजीत। रंजीत
2: रंजीत कौन?
3: जी वो इंदु का दोस्त, वो जो बोतल लेकर आया था।
2: अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए?
3: इंदु से बात करनी है। अगर
2: इंदु से?
3: जी
2: एक मिनट, अभी बात कराता हूँ।
3: जी
2: सर। सर वो छोकरा रंजीत इंदु से बात करना चाहता है।
4: मैं बात करता हूँ, इधर दो। हेलो, अब क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए तुमको? तुमको इनाम दिया ना?
3: सर वो बात नहीं है सर।
4: फिर क्या बात है?
3: बस सर, एक बार इंदु से बात हो जाती तो।
4: उसको भूल जाओ, क्योंकि वो अब मेरी बेटी है, सेठ बोमन की, और मेरी 2 करोड़ की जायदाद की वारिस भी, समझे? और सुन, अब उसकी शादी हो रही है।
3: शादी? लेकिन सर जी वो तो
4: हाँ हाँ हाँ हाँ, अब उसकी शादी हो रही है कावस जी के साथ। अब कभी फोन नहीं करना।
1: ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा जवाब दूंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगी। बहुत घमंड है ना उसको अपनी अपनी खूबसूरती पर। उसका ये घमंड चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी रंजीत नहीं।
4: एलिस, एलिस।
5: यस सर।
4: कहाँ है सब? और मेरी बेटी कहाँ है?
5: मॉर्निंग वॉक के बाद बैडमिंटन, फिर स्विमिंग, फिर डांस, इतना सब करने के बाद थक जाती है वो, अब थोड़ा आराम कर रही है।
4: ओ, तो ये बात है।
5: सर ये एक लिफाफा है इंदु के नाम।
4: ठीक है, तुम जाओ और इंदु बिटिया को मेरे पास भेजो, आज मैं अपनी बेटी के साथ ही नाश्ता करूंगा।
5: ओके सर, अभी भेजती हूँ।
4: क्या है इस लिफाफे में, देखूं तो। अरे वाह, शादी का कार्ड। रंजीत वेड्स रानी बाला। रंजीत, ये नाम तो कुछ सुना सा लगता है।
6: किसका नाम सुना सा लगता है पापा?
4: रंजीत, ये नाम कुछ
6: क्या हुआ उसे?

0: देता हूँ वो
1: नहीं
0: तुम्हारे।
1: नहीं नहीं पापा, मैं गाड़ी खुद ले जाऊंगी।
0: ओके बेटा ओके, लेकिन जरा ध्यान से चलाना
1: डोंट
0: ठीक।
1: वरी पापा, गाड़ी को कुछ नहीं होगा।
0: बेटा इंदु, मुझे गाड़ी से ज्यादा तुम्हारी चिंता है। ऐसी 100 गाड़ियां मैं अपनी बेटी पर कुर्बान कर सकता हूँ।
1: ठीक है पापा, बस मैं बस अभी आई उसको शादी का गिफ्ट देकर। आखिर यहां तक पहुंचने में उसने मेरी बहुत मदद की है ना, अभी आती हूँ। रंजीत, क्या ये सच है?
2: क्या सच है?
1: तुम्हारी शादी रानी बाला के साथ?
2: हाँ,
1: कार्ड तुमने भेजा था?
2: मैंने नहीं, रानी बाला ने।
1: घटिया औरत।
2: गाली मत दो उसे, वो अब मेरी होने वाली पत्नी है।
1: वो और तुम्हारी पत्नी? क्यों कीचड़ में मुंह मार रहे हो?
2: भूलो मत इंदु, कि तुम भी इसी कीचड़ से निकल कर गई हो।
1: तुम मेरी बराबरी उससे कर रहे हो?
2: मैं तो भूल ही गया था, आप एक अमीर बाप की औलाद, और
1: लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं है।
2: और जो थी वो भी तो अब मेरी नहीं है।
1: मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकती।
2: मैंने कब कहा कि तुम कुछ करो? अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो हो गया हो गया, अब हमारे रास्ते अलग हैं।
1: नहीं, मैं इतनी जल्दी हारने वाली नहीं। चलो बैठो गाड़ी में।
2: क्यों?
1: मैंने कहा बैठो, एक अहम फैसला करना है मुझे अपनी जिंदगी का, तुम्हारा साथ जरूरी है।
2: लेकिन अब क्या फायदा?
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम बस गाड़ी में बैठो रंजीत, गाड़ी में बैठो।
2: ये क्या कर रही हो तुम? गाड़ी की इतनी स्पीड, ये क्या कर रही हो इंदु? गाड़ी रोको, मैं कहता हूं गाड़ी रोको इंदु। अगर तुम चाहती क्या हो
1: अभी पता चल जाएगा।
2: इंदु संभल के, संभल के, क्या हो गया तुम्हें? मरने का इरादा है क्या?
1: यही समझ लो, क्यों डरते हो? आज मैं तुम्हें आसमान की सैर कराऊंगी। ये लो
2: इंदु, इतनी फोन, इतनी स्पीड। इंदु इंदु, क्या क्या क्या क्या कर रही तुम? संभालो, आगे समंदर है।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज आज डूब जाने का मन कर रहा है।
2: इंदु
1: हाँ?

0: सपना था शायद।
1: सपना ही था लेकिन बड़ा डरावना। ऐसा लगा था जैसे जैसे सब कुछ खत्म हो गया।
0: हाँ लेकिन शुक्र है भगवान का हम साथ हैं
1: और हमेशा साथ ही रहेंगे।
0: रंजीत।
1: हाँ
0: रंजीत बोतल।
1: क्या
0: वो देखो वो बोतल उठा कर तो लाओ ना।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए हिंदू। ऐसी बोतल नहीं चाहिए जो हमारी खुशियां छीन ले।
0: रंजीत सुनो ना मुझे लगता है उसमें उसमें जरूर हीरे मोती होंगे
1: या फिर तुम्हारे किसी बूढ़े खुसट की अंतिम वसीयत। हाँ
0: जो भी हो रंजीत मुझे वो बोतल चाहिए बस बस।
1: अरे लेकिन
0: बस, जाओ ना जाओ ना लेकर आओ।
1: अच्छा ठीक है बाबा लाता हूँ। ये लो।
0: ये तो खाली है।
1: हाँ इंदू लेकिन हमारी तकदीर इस बोतल की तरह खाली नहीं है। हम दोनों का ही सोचना बहुत गलत था। खुशियां बंद बोतल में सागर की लहरों में उछलती हुई नहीं मिलती हैं। खुशियों को अपने हाथों से जीतना पड़ता है इन दोनों हाथों से।
0: नहीं रंजीत दो हाथों से नहीं चार हाथों से।

0: रहे थे नाटक एक करोड़ की बोतल। मूल कहानी कृष्ण चंदर, रेडियो नाट्य रूपांतरकार अक्षय वशिष्ठ, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे सुचित्रा गुप्ता, सुरेंद्र सागर, राजेश बख्शी, राजीव धीमान, नीलाक्षी, सुनीता हुड्डा और शालू सिंह।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक एक करोड़ की बोतल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4 बजने ही वाले हैं, आपसे कुछ ही देर में समाचार होंगे।

听众朋友们，接下来我们播送印度祈祷歌曲，请收听 Divyani Majumdar 唱的一首

0: 这里广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
2: नमस्कार खेल की दुनिया की हर हलचल हर जीत हर संघर्ष और हर बड़े मुकाबले के साथ आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ हैं वसीम अहमद चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस संस्करण की आज के इस खास अंक में बात होगी बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन से सात्विक और चिराग की शानदार जीत की और लक्ष्य सेन के मुकाबले की भी हम करेंगे बात साथ ही आईपीएल 2026 के रोमांच की जहां लखनऊ और चेन्नई के मुकाबले की बड़ी झलकियां होंगी वहीं कोलकाता और गुजरात के बीच होने वाले अहम मुकाबले पर भी रहेंगी हमारी खास नजर इसके अलावा एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से भारत के प्रदर्शन और गांधीनगर में जारी रिकॉर्ड्स की भी चर्चा करेंगे डायमंड लीग 2026 में भारत की पारुल चौधरी पर भी होंगी विशेष नजर हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 18 सीरीज सुपर चेस क्लासिक्स रोमानिया दिल्ली प्रीमियर लीग और अन्य खेल की तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ।

0: आज का दिन भारतीय बैडमिंटन के लिए काफी खुशगवार रहा। बैंकॉक के निमिबुम स्टेडियम में चल रहे थाईलैंड ओपन 2026 में दो बार के पूर्व चैंपियन सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पिछले साल के संस्करण से चूकने के बाद एक बार फिर थाईलैंड ओपन के फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने आज खेले गए सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी गो से फेई और नूरिजुद्दीन को 19-21, 22-20, 21-16 से हराया। मलेशियाई जोड़ी ने पहले गेम की शुरुआत बेहतर करी और 7-7 से बढ़त लेते हुए 15-9 पर 6 अंकों की बढ़त बना ली। हालांकि सात्विक और चिराग ने अंतिम चरण में अंतर कम करने की कोशिश तो की, लेकिन मलेशियाई जोड़ी ने मजबूती बनाए रखी और गेम 21-19 से अपने नाम किया। दूसरा गेम कड़ी टक्कर वाला रहा, जिसमें दोनों जोड़ियों के बीच अंकों के लिए संघर्ष चला। भारतीय जोड़ी 20-18 पर गेम पॉइंट तक पहुंची। हार न मानते हुए गोह नूर की जोड़ी ने 2 गेम पॉइंट बचाकर स्कोर बराबर कर दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने 22-20 से गेम जीतकर मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंचा दिया। 2019 और 2024 के चैंपियन सात्विक और चिराग ने फिर तीसरे गेम में दबदबा बनाया, 21-16 से आसान जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस जीत के साथ ही उन्होंने इस सीजन का पहला फाइनल भी सुनिश्चित किया। भारतीय जोड़ी का सामना अब खिताबी मुकाबले में इंडोनेशिया के लियो रॉली कर्नांडो और डेनियल मार्टिन से कल होगा। जीत के बाद सात्विक और चिराग ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: Yeah, obviously it is good. Didn't start of the year that well. We were always in two minds. I think we were also not good mentally. Not a really good start. And as players, we are very very driven. And for us to losing, it does bother us quite a bit. And we really wanted some answers. And finally, the bronze at the Thomas Cup especially really boosted our confidence. And here we are playing our first final of the year. Hopefully, we can go and win the title.
2: There was a situation we thought like, why it's happening? But later on, I realized like it's a part and parcel of the game. Yeah, and the way we play, it's more of aggression and more of attacking game. There will be a lot of niggles because I had a history of having tears or something like that. I have to manage and play, so it's kind of adjusting, being calm, and even when partner, like if I'm not well, he was kind of supportive at that time. So it has helped us, even as a camp coach, the way he's handling the players when he's injured. I think that has helped us, and yeah, really, really happy. I mean, I was telling in Thomas Cup to all the players, like one podium finish can change someone's life as well. So that's how it changed in 2022 Thomas Cup, where we won from down. From there is no looking back for us. That mentality then became we started playing really good after Thomas Cup. I said the same thing, guys, it's not your personal, it's a team win. I think it can change, hold the momentum, especially for us. If we hit once podium, I think we wanted that. I think we'll get that feeling again and again. So I think that has helped, maybe. So I think as Sirak said, job not yet, done yet, and we wanted to play one more good game.

0: whoever comes.
1: पुरुष एकल में ऑल इंग्लैंड ओपन के उपविजेता लक्ष्य सेन थाईलैंड के कुनलावुत विंटेडसान से हारकर बाहर हो गए। कुनलावुत ने शुरुआती गेम में 11-2 की बढ़त बनाई, लेकिन लक्ष्य ने लगातार 5 अंक लेकर अंतर को 4 अंकों तक कम कर दिया। कई टक्कर के बावजूद भारतीय शटलर ओलंपिक रजत पदक विजेता से पार नहीं पा सके और 19-21, 16-21 से मुकाबला हार गए। इसी के साथ पुरुष एकल में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। कल ही पीवी सिंधु की क्वार्टर फाइनल में हार के साथ महिला एकल में भी भारत की चुनौती समाप्त हो गई थी।

0: आईपीएल अब अपने आखिरी चरण में है। यहाँ हर मैच हर टीम के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है। आज हम बात करेंगे कल खेले गए चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच की। कल लखनऊ में खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ उम्मीदों को पूरी तरह झटका देते हुए 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज करी। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 187 रन बनाए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16.4 ओवर में मात्र 3 विकेट खोकर 188 रन बनाकर 7 विकेट से जीत हासिल करी। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब रही जब लखनऊ के डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने शानदार 26 रन देकर 3 विकेट का स्पेल डालते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को जल्दी पवेलियन भेज दिया। हालांकि कार्तिक शर्मा ने पारी को संभालते हुए 42 गेंदों में शानदार 71 रन बनाए। शिवम दुबे ने भी तेज 32 रन जोड़कर टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर 187 तक पहुंचाया। एक समय ऐसा लग रहा था कि यह स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स को मैच में बढ़त दिलाने के लिए काफी होगा, लेकिन रन चेस की कहानी कुछ और ही थी और फिर मैदान पर आए लखनऊ सुपर जायंट्स के मिशेल मार्श। इस ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 38 गेंदों में 90 रन बनाए। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, जिसमें अंशुल काम्बोज के एक ओवर में लगातार 4 छक्के भी शामिल थे। जोश इंग्लिस ने 36 रन बनाकर बेहतरीन सहयोग दिया, जबकि निकोलस पूरन ने अपने अंदाज में मैच खत्म किया। उन्होंने नाबाद 32 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार छक्के शामिल थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने लक्ष्य को सिर्फ 16.4 ओवर में हासिल कर लिया। इस मैच में कुछ खास रिकॉर्ड और अनचाही उपलब्धियां रहीं। अपनी विस्फोटक पारी के दौरान मिशेल मार्श ने आईपीएल करियर में 100 छक्कों का आंकड़ा पार किया। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल काम्बोज ने अपने नाम 3 अनचाहे रिकॉर्ड किए। उन्होंने दूसरा सर्वाधिक महंगा स्पेल दिया, 2.3 ओवर में 63 रन देकर कोई विकेट न लिया। आईपीएल इतिहास में वे अब दूसरे गेंदबाज बने जिन्होंने एक ही इनिंग में 8 छक्के खाए। तीसरा अनचाहा रिकॉर्ड अंशुल काम्बोज ने 3 या 3 से कम ओवर देकर 60 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे गेंदबाज बने। कल लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के बाद उनके गेंदबाज आकाश सिंह ने क्या कहा श्रोताओं, आइए सुनते हैं।
1: मैं 2 साल से हूँ टीम के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैकिंग, राइट? सो जिस तरीके से कोचेज ने मेरे को बैकिंग करते हैं, या जिस तरीके से जब भी मैं नहीं भी खेल रहा होता हूँ तो वो उनका जो सपोर्ट है, लाइक भारत तरुण सर इस साल हमारे साथ आए हैं, लास्ट ईयर जाहिर सर थे, ठीक है, बट जस्टिन और जैसे इस साल टॉम मूडी हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को और हम प्लेयर नहीं खेल रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो हमें किस तरीके से मेहनत करना है, किस तरीके से अपने आप को रेडी रखना है गेम्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप जब 25 खिलाड़ी होते हैं सबके पास, उस तरीके से आप जाते हो, जब आप नहीं खेल रहे होते हो तो आपको चाहिए कि आपको बैकिंग मिले, राइट? जब भी आप मौका मिले तो आप कोशिश करते हो, हर इंडिविजुअल कोशिश करता है कि वो उस मौके को ग्रैब करे, बट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, कैप्टन है, वो आपको कितना बैक कर रहे हैं। तो 100% ऋषभ भैया हो गए, और ये जितना बैकिंग आपको मिलेगा उतना आप फ्रीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं आज मैच भी खेला तो उन्होंने मेरे को बोला कि लाइक जो मेरे को आता है, लाइक न्यू बॉल मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है, मेरे पास स्विंग मेरी कला है, दोनों तरफ मेरे पास स्विंग है। तो मैं यही कोशिश कर रहा था कि जो मेरे को आता है उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, और जैसे विकेट में बाउंस भी था तो बाउंसर्स का अच्छा यूज करना, जो विकेट डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग चीजों को रखा जाए, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: अब एक नजर डालते हैं आज खेले जाने वाले मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच। आज रात कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में एक शानदार मुकाबला होने जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की मेजबानी में गुजरात टाइटंस से होगी टक्कर सीजन के मैच नंबर 60 में। इन दोनों टीमों के लिए दांव बिल्कुल अलग अलग हैं। केकेआर के लिए आज का मैच करो या मरो जैसा है। अजिंक्य रहाणे की टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर है, 11 मैचों में महज 4 जीत के साथ, हारे तो प्ले ऑफ की दौड़ से लगभग बाहर। दूसरी तरफ गुजरात टाइटन्स इस वक्त उड़ान पर है, 12 मैचों में 8 जीत, लगातार 5 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज हैं। आज जीत हासिल की तो वो पहली टीम बन सकते हैं जो आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में आधिकारिक तौर पर जगह पक्की करेंगे। हेड टू हेड आंकड़े भी केकेआर के हक में नहीं है। 6 मुकाबलों में गुजरात ने 4 जीते हैं, केकेआर सिर्फ एक बार ही जीत पाई है। इस सीजन में भी अहमदाबाद में दोनों की भिड़ंत हुई थी, जहां शुभमन गिल ने 86 रनों की तूफानी पारी खेली और गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से जीत दिलाई थी। गुजरात टाइटन की तरफ से साई सुदर्शन इस सीजन की शान है, 12 मैचों में 501 रन और 155 का स्ट्राइक रेट। वह इस टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और कगिसो रवाडा का तेज गेंदबाजी आक्रमण भी कम खतरनाक नहीं, 12 मैचों में 21 विकेट। केकेआर की तरफ से अंकुश रघुवंशी इस सीजन में 4 अर्धशतक जड़ चुके हैं और 340 रन बना चुके हैं, और जब बात होती है ईडन गार्डन्स की तो रिंकू सिंह का नाम अपने आप आता है। 2023 में यहीं पर उन्होंने एक ओवर में 5 छक्के लगाकर इतिहास रचा था। इस सीजन वो 71.5 के औसत से रन बना रहे हैं। आज टॉस और ओस का फैक्टर दोनों महत्वपूर्ण होगा। कोलकाता में 89% आर्द्रता का अनुमान है, जिससे रात में गेंद फिसलनी शुरू होगी और स्पिनरों का असर कम हो सकता है। इस सीजन ईडन गार्डन्स में खेले गए तीनों मैच पीछा करने वाली टीम ने ही जीते हैं, तो आज टॉस हार जीत तय कर सकता है। एक नजर डालते हैं आईपीएल के इस संस्करण की अंक तालिका पर। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस दोनों ही टीमें 12 मैच खेलकर 8 जीत में 16 अंकों के साथ पहले और दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के 12 मैच में 4 जीत और 8 हार के साथ 8 पॉइंट लेकर 10वें स्थान पर है। ऑरेंज कैप की रेस में हेनरिच क्लासेन सनराइजर्स हैदराबाद के पहले स्थान पर बने हुए हैं, जिन्होंने 12 मैच में 508 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के बी साई सुदर्शन और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात की जाए पर्पल कैप के लिए, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार 12 मैच में 22 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं। गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा 12 मैच में 21 विकेट के साथ दूसरे, और चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल काम्बोज 12 मैच में 19 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 पूरे रोमांच और प्रतिस्पर्धा के साथ जारी है। 11 मई से 17 मई तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 28 देशों के 172 एथलीट वेटलिफ्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। एशिया के कई दिग्गज खिलाड़ी यहां अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यह टूर्नामेंट इस साल ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। भारत के लिए ये चैंपियनशिप अब तक काफी सकारात्मक रही है। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक कुल 3 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। महिलाओं की 48 किलो और 53 किलो वर्ग में भारतीय वेटलिफ्टर्स ने कांस्य पदक जीतकर देश को शुरुआती सफलता दिलाई। वहीं पुरुषों के 71 किलो वर्ग में अजीत नारायण ने कांस्य पदक जीतकर भारतीय वेटलिफ्टिंग इतिहास में एक खास उपलब्धि दर्ज की। चैंपियनशिप के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड भी टूटते नजर आए। महिला 69 किलो वर्ग में ह्यानसोंग कुक ने 151 किलो क्लीन एंड जर्क के साथ नया विश्व और एशियाई रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा पुरुष 88 किलो वर्ग में रायोलरो क्वांग ने 220 किलो क्लीन एंड जर्क उठाकर नया विश्व और एशियाई रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने कुल 387 किलो वजन उठाकर नया एशियाई रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। चैंपियनशिप के छठे दिन पुरुष 110 किलो वर्ग ग्रुप बी मुकाबले पर खास नजर टिकी रही, जहां भारत की ओर से वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन हरचरण सिंह ने हिस्सा लिया। मोदीनगर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हरचरण सिंह से भारतीय दर्शकों को काफी उम्मीदें थी। स्नैच राउंड में हरचरण सिंह ने आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की। पहले प्रयास में उन्होंने 150 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाया और मजबूत स्क्वाट पोजीशन के साथ अपनी लिफ्ट पूरी की। दूसरे प्रयास में उन्होंने 154 किलो वजन उठाया और इसमें भी सफलता हासिल की। इसके बाद तीसरे प्रयास में हरचरण सिंह ने

0: वेद बलेश डॉक्टर पोती पोता नीतीश हेमपाल ललित चंदन पुष्पंदर जीतू भूमेश छवि निशा कंचन और भांजा मेरा गोविंद मनोज हरिचंद और संजीव ज्योति और पूरे गांव की फरमाइश। नमस्कार।
1: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर शिवानी गोला से ये रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: राम राम भाई साहब।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं गांव लोहारा डाकखाना मीनगर सराय जिला बागपतन मिस्त्री राकेश कुमार बोल रहा जी।
0: राकेश जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: उपेंद्र को सुनवा दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे, बोल
1: दो नाम है जोर।
0: दीजिए।
1: छोटी लड़की है अन्नू, बड़ी लड़की है सालू, घरवाली है श्यामू। मेरे एक दोस्त है जी नरेंद्र यादव सराय।

0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो शशि भैया, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: गांव चौधरी वासी राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: सुरेंद्र राणा को सुना देना जी, और आप सभी स्वस्थ रहे, गर्मी से बचे रहे।
0: चलिए, आप भी गर्मी से अपना बचाव करते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो जी, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं जी मंटू शर्मा, गांव सेड़ा, तहसील भादरा, जिला इंजनगढ़, राजस्थान से बोला हूँ सर।
0: मंटू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: सर उपेंद्र राणा की आवाज में सुनना चाहते हैं।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: अशोक कुमार शर्मा, गिदावली खुर्द बुलंदशहर।
0: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आश्रम जी उपेंद्र राणा को कुछ नाम है। रीशु, नीरज, लव शर्मा, देव शर्मा, गर्म शर्मा, गर्मी शर्मा, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: सचिव भाई जी, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: घनश्याम।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: उपेंद्र राणा।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: नाम लालू
0: जी।
4: मेरी बहन ज्ञानपति आनंदी, प्रधान जी ज्ञानदास, राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो, नमस्कार सचिव भाई।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं जी गांव दोगड़ा है, जिला नंद्रा हरियाणा से, यादराम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज हमारे कलाकार को सुनाओ जी, उपेंद्र राणा जी को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: कुछ नाम भी है जी।
0: जी,
5: कौशल्या देवी है जी, जागृति शर्मा, रेखा शर्मा, और सुहानी शर्मा है जी, भवेश शर्मा है, और यश शर्मा।
0: हेलो ग्राम संसार।
6: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मोहल्ला दौज वाला, शिकारपुर बुलंद शहर से, बबली कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ जी।
0: बबली भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज हमें उपेंद्र सिंह राणा जी की आवाज में अच्छी सी राग में सुनवा दो।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: और हमारे परिवार के नाम नोट कर लो सर जी, पत्नी पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमारी, लड़का मोनू कुमार, लड़की पूजा रानी, लड़का छोटा भीम, शीशपाल अकेला है, और अनवर बिहारी जी हैं। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
7: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: ये उपेंद्र राणा जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: कुछ नाम है जी, जयपाल सिंह अध्यक्ष, मास्टर ब्रह्म सिंह, जगदीश मोटा बादलपुर, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर, और आरव भाटी।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
8: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
8: राजेंद्र जाटव, मान की पोस्ट, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
0: कार्यक्रम में स्वागत है, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: उपेंद्र राणा।
0: जरूर सुनवाएंगे।
8: कुछ नाम है जी, असालत नगर, मुराद नगर से है, नरेंद्र जाटव, कमलेश जाटव, प्रशांत जाटव, निशांत जाटव, शिवानी जाटव, और आबिदपुर मानकी से है, महेंद्र, शारदा, रामकिशोर, शीला, सचिन, अनुष्का, मानसी, शिवम, और ये पूरे आबिदपुर गांव की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर उपेंद्र राणा से ये रागनी। किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजने को हैं। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।

0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास, नवाचार, RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटन्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हम अपने किसान बहन भाइयों से बार बार कहते हैं कि आप खेती के साथ साथ पशुपालन करें, कोई भी अन्य जो उद्यम है वो कर सकते हैं या स्वरोजगार कर सकते हैं, ताकि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ती रहे और जो खेती में उतार चढ़ाव आता है उससे आप बचे रहे। लेकिन आज हम एक और तकनीक के बारे में अपने किसान बहन भाइयों को बताना चाहेंगे।

0: और वो तकनीक है, सिस्टम है कृषि वानिकी। अब हमारे किसान बहन भाई सोच रहे होंगे कि कृषि वानिकी क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है जो भूमि है जहाँ पर आप कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, और साथ साथ अगर आप अपने खेतों पर पेड़ भी लगा देते हैं, तो ये सब मिलकर के कृषि वानिकी बन जाता है, जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। और इस प्रणाली से उत्पादकता, लाभप्रदता और पारिस्थितिकी संतुलन अच्छा रहता है, जिससे आप किसान भाइयों को कम लागत में अधिक आय और पर्यावरणीय सुरक्षा मिलती है।
1: बिल्कुल शशि भाई, और अब बात करते हैं कृषि वानिकी की विशेषताएं और लाभ की। तो सबसे पहले बात करते हैं आय में वृद्धि के लाभ की। किसान भाई फसलों के साथ साथ इमारती लकड़ी, फल और ईंधन प्राप्त करके अपनी आय में विविधता लाते हैं, और इसके साथ ही पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और जैविक पदार्थ बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरा बनाए रखती हैं, जिससे मृदा का संरक्षण होता है। और साथ ही ये कार्बन पृथक्करण के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जल स्तर सुधारने में मदद करती हैं। इसके अलावा सूखे या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायक हैं, और ये प्रणाली लकड़ी की मांग को पूरा करने के साथ साथ चारे की आपूर्ति भी करती है।
0: बिल्कुल नीलम बहन, तो हमारे किसान बहन भाई और अधिक जानना चाहेंगे कृषि वानिकी के बारे में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का हमारा विषय है कृषि वानिकी का, जिसका उपयोग करके हमारे किसान भाई लाभ ही लाभ ले सकते हैं। तो इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक बातचीत, जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का योगदान। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SD सिंह, और इनसे बात कर रही हैं प्रतिमा शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाई बहनों का, सभी श्रोताओं का। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। साथियों, हमारे किसान भाइयों का, राष्ट्र का समग्र विकास हो, हमारी सरकार पूर्णतः प्रयासरत है। हम जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। हमें अपनी भूमि को भी स्वस्थ रखना है और वन संपदा को भी बचा कर रखना है। ऐसे में कृषि वानिकी किसान भाइयों के लिए बेहद लाभप्रद है। कम भूमि हो या ज्यादा, कृषि वानिकी में एक ही भूमि पर आप फसल के साथ साथ पेड़ लगाकर कई गुना मुनाफा भी कमा सकते हैं। कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री आखिर क्या है और कैसे किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं। और आज का जो हमारा विषय है साथियों, वो है पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का महत्व। हमारे साथ हैं डॉक्टर SD सिंह, पूर्व मुख्य अधिकारी दिल्ली पर्यटन विभाग। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कृषि वानिकी क्या है जी।
3: देखिए, एक खेत है, यदि उसमें हम लोग खेती लगातार रहते रहे और यदि उनमें पेड़ों को उस और जोड़ दें, तो वो कृषि वानिकी हो जाती है। बस ये कि खेती में हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि क्या ये केवल फसलें ही है? नहीं, फसलों के साथ में जो हमारे पालतू पशु हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। तो ये है, कृषि के साथ में यदि पालतू पशु लेते हैं और साथ में पेड़ जरूर उसमें जोड़ देते हैं, तो ये किसान का अपना एक रूप है उस खेती को, कृषि की भूमि को उपयोग करने के लिए।
2: डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जितने हम पेड़ लगाएंगे उतने हमारी भूमि की जो मृदा है वो भी मजबूत बनेगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तो हमारी भूमि के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इसका कितना महत्व होता है?
3: देखिए, सही बात यह है कि जब भी आप खेती लगातार एक खेत से लेते रहते हैं, आप थोड़े से पोषक तत्व डाल देते हैं, तो होता क्या है कि सारे पोषक तत्व जो है वो तो नहीं हम ऐड करते, वो मिट्टी में यदि है तो वो ही हम ले सकते हैं फसलों के लिए। अब यदि हम साथ में पेड़ लगा देते हैं, और पेड़ ऐसे जो कि जैसे नाइट्रोजन फिक्सर हैं, कोई बहुत से शीशम वगैरह के पेड़ हैं, या इस प्रकार के पेड़ हैं जो कि बहुत ही उपयोगी हैं, जिससे पत्ते जो हैं वो नीचे जाते हैं, तो वो जो पत्ते या इसके जो पेड़ों की जो और चीजें हैं वो जब खेत में जाती हैं, तो उससे और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी उसमें ऐड होते हैं, जो छोटे छोटे तत्व होते हैं वो भी ऐड होते हैं, तो ओवरऑल इसकी जो उपजाऊपन जो है भूमि का वो बढ़ जाता है। एक तो ये है,
2: एक खाद के रूप में,
3: एक खाद के रूप में हो जाता है। दूसरा, और खाद, और वो भी पूरे खाद, पूरी मतलब ये नहीं है कि उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम केवल होगा। दूसरा, देखिए सही बात यह है कि जब हम पेड़ लगा देते हैं तो इसकी जड़ें थोड़ी नीचे चली जाती हैं, तो नीचे जाने से क्या होता है, यदि मिट्टी भुरभुरी है या सख्त है तो वो खुल जाती है, और यदि मिट्टी रेतीली है तो वो टाइट हो जाती है। तो जो पानी का जो बहाव है, यदि वो रेतली होगी तो पानी जो है जल्दी जो सूखता है तो वो कम जल्दी सूखेगा, और यदि बिल्कुल गोड़ी मिट्टी या क्ले मिट्टी होगी या सख्त मिट्टी होगी तो उसमें छेद जब हो जाएंगे तो इनकी जड़ें जो हैं वो नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज करती हैं।

0: तीसरा सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट नीचे की लेयर में है या पानी नीचे की लेयर में है उनको रिसाइकल करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक सस्टेनेबल सिस्टम है इकोलॉजी का, या जिसे पारिस्थिति का बोलते हैं हम लोग, कि उसमें फसल को लाभ हो रहा है और उपजाऊपन भी हो रहा है और पानी जो है वो संरक्षित भी हो रहा है,
1: यानी भूमि की नमी भी पूरी बनी रहेगी।
0: बिल्कुल, नमी भी पूरी बनी रहेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर किसान चाहता है कि फसल भी उगाए और पेड़ भी लगाए, तो कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए उसे?
0: देखिए, एक चीज मैं आपको सही बताता हूँ, वैसे तो देखिए कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो नहीं लगाया जा सकता, परंतु कुछ पेड़ जो हैं वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और कृषि वानिकी में, क्योंकि कृषि जो भूमि है उसके लिए दो पार्ट हैं उसके, एक तो उसको रोजी जो रोटी है वो मिलती रहे और साथ में जो कुछ और लगाए तो उससे उसको इनकम भी हो। हम ऐसे पेड़ लगा दें कभी कई बार कि उनका फल बहुत लेट आए या उनकी लकड़ी है वो बहुत लेट मिले, तो उससे क्या है किसान जो है उसको फायदा नहीं होता है। इसलिए बहुत से ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो कि थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएं और उसको अपनी जो कमाई है वो 3 से 5 साल या 8 साल या 10 साल से अंदर अंदर में उसको मिलना शुरू हो जाए। एक तो ये, दूसरा ये जरूरी है कि लकड़ी से ही नहीं, जो पेड़ हैं उनमें से और भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे कि उसको आमदनी हो सकती है। जैसे बहुत से पेड़ों के फूल बहुत अच्छे होते हैं, फल बहुत अच्छे होते हैं, या बीज बहुत अच्छे होते हैं, या पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, या तने बहुत अच्छे, उससे जो उसको इनकम हो सकती है वो भी उन पेड़ों से मिल सकती है। वैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे सहजन जिसे मोरिंगा बोलते हैं, उसको आप देखेंगे कि पेड़ का पेड़ तो है ही है, परंतु पेड़ से पत्ते, उसकी टहनी, उसके जो पॉड है, उसकी जो फली है, वो कितने उपयोगी होती है हमारी सेहत के लिए। ऐसे ही नीम के बारे में ये बोला जाता है कि नीम हकीम खतरा जान, मतलब कभी भी नीम यदि आपके सामने है तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। उसके पत्ते, उसके दातुन, उसके बीज, और नीम के देखिए बीजों से जो तेल निकलता है, एक सरकार ने आजकल यूरिया के लिए बिल्कुल कह दिया गया कि अकेला यूरिया नहीं होगा, नीम कोटेड यूरिया होगा। यदि नीम के बीज से जो तेल निकलता है यदि उससे कोटिंग करेंगे तभी आप बाहर बेच सकते हैं यूरिया को, नहीं तो नहीं बेच सकते और किसान उसको उपयोग भी नहीं करेंगे। तो एक कितना बड़ा फायदा है नीम को लगाने,
1: फायदा है। और डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि नीम से छन छन कर जो हवा वायु हमें मिलती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है,
0: तो हवा हो जाती है। ऐसे ही चंदन, अगरवुड, चंदन देखिए, चंदन का जो तेल या चंदन का जो रस होता है कितना महत्वपूर्ण होता है, सबसे महंगी चीज है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के हमारे इलाके हैं उत्तर पूर्व के, वहां पर सबसे ज्यादा अगरवुड होता है जो कि कृषि वानिकी के लिए बहुत। और ये देखिए पॉपुलर और यूकलिप्टस, ये तो दो ऐसे पेड़ हैं जिन्होंने लोगों को आमदनी दी है और आमदनी के साथ साथ में जो हमारे जंगल बचाए हैं। अदरवाइज देखिए ये दो पेड़ नहीं होते तो ये जो हम लोग पल्प और पेपर के लिए जो हम लकड़ी लेते हैं ये हम जंगल काट के लेते और इनसे हमें जो लकड़ी मिल रही है तो अब हम लोगों की जरूरत जो जंगल से पूरी होनी थी वो यहां से पूरी हो जा रही है। और नेचुरल जो फॉरेस्ट है, जो प्राकृतिक वन है, वो हमारे बचे हुए हैं जो कि हमारी धरोहर है जो कि इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मैंगो, आम, बहुत सी जगह में बीजू आम जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप जानते ही हैं।
1: अगर दक्षिण भारत की तरफ जाए तो वहाँ नारियल की जो लाइनें लगाई जाती हैं, बड़ी
0: बहुत ही
1: उपयोगी होती
0: है। कोकोनट है, ये देखिए एक चीज बताते हैं, कोकोनट से कितना फायदा होता है कोस्टल एरिया में, वो हमें फ्लड से बचाता है, नारियल हमें देता है, तेल जो है उसका हमारे कितना हमारे काम आता है, तो ये कितनी चीजें उससे हमें फायदे में मिलती है।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर कुटीर एवं लघु उद्योगों की हम बात करते हैं, वो किसान जो कुटीर और लघु उद्योगों को अपना रहे हैं या महिलाएं अपना रही हैं, उनके लिए कितना रोजगार का एक अवसर मिलता है?
0: फसल तो हमारी जो लगाते हैं हम फूड ग्रेन्स या हमारे गेहूं वगैरह या दालें या तिलहन, ये तो अलग हैं, परंतु यदि आप पेड़ ऐड कर देते हो तो पेड़ से हमारे एक तो छोटी लकड़ी आपको मिलना शुरू हो जाएगी, तो आप छोटी लकड़ी के औजार बहुत बना सकते हैं अपने घर के लिए। दूसरा जो इसके पत्ते हैं, जैसे मैं आपको सही बताता हूँ, नीम के पत्तों की अभी बात करें, नीम की खली तो एक है ही है, नीम अमृत, बीज अमृत, ये नीम के पत्तों से बनता है। सहजन, ये नीम के पत्तों से जो है ये आपके पाउडर बनता है, कितना फायदा होता है। चंदन, कितना फायदा होता है, इसकी छोटी सी बार कितनी काम आती है हमारी। जो बांस है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, बांस जो है आजकल हम लोग कभी भी ये बोलते हैं कि बांस एक ऐसी चीज है आप लगाते रहिए काटते रहिए, लगानी नहीं है जो आप दोबारा, एक बार लगा दिया आप काटना इस प्रकार से रखिए कि वो जहां से काटा है और चौथे साल में दोबारा फिर तैयार हो जाएगा आपको बांस। आप ऐसे रोटेशन बना सकते हैं कि 4 भागों में उस भाग को पूरे को बांट दीजिए, एक आज काटिए, एक अगले साल काटिए, एक अगले साल काटिए, और 5वें साल में फिर वो जो पहले साल वाला काटा हुआ वहां पर आप दोबारा आ सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई कोई फसल भी बो रहा है और पेड़ भी लगाना चाहता है तो जलवायु और मिट्टी का स्वास्थ्य भी ध्यान में रखते हुए करना होगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग कई बार ये बोलते हैं थोड़ा सा कि भाई आपके पास में लगभग कृषि जो भूमि है वो 140 मिलियन हेक्टेयर है और 140 मिलियन हेक्टेयर में हम खाद्य पदार्थ उगाएं या पेड़ लगाएं। देखिए कई बहुत सी जगह में हमारी जो मिट्टी है उसको हम लगातार यदि कुछ लेते रहते हैं तो उपज, चाहे जितना मर्जी खाद डालें उपज उसकी कम होती जाती है।
1: डॉक्टर साहब, कई जगह देखा गया है कि मिट्टी अम्लीय होती है।

0: होती है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: क्या वहां पर हमारे किसान कर सकते हैं उपयोग इसका?
1: बिल्कुल, क्यों भाई, बहुत से पेड़ ऐसे हैं
0: हाँ जी
1: जो एसिडिक सॉइल में भी लग सकते हैं और बेसिक सॉइल में भी लग सकते हैं। पेड़ ही एक ऐसी चीज है जिनकी की रेंज थोड़ी सी लंबी होती है,
0: जी
1: वो एसिडिक सॉइल में भी 4-5 pH से लेकर और 9-10 pH तक जो है हम पेड़ों को लगाते हैं, और उससे क्या होता है हमारी जो मिट्टी है उसकी जो एसिडिटी होती है, पीएच होती है, वो लगभग नॉर्मल होने शुरू हो जाती है, तो ये उनको फायदा होता है और पेड़ बिल्कुल लग सकते हैं। और बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जैसे यूकलिप्टस है, कोस्टल एरिया जहाँ की बेसिक सॉइल है वहां भी हो रहे हैं, और पहाड़ जो है वहां पर एसिडिक सॉइल होती है वहां भी हो रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी रेंज है, आप अपने आप देखिए कि जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है उससे एसिडिटी अपने आप बढ़ने लगती है, और इसी प्रकार से जो पहाड़ में हम लगाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट अंदर जाते हैं तो उसकी भी एसिडिटी है वो कम होने लगती है।
0: तो डॉक्टर साहब, अब बात ये आती है कि आपने पेड़ भी लगा दिया और फसल भी बो दी, तो उसका सही तरीके से प्रबंधन कैसे
1: जी
0: करना है?
1: बहुत जरूरी है। देखिए सही बात है कि फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए, फसल तो हमारा देखिए खाद्य पदार्थ है, वो हमें पहले चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। हमें पेड़ ऐसे चुनने हैं जिनका कम से कम यह है कि पतझड़ जो है सर्दियों में हो जाए ताकि धूप जो है हमारी खेती को मिले, एक तो ये जरूरी है। दूसरा, एवरग्रीन को हम थोड़ा सा इस प्रकार से अवॉइड करते हैं, ऐसे मतलब जो कि परमानेंट हरे रहते हैं ऐसे पेड़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वो वहां पर लगाए जा सकते हैं जहां पर हम खेती ना लगाकर वहां पर एनिमल हस्बेंड्री लगा रहे हैं या पशुओं को पाल रहे हैं या घास हम लगा रहे हैं। देखिए जो कृषि वानिकी है वो कृषि में सिल्वी कल्चर और सिल्वी पास्चर, सिल्वी पास्चर का मतलब है पेड़ और घास साथ में उगाना, जरूरी नहीं है कि खेती ही हो केवल, बहुत सी जगह में घास उगाते हैं
0: चारे के
1: के
0: रूप
1: साथ, चारे के रूप में। तो यदि
0: हैं।
1: वहां पर परमानेंट ग्रीन कवर का भी हम लोग ये सोचते हैं कि भाई एवरग्रीन हम लगा दें तो कोई मुश्किल नहीं, परंतु ये बहुत जरूरी है कि पतझड़ वाले पेड़ जो है हमेशा पसंद किए जाते हैं। जो आपने दूसरा कहा कि भाई हम पेड़ों को किस प्रकार से उगाएं, हमें थोड़ा सा ये देखना है कि टहनी यदि बाहर जा रही है बहुत ज्यादा और वो फसल को नुकसान करेगी, तो हमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग जिसे बोलते हैं ना कि शाख तराशी इस प्रकार से करनी है,
0: बिल्कुल कटाई छटाई,
1: वो कटाई छटाई जो इस प्रकार से करनी है कि उसकी जो धूप है उसका जो फैलाव है वो हमारी फसल को रोके ना या फसल की बढ़त को ना रोके।
0: तो डॉक्टर साहब, कृषि वानिकी के जो वृक्ष होते हैं वो तेज हवा को रोकने और सहयोगी फसल को धूप से बचाने के लिए उपयोगी होते हैं, किस तरीके से इन चीजों का भी ध्यान रखना है हमें?
1: पेड़ का हमारे लगाने का तरीका जो होता है एक तो वो, और पेड़ से जो मुख्य हमें फायदा मिलना चाहिए फसलों को, ये बहुत जरूरी है। हम लोग एक्चुअली क्या है जो आपने बताया ये इसको बोलते हैं विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स। विंड ब्रेक का मतलब होता है कि जो किनारा है खेत का या काफी दूरी तक थोड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाने और एक या दो लाइनों में लगाने, जिससे कि तेज हवा आए तो वहां पर उनसे टकराए, उसमें डस्ट है, उसमें और पॉल्यूटेंट्स है, कुछ भी है उसमें प्रदूषण के कारक हैं, तो वो वहां पर टकरा कर तेज हवा में जो बह जाते हैं वो वहां पर रुकेंगे, और जो हवा आगे जाएगी तो जो वेलोसिटी है उसकी, जो हवा की तेजगी है वो वहां पर कम हो जाएगी, तो जो आगे डेसिकेशन उसका सूखापन है, सूखापन का जो आगे फसल को नुकसान होता है वो कम हो जाएगा, डस्ट जो है वहीं पर रुक जाएगा, जो आगे हवा जाएगी वो शुद्ध हो जाएगी। और दूसरा आपने जो या शेल्टर बेल्ट्स उनको बोलते हैं कि शेड कैसे मिले उन, हम क्या करते हैं कि खेत में इस प्रकार से पेड़ लगाते हैं, 5 से 10 मीटर तक पेड़ लगा देते हैं हर जगह, तो थोड़ी थोड़ी दूरी तक जब पेड़ लगाते हैं तो उनको अपने आप में छाया मिलती है और वो जो धूप से उनको नुकसान फसल को होगा वो कम हो जाएगा।
0: जी डॉक्टर साहब, अब एक सवाल मेरा और है, जो किसान भाई कृषि वानिकी करना चाहते हैं या पेड़ लगाना चाहते हैं, क्या उनके लिए सरकारी मदद मिल सकती है?
1: बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं हमारी जिसमें कि फायदा मिलता है, और आजकल कृषि वानिकी की भारत सरकार की जो कृषि मंत्रालय में ही स्कीम शुरू हो गई है वो है हमारी सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री, और उसमें हमें बहुत सी नर्सरी लगाने के लिए जो किसानों के लिए भी, और यदि कोई विभाग किसानों के लिए नर्सरी कोई पौधशाला कोई तैयार करता है उसके लिए बिल्कुल पैसा मिलता है, और जो पैसा मिलता है उससे जो किसानों को पौध चाहिए उसी प्रकार की पौध जो है वो उनके पौधशालाओं में तैयार की जा सकती है, और उसके लिए बड़ा एक अच्छा साधन है कि जिला कृषि अधिकारी के साथ में, जिला वन अधिकारी के साथ में, जिला उद्यान अधिकारी के साथ में, कहीं पर भी यदि कोई कांटेक्ट करता है तो इसका पूरा फायदा उसको जो है मिल सकता है, और वो सरकार के पास में उसका पैसा जो है वो भारत सरकार से राज्य सरकार में जाता है, राज्य सरकार अपना भी सहयोग देती है, और वो बहुत जगह में आधा आधा 50-50% भारत सरकार देती है, 50% जो राज्य सरकार देती है, ये RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में ही सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री है। और एक इसका जो मेन पार्ट है कि यदि सारे यूनियन टेरिटरी हैं तो हमारे जो यूनियन टेरिटरी में 100% भारत सरकार से मिलता है, जो पहाड़ी राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट के हैं वहां पर 90% और 10% का मिलता है सहयोग, और जो बाकी है वहां 60-40% का जो सहयोग मिलता है बाकी राज्य में, तो ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए पौध उगाने का साधन है। और खेत घरों के आसपास पौधे नर्सरी हम पौध तैयार करवा सकते हैं क्लस्टर बेस पर गांव के साथ में या ब्लॉक में, और वो पौधे जो है लोगों को मिल सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, अगर जो हमारे युवा साथी हैं, क्या उनके लिए कोई प्रशिक्षण का भी प्रावधान है इसमें?
1: बिल्कुल, आजकल बहुत सी कृषि विद्यालय जो हैं वो, या कृषि विकास केंद्र जो है, केवीके जिनको बोलते हैं, वहां पर रेगुलर

0: इनकी ट्रेनिंग हो रही है और ट्रेनिंग के लिए भी भारत सरकार से जो है उसमें भी फंड मिलता है और उसमें बिल्कुल वो सहयोग ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी मनाही नहीं है, इवन प्रोत्साहन जरूर है इसमें।
1: तो डॉक्टर साहब, चलते चलते एक प्रश्न ये रहेगा कि जो किसान भाई कृषि वानिकी को अपना रहे हैं, फसल भी उगा रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, तो क्या उनको आप टिप्पणी देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यदि हम लोगों का सतत विकास यदि शब्द बोलेंगे और एक जिसे बोलते हैं कि पर्यावरण संतुलन जो इक्विलिब्रियम है पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण संतुलन हम बिठाते, तो पेड़ों को जरूर अपने आसपास में रखें। एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया है किसी ने कि 30 और 300 अपने नजदीक में 3 पेड़ देखूं और 30% यदि ग्रीनरी हो और मेरे नजदीक में 300 मीटर दूरी पर एक छोटा सा फॉरेस्ट हो, छोटा सा वन हो, तो आप इकोलॉजिकली बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे आप बिल्कुल नेचर के पास
1: संतुलित
0: आपकी जिंदगी लगेगी।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने आज, पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का महत्व और विस्तार से बताया, और मुझे लगता है कि ये सारी बातचीत को सुनकर हमारे सभी किसान भाई बहनों को लाभ पहुंचेगा। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये बातचीत, पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का महत्व। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर SD सिंह और इनसे बात कर रही थी प्रतिमा शर्मा।
3: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं राजेश कुमार अट्टा।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे उपदेश, और कलाकार थे राजेश कुमार अट्टा।
1: नीलम बहन, आज का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट ने हर किसी की जो जिंदगी है बड़ी आसान बना दी है अगर वो इंटरनेट का सदुपयोग करता है तो। हर क्षेत्र में आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह के ऐप आ गए हैं, चाहे हमें बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, या गैस लानी हो, अपने किसी तरह के अन्य काम हो, बैंक का काम हो, पैसे निकालने हो, जमा करने हो, सारा का सारा काम आज इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो हमारे जो किसान बहन भाई हैं, हमारा जो कृषि का क्षेत्र है, वो कैसे

0: पीछे रह सकता है। तो इसी क्रम में एक बहुत ही अच्छी योजना हमारे किसान बहन भाइयों के लिए चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम है ई नाम, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि फोन के जरिए हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं, तो इसी तरह से हमारे किसान बहन भाई भी अपनी जो फसल है उसको इस पोर्टल के माध्यम से कहीं पर भी बेच सकते हैं। अब ये उनके सामने समस्या नहीं रहेगी कि हमारे जो आसपास बाजार है वहां पर भाव कम मिल रहा है तो हमें कम में ही बेचना है। अब आपको ई नाम पोर्टल पर जाना है और देखना है कि कहां पर आपकी फसल का अधिक दाम है, तो वहां पर आप इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से बेच सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, ई नाम योजना भारत सरकार की एक प्रमुख डिजिटल योजना है जो 2016 में शुरू की गई थी। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो किसान भाइयों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से देश भर की मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़कर सीधे खरीदारों से जुड़ने में मदद करता है। और किसान भाई ई नाम पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल की ऑनलाइन बोली देख सकते हैं और मंडियों के भाव की जानकारी ले सकते हैं और अपनी फसल को बेच सकते हैं।
0: तो हमारे जो भी किसान बहन भाई हैं इस पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल को बेचना चाहते हैं, तो ई नाम पोर्टल है, वहां पर आपने आपको पंजीकृत करना होगा और फिर आप इस पोर्टल के माध्यम से अपने फसल उत्पाद को बड़ी आसानी के साथ जहां पर भी आपको भाव अच्छा लगे वहां बेच सकते हैं। अब इस पोर्टल पर आपको पंजीकरण कैसे करना है, आपके नजदीक जो भी जन सुविधा केंद्र है वहां जाइए, आप जो भी वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे वो आपका पंजीकरण ई नाम पोर्टल पर बड़ी आसानी से कर देंगे। तो नीलम बहन, ये तो जानकारी रही ई नाम योजना की, और देखिए अब समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए। लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे।
1: कल ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर, और साथ ही खेलो इंडिया योजना पर भी बहन भाइयों को जानकारी दी जाएगी।
0: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोकगीत सुनवाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे किसान बहन भाई चर्चा सुन सकेंगे जिसका विषय रहेगा किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह, और इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन यानी FPO योजना की जानकारी दी जाएगी। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की। लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने ये गज़ल सुनी। इसी के साथ गज़लों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट दर को 25% से घटाकर 7% किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 101 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचय अभियान की शुरुआत की। राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। दिल्ली पुलिस ने जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आईपीएल क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने कल सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर वैट दर को 25% से घटाकर 7% कर दिया है। ये रियायती दर प्रारंभिक दर पर 6 महीने की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस फैसले से एयरलाइन कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और आम यात्रियों को भी सस्ती हवाई यात्रा का फायदा मिल सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज डिस्ट्रिक्ट पार्क पश्चिम विहार से जल संचय अभियान की शुरुआत की। ये कार्यक्रम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य 30 अगस्त तक राजधानी में 101 महत्वपूर्ण जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस पहल के पहले चरण में लगभग 383 एकड़ के क्षेत्र में फैले 101 चिन्हित जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इनमें द्वारका जोन के 22, दक्षिण जोन के 13, रोहिणी जोन के 17 और नरेला जोन के 6 जल निकाय शामिल हैं। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने शहर में दीर्घकालिक जल सुरक्षा, भूजल पुनर्भरण और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये पहल केवल सौंदर्यीकरण का एक प्रयास मात्र नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक बहाली और सतत शहरी विकास की दिशा में केंद्रित प्रयास है। साथ ही उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय सीमाओं का कड़ाई से पालन करें और सभी जीर्णोद्धार स्थलों पर कार्य निष्पादन के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। श्री संधू ने लोगों से जन भागीदारी के माध्यम से इस अभियान में शामिल होने और अधिक हरित तथा जल सुरक्षित विकसित दिल्ली के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली लगभग 500 मेधावी छात्राओं को साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये बेटियां अपने परिवार, पूरे राष्ट्र के सपनों और संकल्पों की वाहक है। उन्होंने कहा कि ये पहल छात्राओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी तथा अभिभावकों की चिंताओं को भी कम करेगी, जिससे उनकी बेटियां बिना किसी बाधा के अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी से ईंधन बचाने की अपील की है।
3: प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपील की है ईंधन की बचत करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं। मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो आज इन बेटियों को साइकिल दी गई है, ये भी उस पूरे परिवार के काम आने वाला साधन है, जिससे ईंधन की बचत भी होगी और एक बहुत ही स्वायत्तता उस बेटी को मिलेगी जो अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वो अपनी साइकिल के साथ खुद आगे बढ़ेगी।
1: राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। उत्तर रेलवे ने कहा कि इस आधुनिकीकरण के अंतर्गत नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित सिग्नलिंग प्रणाली लागू की गई है। एक रिपोर्ट।
4: रेलवे ने बताया है कि इस स्वचालित प्रणाली से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम हो गई है, जिससे भविष्य में रूट की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इनमें आधुनिक सिग्नल तकनीक, स्वचालित असफल सुरक्षित सुविधाएं और AI आधारित उन्नत निगरानी व्यवस्था शामिल है, जो दुर्घटनाओं की आशंकाओं को कम करती है। ये पहल दिल्ली मंडल में सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यात्रियों और मालगाड़ियों दोनों के लिए सुरक्षित तथा अधिक कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने की भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपनी विधानसभा के सेक्टर 9 स्थित लेक व्यू अपार्टमेंट्स में आरएमसी सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही विश्वा अपार्टमेंट और स्टार अपार्टमेंट में वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा श्री गुप्ता ने अपने आवास में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज नरेला भवाना मार्ग पर 9.5 किलोमीटर की सड़क पर 55 करोड़ की लागत से बनने वाले प्री कास्ट आरसीसी नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये परियोजना आधुनिक प्री कास्ट तकनीक पर आधारित है, जिससे निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा और गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग मंत्री ने नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय विधायक मनोज शौकीन और क्षेत्रवासियों द्वारा बताई गई समस्याओं को श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया।

0: साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक कार्य जल्द शुरू कर जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त आयुक्त रवि कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी फर्जी कंपनियां चलाकर जीएसटी रिटर्न, नकली बिलिंग और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 128 करोड़ रुपए के नकली जीएसटी लेनदेन किए गए। जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 51 लाख करोड़ रुपए नकद, 15 मोबाइल फोन, 2 कारें, फर्जी बिल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्रों तक पूरी पहुंच थी। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। नोटिस में सीबीएसई ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज 11 कुलपतियों और लगभग 96 स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक संवाद कर मेरा भारत मेरा योगदान अभियान को लेकर चर्चा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य केवल नियुक्तियों पर चर्चा नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों और युवाओं को इस जन अभियान का सहभागी बनाना है, जिससे छोटे छोटे प्रयास भी देश हित में बड़े बदलाव का माध्यम बन सके। उन्होंने इस दौरान विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, आधुनिक कक्षाएं, छात्र सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा और बेहतर शिक्षा के वातावरण को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी ने सभी विभागों को सरकारी वाहनों का सीमित उपयोग सुनिश्चित करने और ईंधन बचत उपायों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। ये निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के बाद आया है। राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अपने निजी काफिले से पायलट वाहन को हटा दिया है। लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से 9 वाहन और लोक निर्माण विभाग भवन और सड़क शाखा से 8 वाहन तत्काल वापस लेने के आदेश जारी किए गए। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है।
2: यह दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसमें रुके हुए पानी को हटाना और जल भंडारण टैंकों का उचित रखरखाव शामिल है। डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए मई के महीने को मॉनसून से पहले जागरूकता गतिविधियों का मुख्य महीना घोषित किया गया है। मंत्रालय जुलाई माह को डेंगू विरोधी माह के रूप में मनाता है, जिसके दौरान देशव्यापी स्तर पर निरंतर जागरूकता और रोकथाम अभियान चलाए जाते हैं। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री

0: कहीं भी पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली सरकार कल घिटोनी गांव में नवनिर्मित तरला मोहल्ला चौपाल और वाल्मीकि बस्ती चौपाल का लोकार्पण करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेज साहिब सिंह ने कहा कि ये आयोजन गांव के विकास और जन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। दक्षिणी दिल्ली के नेहरू प्लेस डाकघर में सोमवार को 11 बजे से एक दिवसीय डाक चौपाल का आयोजन किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिधोड़ी ने कहा कि इस डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अब डाकघर में पोस्टल बैंकिंग, बचत खाता और बीमा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अरुण जेटली स्टेडियम में कल आयोजित होने वाले आईपीएल क्रिकेट मैच के मद्देनजर सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ा दिया है, जिससे मैच के बाद वापसी में यात्रियों को सुगम यातायात मिल सके।
2: मेट्रो में सफर करने वाले यात्री डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर समय बदलाव की जानकारी ले सकते हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने भी यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि बहादुर शाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। इसके साथ ही दरियागंज से दिल्ली गेट चौक से गुरु नानक चौक और आईटीओ से दिल्ली गेट चौक पर किसी भी भारी तथा व्यावसायिक वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेज दिया। राजधानी में आज दिन भर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट दर को 25% से घटाकर 7% किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 101 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचय अभियान की शुरुआत की। राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। दिल्ली पुलिस ने जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आईपीएल क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने कल सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, उर्दू शायरी हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन की हसीन और दिलनशीन सिंफ है। इसमें हमारे मुल्क की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पाई जाती है। यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ के कुदरती मनाजिर, पहाड़, दरिया और खेत खलियानों की मंजरकशी उर्दू शायरी की खूबसूरती और दिलनशीनी में इजाफा करती है। सामईन, शायरी हयात इंसानी के एहसासात और जज्बों के बेसाख्ता बयान कर देने का नाम है। शायरी के मौजूआत मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसीलिए ये नफ्सियाती और पेचीदा मसाइल को हल करने में भी कारामद साबित होती है। और शेर के दो मिसरों में वो बात कह दी जाती है जो इंसान को वाह कहने पर मजबूर कर देती है। मुशायरों की ये तहजीब रही है कि अगर कोई शेर पसंद आता है तो वाह वाह की सदाएं बुलंद होती हैं और शायर को दादो तहसीन से नवाजा जाता है। इस रिवायत को बरकरार रखते हुए आइए सामईन मुशायरा सुनते हैं। निजामत कर रहे हैं।

0: जनाब अमीर अमरोही।
1: आकाशवाणी के मुशायरे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शोरा मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूँ। जनाब असलम बेताब साहब, जनाब खालिद अखलाक साहब, जनाब हामिद अली अख्तर साहब, सलाहकार उर्दू मैगजीन के एडिटर, और ये खाकसार अमीर अमरोही। आइए हम इस मुशायरे का आगाज जनाब असलम बेताब साहब के कलाम से करते हैं। आइए हम उन्हें समाप्त करते हैं। जनाब असलम बेताब साहब,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे याद कर रहे होंगे, वो मुझे याद कर रहे होंगे, वक्त बर्बाद कर रहे होंगे।
1: क्या कहने, वाह वाह वाह।
2: वो मुझे याद कर रहे होंगे, वक्त बर्बाद कर रहे होंगे, इश्क के नामुराद पिंजरे से, इश्क के नामुराद पिंजरे से खुद को आजाद कर रहे होंगे।
1: अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
2: इश्क के नामुराद पिंजरे से
3: खुद
2: को आजाद कर रहे होंगे, देखकर हाथ की लकीरों को,
1: देखकर
2: हाथ की लकीरों को सिर्फ फरियाद कर रहे होंगे।
1: वाह वाह
3: अच्छा है,
1: वाह वाह वाह,
2: बहुत शुक्रिया। देखकर हाथ की लकीरों को सिर्फ फरियाद कर रहे होंगे, सोचकर फिर पुरानी बातों को, सोचकर फिर पुरानी बातों को दिल को नाशाद कर रहे होंगे। सोचकर फिर पुरानी बातों को दिल को नाशाद कर रहे होंगे। ये तेरा वहम ही तो है असलम, ये तेरा वहम ही तो है असलम, वो तुझे याद कर रहे होंगे।
1: क्या कहने,
2: ये तेरा वहम ही तो है असलम, वो तुझे याद कर रहे होंगे।
1: क्या कहने,
2: वक्त बर्बाद कर रहे होंगे, वो मुझे याद कर रहे होंगे।
3: बहुत खूब।
1: कुछ और सुनाइए असलम साहब।
2: जी एक गजल और हाजिर करता हूँ। दिले नादा की आरजू क्या है,
1: दिले नादा की आरजू क्या है,
2: दिले नादा की आरजू क्या है, क्या बताएं कि जुस्तजू क्या है।
1: वाह वाह वाह।
2: दिले नादा की आरजू क्या है,
1: वाह वाह,
2: क्या बताएं कि जुस्तजू क्या है। शोर बरपा है तेरी यादों का,
3: वाह,
2: शोर बरपा है तेरी यादों का, और इस दिल के रूबरू क्या है।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: शोर बरपा है तेरी यादों का,
1: वाह वाह,
2: और इस दिल के रूबरू क्या है। है धुआं कुछ बुझे चिरागों का, है धुआं कुछ बुझे चिरागों का, ये ना पूछो कि चार सू क्या है।
1: क्या कहने, वाह वाह।
2: है धुआं कुछ बुझे चिरागों का,
1: वाह वाह,
2: ये ना पूछो कि चार सू क्या है। मेरे चारों तरफ है वो शायद, मेरे चारों तरफ है वो शायद, वरना ये रोशनी ये बू क्या है। मेरे चारों तरफ है वो शायद, वरना ये रोशनी ये बू क्या है। मात खाई है इश्क में सबने, मात खाई है इश्क में सबने, ए दिले बेकरार तू क्या है।
1: क्या कहने,
2: मात खाई है इश्क में सबने, ए दिले बेकरार तू क्या है। मोल कुछ भी नहीं वफाओं का, मोल कुछ भी नहीं वफाओं का, इश्क वालों की आबरू क्या है। मोल कुछ भी नहीं वफाओं का, इश्क वालों की आबरू क्या है। कोई हसरत नहीं अगर असलम, कोई हसरत नहीं अगर असलम, फिर बताओ ये हाय हू क्या है। कोई हसरत नहीं अगर असलम, फिर बताओ ये हाय हू क्या है।
1: क्या कहें,
2: दिले नादा की आरजू क्या है, क्या बताएं कि जुस्तजू क्या है। एक गजल और हाजिर करता हूँ।
1: जी जी, शादी गिरामी।
2: आज नहीं तो कल लिखेंगे,
1: आज नहीं तो कल लिखेंगे,
2: आज नहीं तो कल लिखेंगे, हम भी एक गजल लिखेंगे।
1: क्या कहना,
2: आज नहीं तो कल लिखेंगे, हम भी एक गजल लिखेंगे, गुजरे हैं जो साथ तुम्हारे, कागज पर वो पल लिखेंगे।
1: क्या कहना,
2: गुजरे हैं जो साथ तुम्हारे, कागज पर वो पल लिखेंगे, बेचैनी और नींद ना आना, बेचैनी और नींद ना आना, हम दोनों के हल लिखेंगे।
1: क्या कहने,
2: बेचैनी और नींद ना आना, हम दोनों के हल लिखेंगे। सब तुमको जो चाहे लिखें, सब तुमको जो चाहे लिखें, हम तो बस संदर लिखेंगे।
1: क्या बात,
2: सब तुमको जो चाहे लिखें, हम तो बस संदर लिखेंगे। असलम क्या है हम लिखें तो, असलम क्या है हम लिखें तो आवारा बाद

श्रोताओं, ये जो गीत हमने लिया था फिल्म थी पापा कहते हैं और आवाज उदित नारायण जी की थी। हर प्रेम कहानी पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत बन जाती हैं, है ना? वो पास होकर भी साथ नहीं, वो अपना होकर भी

तो दोस्तों, आज की सुरों की शाम यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गीत और शायरियाँ आपके दिल को छू गई होंगे। मैं रचना अग्निहोत्री आपसे फिर मिलूंगी एक नई शाम, नई धुन और नई कहानियों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब समय है समाचार संध्या का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर

0: फिक्सिंग सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निपटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुरबत में चला जाएगा। इक्तसादी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निज़ाम कायम करने पर मुश्तरक तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जना मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है।
0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जनाब मोदी नीदरलैंड्स के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसीतर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। एएसएमएल लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है जिनमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एएसएमएल के सदर और सीईओ क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खित्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने अपने गुजरात के दौरे के दौरान जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अहदेदारान के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर में कई मीटिंगें की और शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों और उनसे वाबस्ता कामकाज का जायजा लिया। जनूब मगरबी जोन के दफ्तर में जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों और पौधे लगाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर की जदीदकारी और घाट लोदिया गोटा चांद लोदिया थलतीज समेत झीलों के इलाकों को एक दूसरे से मरबूत करने के सिलसिले में अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल भी किया और इन कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हलके से 9 मुंतखबा 70 म्यूनिसिपल काउंसिलों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में आज पुलिस के सुपरिटेंडेंट एम नरेश ने कहा है कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार के नाम से नक्सल मुखालिफ मुहिम के तहत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 दीगर के खुद सुपुर्दगी किए जाने के बाद गढ़चिरौली जिले से नक्सलियों का खात्मा हो गया है। मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब नरेश ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर मजमुई तौर पर 64 लाख रुपए का इनाम था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उनके पास से हथियारों समेत 65 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि डिवीजनल कमेटियों के अरकान समेत 5 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान पुलिस सुपरिटेंडेंट ने वजाहत की कि हालांकि गढ़चिरौली से सरगर्म नक्सली खत्म हो गए हैं लेकिन नक्सली सोच मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहान के इनका से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्र किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारी के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिन उम्मीदवारों को यकजा किया था और

देखूं जिधर मैं शोले ही शोले दिल है आखिर कैसे न डोले हाय देखूं जिधर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा से लीक सामग्री एकत्र की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि

0: And the board said that at least two of the three languages must be native languages in the line with National Education Policy 2020 and the National Curriculum Framework for School Education 2023. In IPL cricket, host Kolkata Knight Riders defeated Gujarat Titans by 29 runs wickets at the Eden Gardens in Kolkata last night. Chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans made 218 runs with a loss of 4 wickets in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है दोस्तों अब वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का दोस्तों इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे गानों को सुनते हैं जिन्हें वक्त के पन्नों पर हम पुराने कहते हैं या जो वक्त के पन्नों पर पुराने हो गए हैं पर बदलते दौर के साथ वो नगमे अपनी चमक और अपनी रोशनी और बढ़ा चुके हैं कुछ ऐसे ही नगमों के साथ हाजिर हैं हम कार्यक्रम का नाम है गीत सुनहरे और ये पहला नगमा रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म अनजाना से

बदलते दौर के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली और उनमें से हमारा मन भी एक बहुत बदलती हुई चीज़ में शामिल रहा। जो पहले ज़माने में कभी कोरा हुआ करता था, आज व्हाट्सएप और वीडियो और मोबाइल आ जाने की वजह से उसके बाद अब मन कोरा तो नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें भर जाती है ना, लेकिन यादों में तो हम उस कोरे मन को याद कर ही सकते हैं गानों के ज़रिए।

दोस्तों, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, ये तो हम सभी जानते हैं। और अगर आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है तो आपने फिल्मों में तो इस एहसास को ज़रूर महसूस किया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिल्में देख के हमारे आंसू निकल आते हैं, हम हंसने लगते हैं और फिल्मों के साथ ही एक ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम फिल्मों से जुड़कर फिल्मों को जी लेते हैं, उस एहसास को। तो इससे समझा जा सकता है कि जब प्यार हो जाता है ना, तो उसके साथ चाहे हम घंटों बैठ जाएं, लेकिन वो लगता है बस यूं ही निकल गए पल, और वो जो हमारे साथ है वो हमें

वैसे तो ऊपर वाले ने हमें बहुत सारे खूबसूरत तोहफे दिए हैं, और उन्हीं खूबसूरत तोहफों में एक बहुत ही खूबसूरत, निहायत ही प्यारा खूबसूरत तोहफा है हमारी आंखें। और उन आंखों में अगर कोई बस जाए तो वो आंखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, उसका एहसास आप इस खूबसूरत नगमे को सुनकर, इस खूबसूरत प्यार से गाने को सुनकर महसूस कर सकते हैं।

और दोस्तों, जब दो दिल एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं, ऐसे में पुराने ज़माने का ये गाना जो मुकेश साहब की आवाज़ में है, यकीनन दिल को बहुत बहुत छू जाता है। फिल्म है धरती कहे पुकार के।

दोस्त उसके साथ ही पेश है रफ़ी साहब की ही आवाज़ में एक और बेहद खूबसूरत नगमा। फिल्म का नाम है पगला कहीं का।

दोस्त रफ़ी साहब की आवाज़ में गाए हुए उनके नगमे, ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ गाने ना हो, वो सांस ले रहे हो, वो हमारे साथ साथ चल रहे हो, वो हमें महसूस कर रहे हो, गाने भी हमें महसूस कर रहे हो। क्योंकि रफ़ी साहब और लता जी की ऐसी ही खूबसूरत आवाज़ का अगला नगमा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। रात के 1:47 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे।

रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में एक चुलबुला सा गाना आपने सुना, लेकिन ये दोनों ही जो गायक हैं ये हमेशा से मशहूर थे संजीदा गाना गाने के लिए। और अगला नगमा जो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर वो है किशोर कुमार साहब का, जो चुलबुले गाने गाने के लिए मशहूर हुए, लेकिन ये गाना उनके अंदाज़ का एक अलग सा रूप है जिसे आप भी सुनिए और महसूस कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। इस संबंध की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी से जुड़ी है। अब यह साझेदारी सांस्कृतिक आधार से आगे बढ़कर मजबूत औद्योगिक और आर्थिक सहयोग में बदल रही है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कल डोमिनिका की विदेश मंत्री के साथ फार्माकोपिया और त्वरित प्रभाव परियोजना QIP पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। श्री मार्गेरिटा ने डोमिनिका के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार तथा ऊर्जा मंत्री विंस एंडरसन से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल FTA पर लगने वाले VAT को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के विजन के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र को राहत देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक गतिविधियों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि रियायती VAT दर फिलहाल 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और दिल्ली के हित में लिया गया यह फैसला सरकार के लिए लगभग 985 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का कारण बन सकता है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए बहुक्षेत्रीय तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई मेंढर तहसील के मनकोट क्षेत्र में 12 मई को ही उस घुसपैठ की कोशिश के बाद शुरू की गई है जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।

4x7 चैनल है। और दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें हम एक के बाद एक लगातार एक से बढ़कर एक प्यारे गाने सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार।

0: कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और हरित परिवर्तन, AI प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाटलोडिया, गोटा, चांदलोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में जिलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर दिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और CRPF ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनील नारायण ने 2 ओवर में 29 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फोर इंटू सेवन चैनल है। 3:11 होने को है। सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं जगजीत सिंह द्वारा गाई एक बेहतरीन गजल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ और कुमार सानू की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने जो गीत सुना भूपेंद्र की आवाज़ में फिल्म बाजार से, आइए आप सुनते हैं फिल्म माचिस से लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत।

गीत गजल कार्यक्रम में ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिर छिड़ी रात बात फूलों की लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म बाजार से। इसी गीत के साथ अपने दोस्त मोहन को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। अपना अपनों का ख्याल रखिए और ज़िंदगी में प्यार बनाए रखिए। अपने दोस्त मोहन को याद रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। आइए सुनते हैं अब अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं नाद ब्रह्म। वायलिन पर स्वर जी उमा का है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। सुबह के 4:51 और ठीक 50 सेकंड हुए हैं इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

श्रोताओं, आपको प्रातःकालीन सेवा के कार्यक्रम बता दें जो आप सुनेंगे। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। हिंदी समाचारों के उपरांत 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार।

6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का रहेगा। 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन राहुल संस्कृतायन के जीवन से प्रेरणा।

रामचरित मानस बालकांड भाग 52। इसे आप सुन सकते हैं 6:45 पर, 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे।

0: प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 7:10 का समय संगीतिका कार्यक्रम का रहेगा। सात बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम गीतों भरी होगा। श्रोताओं, प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन भी यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। ये यूरोप के उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी की इस वर्ष जनवरी में ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद यूरोप की पहली यात्रा है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के अंतर्गत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी वर्तमान

0: भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इस दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण के लिए साझेदारी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा बाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र तैयार करने की टीम में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और समाज के अन्य वर्गों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार से संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले की एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के सभी निर्णय को भी अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित करने का भारत का निर्णय अभी लागू है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यानिक सिनर इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में कल सिनर ने दानिल मेदवेदेव को हराया। फाइनल में आज सिनर का मुकाबला कैस्पर रूड से होगा। रूड ने दूसरे सेमीफाइनल में इटली के लुसियानो डार्डेरी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with the Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the prime minister's broader European tour and his first visit to the continent since the landmark India-European Union Free Trade Agreement took effect in January 2026. This journey is designed to review bilateral relations and explore cooperation in an era of rapid technological shifts and complex geopolitical challenges. The visit follows a high growth trajectory in economic engagement, with bilateral trade reaching a record $7.75 billion in 2025 and Swedish FDI into India totaling $2.825 billion between 2000 and 2025. This foundation was laid during the Prime Minister's 2018 visit.

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंत

अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ